एफ एम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 5वीं तिथि, तदनुसार 27 अगस्त 2026। प्रातः के इस वक्त 5:57 होने को है। हमारा आज का ये प्रसारण अब आरंभ होता है।

श्रोताओं, सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे।

0: वैष्णवी। नेपाल में कल आए भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई और 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से अधिक लोग लापता हैं। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया, महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और एक दर्जन जल विद्युत परियोजनाओं को ठप कर दिया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण हिमखंड फट जाने से ये आपदा आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव मानवीय सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ साथ आवश्यक दवाओं के 10 टन सामग्री नेपाल को भेज दी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत इस चुनौती के सामने नेपाल और उसके लोगों के साथ खड़ा है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है 9779851316807 और 9779701705000। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने लापता लोगों की खोज और बचाव के लिए हर संभव प्रयास करने का आदेश दिया है। पीपल्स आर्म्ड पुलिस की शिगाजे टुकड़ी के कुल 145 अधिकारियों और सैनिकों को आपातकालीन प्रतिक्रिया अभियानों में सहायता के लिए प्रभावित सीमा बंदरगाह पर भेजा गया है। नेपाल की यात्रा पर गए कोलकाता के 32 लोग अचानक आई बाढ़ में लापता हो गए हैं। वे मानसरोवर यात्रा के लिए एक ट्रैवल एजेंसी द्वारा आयोजित समूह में गए थे। इस समूह को कल नेपाल तिब्बत सीमा पार करनी थी, लेकिन अचानक आई बाढ़ से उनसे संपर्क टूट गया और अभी तक किसी का कोई पता नहीं चला है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से नेपाल में आई बाढ़ के बारे में बात की। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जिन सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ का असर हो सकता है, वहां स्थानीय प्रशासन और राहत तथा बचाव टीमों के साथ ही राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस बारे में और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता।
1: नेपाल में बाढ़ के बाद गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए बिहार के 6 जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार और करीबी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम चंपारण के बगहा और वैशाली जिले के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है।

0: पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार और करीबी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम चंपारण के बगहा और वैशाली जिले के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है।
2: हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूँ। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकिनगर जाऊंगा।
1: इधर मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण कल दक्षिण उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में भी तेज वर्षा की संभावना है। कल दिल्ली में भी वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माई भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के दो कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। सरकार ने आगामी महीनों में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से प्याज की लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि आगामी महीनों में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए प्याज की उपलब्धता पर्याप्त है, क्योंकि 2025-26 के लिए प्याज का अनुमानित उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। वीर चोटरानी और विलविन सेंथिल कुमार पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। ये दोनों भारतीय खिलाड़ी आज सेमीफाइनल में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हिंदी में समाचार का अनुप्रसारण अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कर रहे थे। श्रोताओं, ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम आराधना। दिन की बेहतरीन शुरुआत करने से पहले आइए मित्रों वंदन अभिनंदन करें उस माटी का जिसका कणकण है पावन। कार्यक्रम की शुरुआत में हमेशा की तरह लीजिए पेश है देश वंदना।

श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत में समूह स्वर में आपने अभी सुनी देश वंदना। आराधना कार्यक्रम में लीजिए पेश है पंडित भीमसेन जोशी की आवाज में ये राम भजन।

श्रोताओं, भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम का अगला भक्ति गीत या यूं कहे प्रार्थना लीजिए, सुनिए राजेश डेविड के स्वर में।

0: श्रोताओं, राजेश डेविड के स्वर में अभी आपने सुनी ये प्रार्थना। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना इस वक्त हम आपको देते चले। प्रत्येक शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 27 अगस्त यानी आज स्टूडियो में कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर दुष्यंत कौशिक उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 से 11:00 तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा खरीफ फसलों में समन्वित कीट प्रबंधन। विषय एक बार फिर से सुन लीजिए, खरीफ फसलों में समन्वित कीट प्रबंधन। इस विषय से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए आप हमें हमारे नंबरों पर कॉल लगा सकते हैं। हमारे नंबर नोट कीजिए, हमारे नंबर है मित्रों 2665 92 और 3100 26। इन नंबरों को डायल करने से पहले आप बिलासपुर का स्टडी कोड अवश्य लगा लें। बिलासपुर का स्टडी कोड है 07752। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण आप 28 अगस्त शाम 7:30 से 8:00 के बीच सुन सकते हैं। सूचना यहीं समाप्त हुई और इसके साथ ही आराधना कार्यक्रम का ये अंक भी यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए खेती की बात कार्यक्रम के अंतर्गत धान के ब्लास्ट और झुलसा रोग के विषय में जानकारी। वाचन स्वर अभिनव गौराहा का है, लीजिए सुनिए।
1: किसान भाई हो, राम राम, जय जोहार। अभी धान के फसल लगे है, आज हम बात करबो धान के मुख्य जिन रोग है, झुलसा रोग जेला ब्लास्ट रोग कहे जाते, और एक ठी रोग होते विषाणु जनित झुलसा रोग बैक्टीरियल लिप ब्लाइट। झुलसा रोग जिन ब्लास्ट कहे जाते ओखर लक्षण के बात करी, पत्ती में ए रोग के प्रारंभिक लक्षण बुआई के 15 दिन बाद से धान के पकत समय तक देखे जा सकते। रोग के प्रारंभिक अवस्था में निचले जिन पत्ती मन रही थे ओमा हल्का बैगनी रंग के छोट छोट धब्बा बांधते, बीच में चौड़ा और किनारे में सकरा हो जाते, आंखी के समान दिखती ऐसे, अब धब्बा के बीच के रंग हल्का भुरवा रंग के होते। तना के गठान में भी ए रोग के आक्रमण होते जिससे जेखर कारण वो करिया हो जाते और पौधा एक ग्रसित गठान में ले टूट जाते। रोग के प्रकोप से धान के बाली में सड़न पैदा हो जाते और उपज प्रभावित होते, कावर बाली टूट के गिर जाते। ए रोग पायरिकुलेरिया ग्रीसिया फफूंद द्वारा होते। प्रबंधन बर रोग के प्रारंभिक लक्षण दिखत है त ट्राइफ्लाक्सिन स्ट्रोबिन 25% के साथ टेबुकोनाजोल 50% WG एस्ट्रोक्सी स्ट्रोबिन 1 ग्राम प्रति लीटर के 2 छिड़काव 12 से 15 दिन के अंदर करना चाहिए। एकर से बाँचे बर हमन ला समय में बुआई और संतुलित उर्वरक के उपयोग ए रोग ला सीमित करे में मदद करते। ए होइस झुलसा रोग ब्लास्ट के बात करें, अब बात करबो लिफ ब्लाइट के, जीवाणु जनित झुलसा रोग जिला बैक्टीरियल लिफ ब्लाइट कहे जाते। ए रोग के प्रारंभिक लक्षण पत्ती में रोपाई या बुआई के 20 से 25 दिन बाद दिखाई देते। सबले पहली पत्ती के किनारे वाला जिन ऊपरी भाग होते हल्का पानी कस होते और ओखर बाद मटमैला हरियर पन लिए हुए पिउरा होए लगते। एकर प्रसार पत्ती के मुख्य सिरा के तरफ और निचला हिस्सा कति तेजी से होए लगते,

0: पूरा पत्ती मटमैला पीलवा रंग होके सूख जाते, रोग ग्रस्त पौधा कमजोर हो जाते और माँ कंसा हा कम निकलते, दाना पूरा तरह से नहीं भरे और पैदावार कम हो जाते। ये रोग हा जेंथोमोनास ओराइजी जीवाणु द्वारा होते। एकर निवारण बर हमन ला संतुलित उर्वरक के उपयोग करना चाहिए। नत्रजन युक्त उर्वरक जैसे यूरिया के उपयोग निर्धारित मात्रा से ज्यादा नहीं करना चाहिए। रोग होय के दशा में पोटास 25 किलो प्रति हेक्टेयर के उपयोग लाभकारी होते। वैसे भी पोटास के उपयोग नत्रजन और स्फूर के व्यवस्था करे बर होते, पौधा ला मजबूती प्रदान करे बर होते। रोग होय के दशा में खेत में अनावश्यक पानी निकालत रहना चाहिए। कोनो भी रासायनिक उपचार ए बीमारी पर प्रभावकारी नहीं है। तो ए होइस संगी हो जीवाणु जनित झुलसा रोग, बैक्टीरियल लिप ब्लाइट और ब्लास्ट रोग। धान के फसल में आनी बानी के और रोग दिखते तो कुल मिला के कहे जाते कि भाई जिन हमन खाद के उर्वरक के प्रबंधन करथन ओला सही समय में करी और संतुलित मात्रा में करी। हमें अपन क्षेत्र में पोटास के उपयोग नहीं करी, लाल दवाई जिला कहे जाते, हम केवल यूरिया ला देथन। तो कभू कभू मौसम के बदलाव बीज जिन जनित रोग होते एहू बाढ़ते। तो जब भी धान फसल ला लगाई हमन ला चाहे जैविक जिनिस से या फिर रासायनिक जिनिस से हमन ला उपचार करे के बाद ही बीज ला बोना चाहिए और समय समय में देखत रही, देख के हमन संतुलित उर्वरक के उपयोग करबो तो रोग ला सीमित करे में मदद मिलते। तय हुई धान के प्रमुख रोग और निवारण। फिर नवा विषय के साथ अगला क्रम में आबो। राम राम, जय जोहार।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे खेती की बात कार्यक्रम के अंतर्गत धान के ब्लास्ट और झुलसा रोग के विषय में जानकारी। वाचन स्वर अभिनव गौराहा का था। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त बोल रहे हैं। सुबह के 6:35 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है रामचरित मानस कान। आवाजें हैं श्रीकांत पारगांवकर और वाणी जयराम की।

ननिहाल से अयोध्या लौटते हुए भरत को चारों ओर अपशकुन दिखाई देते हैं। नगरवासी मिलते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं, मात्र अभिवादन कर चल देते हैं। महल में पहुंचकर भरत को माता कैकेयी अति प्रसन्न दिखाई पड़ी। पिता, भाइयों तथा अन्य माताओं का कुशल पूछने पर बोली, हे तात, मैंने मंथरा की सहायता से सारी बात बना ली थी, किंतु विधाता ने बीच में ही बात बिगाड़ दी। राजा देवलोक को सिधार गए। भरत के कानों और हृदय में माता के वचन शूल की भांति चुभे। करुणा करते हुए वे जमीन पर गिर पड़े। पिता के स्वर्गवास के क्षणों में वे उनके पास नहीं थे, शोक मग्न पुत्र को अपना सिर धुनने के लिए इतना ही कारण पर्याप्त था। माता से संपूर्ण घटनाक्रम का विवरण सुनकर भरत क्षण भर को पिता का मरण भूल गए। जो अनर्थ हो गया था उसका कारण उन्होंने स्वयं अपने आप को मान लिया। माता ने जो सांत्वना भरे वचन कहे वो उन्हें अपने घाव पर नमक के समान लगे, मानो रिश्ते घावों को अंगार छू गया हो। पापिनी, तूने सारे कुल का सर्वनाश कर दिया। यदि तेरी यही नियत थी तो जन्म लेते ही मुझे मार क्यों नहीं दिया? जब तूने मन में ये ठाना तो तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए?

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रामचरित मानस कान। आवाजें थी श्रीकांत पारगांवकर और वाणी जयराम की। सुबह के 6:45 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम चिंतन। चिंतन में आज का विषय है अति सर्वत्र वर्जित। आलेख श्रीवल्लभ चंद थानवी का है। लीजिए सुनिए।
1: अति सर्वत्र वर्जयेत, यह संस्कृत की कहावत है। इसका अर्थ होता है ज्यादा की सर्वत्र अर्थात सब जगह मनाही है। हिंदी में भी एक दोहा है, अति को भलो न बोलनो, अति की भली न चुप, अति को भलो न परसनो, अति की भली न धूप। अर्थात ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं तो ज्यादा चुप रहना भी ठीक नहीं है। जैसे अतिवृष्टि से फसल गल भी जाती है, अधिक बोलने से क्या हानि होती है, उसका एक उदाहरण भागवत पुराण में है। चित्रकेतु नामक एक राजा था। वो एक बार अपने विमान में बैठकर शंकर भगवान के निवास स्थान कैलाश पर्वत की ओर चला गया। उसने देखा कि महादेव ऋषियों को उपदेश दे रहे हैं। उसने ये भी देखा कि पार्वती जी उनके जांग पर बैठी है। ये दृश्य देखकर चित्रकेतु के मन में शंकर भगवान के प्रति दोप आ गया। उसने सभा के बीच खड़े होकर शंकर भगवान को खूब खरी खोटी सुनाई, उनकी बहुत निंदा की। भगवान शंकर तो भोले बाबा हैं, वे तो चुप रहे, पर पार्वती जी को चित्रकेतु का अनाधिकार ज्यादा बोलना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने चित्रकेतु को शाप दिया कि जाओ असुर योनि में जन्म लो। चित्रकेतु मरने के बाद वृत्रासुर नामक राक्षस बन गया। ये होता है ज्यादा बोलने का परिणाम। श्रीमद् भगवत गीता में भी अति खाने और अति भोग विलास की भगवान कृष्ण ने मनाही की है। उन्होंने अर्जुन से कहा, तो युक्त आहार विहार कर, युक्त यानी संतुलित, न ज्यादा न कम, यही योगी का लक्षण है। एक खोज में

0: अमेरिका के डॉक्टरों ने बताया कि विश्व में अधिकतर लोग ज्यादा भूखे रहने से नहीं, ज्यादा खाने के कारण मरते हैं। ज्यादा खाने से उन्हें कई प्रकार के रोग खेल लेते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा मोटे लोग अमेरिका में हैं। बच्चे तो प्रायः सभी आराम करने वाले और कम मेहनत करने वाले हैं। खाने में आवश्यकता से अधिक कैलोरी हुई तो मोटापा बढ़ जाता है। ये शरीर में फैट यानी चर्बी के बढ़ने से होता है। ऐसे लोगों को हार्ट अटैक का अंदेशा बना रहता है। इसलिए डॉक्टरों की सलाह है संतुलित आहार लेना चाहिए, जिसे डॉक्टर अब बता रहे हैं। भगवान कृष्ण ने वही बात 5000 साल पहले ही गीता में कह दी है। नींद के बारे में कभी ये बात लागू होती है, बच्चों को 8 घंटे से अधिक नींद नहीं लेना चाहिए। अधिक नींद लेने वाले बच्चे पढ़ने में कमजोर हो जाते हैं। जल्दी सो जाना चाहिए और जल्दी उठ भी जाना चाहिए, इससे बुद्धि तेज होती है। अंग्रेजी में कहावत है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, यानी जल्दी सोने और जल्दी उठने से मनुष्य को स्वास्थ्य, धन और वृद्धि प्राप्त होती है। और ये तीन वस्तुएं जिसके पास हैं, वही सफल व्यक्तित्व का धनी होता है। अति सर्वत्र वर्जयेत का ये सिद्धांत इतना सटीक है कि यदि किसी की भाग्य रेखा इतनी लंबी हो कि शनि पर्वत को भी पार कर जाए, तो उस व्यक्ति को भाग्यहीनता का सामना करना पड़ता है। आमतौर से भाग्य रेखा धन प्राप्ति करवाती है, पर अति उन्नत होने पर उसका प्रभाव ही नष्ट हो जाता है। भगवान बुद्ध ने भी इस सिद्धांत को अपनाकर जीवन व्यवस्थित किया था। ज्ञान प्राप्ति के लिए वे कठोर तप कर शरीर को सुखा रहे थे। तभी कोई गा रहा था, तार को इतना ही कसो कि वीणा मधुर बजे, इतना नहीं कि तार ही टूट जाए। भगवान बुद्ध ने इसे दिव्यवाणी मानकर अनशन तोड़ दिया और शीघ्र ही वे लक्ष्य प्राप्ति में सफल हो गए। अंत में एक शेर कहकर अपनी बात पूरी करें, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अपने को संतुलित रखते हुए इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा दो कि परमात्मा भी तुम्हारा भविष्य लिखने से पहले तुमसे पूछे कि बता क्या लिखूं।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। चिंतन में आज का विषय था अति सर्वत्र वर्जेत। आलेख श्री वल्लभ चंद थानवी का था। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:50 हो चुके हैं। लीजिए अब पेश है कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में सबसे पहले हम आपको आज सुबह प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के विषय में बतला दें।

श्रोताओं 7:05 पर आप आज सुनेंगे सबसे पहले कार्यक्रम आज सुबह 7:30 का समय होगा सदाबहार नगमे का। 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम माटी के स्वर और 10 बजे आप आनंद लेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपकी पसंद का। 10:30 पर नए तरानों के सफर में आज हम बनेंगे आपके हम सफर और ठीक 11 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। 4 बजे शाम हम रिले करेंगे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स दिल्ली केंद्र से। ये तो थी आज सुबह प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आइए अब हम आपको आज शाम को प्रसारित होने वाले मुख्य आकर्षणों के विषय में बतला दें। आज शाम 5 बजे पहले आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। 5:05 का समय होगा चित्रपट संगीत का और 5:30 पर महिला सभा कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे स्नेह का पावन पर्व रक्षाबंधन। स्नेह का पावन पर्व रक्षाबंधन इस विषय पर चर्चा और इसी कार्यक्रम में आगे आप सुनेंगे क्रम लोक संस्कृति के अंतर्गत भोजली गीत, प्रस्तुति मोनाली ठाकरे की होगी। संध्या 6 बजकर

20 मिनट और 7 बजे का समय होगा। ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम का। और इसके अलावा आज संध्या 7:30 पर किसानवाणी कार्यक्रम का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से करेंगे। और ठीक रात्रि 8 बजे आज आप सुनेंगे आप सभी का पसंदीदा मनपसंद कार्यक्रम साप्ताहिक पत्रोत्तर पर आधारित कार्यक्रम चिट्ठी मिली, जो हम प्रसारित करेंगे आपके अपने केंद्र यानी आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। और फिर रात्रि 8:20 पर आप शास्त्रीय संगीत का आनंद उठाएंगे हमारे ही केंद्र से। ये थी कार्यक्रमों की जानकारी। और अब हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि आज सुबह 10:30 से 11 बजे के बीच हमारे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर दुष्यंत कौशिक जी। और इनसे सवाल पूछने के लिए विषय होगा खरीफ फसलों में समन्वित कीट प्रबंधन। आप इस विषय पर सवाल पूछकर अपने जिज्ञासाओं और समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। फोन नंबर है 2665923 और 310026। आप इस नंबर को डायल करने से पहले बिलासपुर का स्टडी कोड अवश्य लगा लें। बिलासपुर का स्टडी कोड है 07752। और अब खुशी पलों में समाचारों के लिए हम रुक करेंगे आकाशवाणी दिल्ली की ओर।

0: यात्रायै गताः तीर्थयात्रिणः सन्ति इति अवधेयास्पदं वर्तते। हिमालयीयदेशे सहसा जातेन जलाप्लावेन अथ गण्डकनद्याः च जलस्तरे वृद्धेः सम्भावनां दृष्ट्वा बिहारराज्येन सज्जताः तीव्रीकृताः। बिहारस्य पश्चिमचम्पारण पूर्वचम्पारण गोपालगंज सारण मुजफ्फरपुर वैशाली इत्येतेषु षट्सु जनपदेषु सतर्कता वर्धिता अस्ति। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उक्तवान् यत् परिस्थितिं निरीक्षणाय उच्चस्तरीय दलस्य निर्माणं कृतमस्ति। उत्तरप्रदेशे नेपाल सीमा समीपस्थयोः महाराजगंज कुशीनगर जनपदयोः निरीक्षणं वर्धितमस्ति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य दृश्य श्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन खेलो इंडिया इति संवादं सम्बोधयिष्यति। मेरा युवा भारत इत्येतद्द्वारा ऐषमः राष्ट्रिय क्रीडा दिवस समारोहाणाम् अन्तर्गतम् आयोजितः अयं कार्यक्रमः सम्पूर्ण देशे आयोजयिष्यते, यस्मिन् प्रत्येकस्य राज्यस्य केन्द्रशासित प्रदेशस्य च प्रत्येकस्मिन् जनपदे स्थितयोः द्वयोः महाविद्यालययोः युवानः भागं ग्रहीष्यन्ति। अयं कार्यक्रमः क्रीडा, युवनेतृत्वं, नागरिकदायित्वं, स्वयं सेवा, शारीरिक स्वास्थ्यं, राष्ट्रनिर्माणं च एकस्मिन् सामूहिक मञ्चे संयोजयिष्यति। भारत चीन देशौ सीमा क्षेत्रेषु शान्तिं स्थैर्यं च स्थापयितुं तथा उभयोः देशयोः द्विपक्षीय सम्बन्धानां स्वस्थं निरन्तरं च विकासाय अनुकूलं वातावरणं निर्मातुं स्वप्रतिबद्धतां पुनः प्रतिपादितवन्तौ। भारत चीनयोः विशेष प्रतिनिधीनां सीमा विवाद सम्बद्ध वार्तायाः 25वां चरणं ह्यः बीजिंग नगरे अभवत् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई और 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से अधिक लोग लापता हैं। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया है। महत्वपूर्ण पुलों को बहा ली गई और कई जल विद्युत परियोजनाओं को ठप कर दिया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में कल सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के बाद 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण ग्लेशियर फट जाने से ये आपदा आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने आपदा राहत सामग्री के साथ साथ आवश्यक दवाओं की 10 टन सामग्री नेपाल को भेज दी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारत इस मुश्किल घड़ी में नेपाल और उसके लोगों के साथ खड़ा है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है 9779851316807 और 9779709107500। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने लापता लोगों की खोज और बचाव के लिए हर संभव प्रयास करने का आदेश दिया है। पीपल्स आर्म्ड पुलिस की शिकाजे टुकड़ी के कुल 145 अधिकारियों और सैनिकों को आपातकालीन प्रतिक्रिया अभियानों में सहायता के लिए प्रभावित सीमा बंदरगाह पर भेजा गया है। वहीं विश्व बैंक ने प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण के लिए नेपाल को आपातकालीन वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपये देने की पेशकश की है। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस बारे में और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता।
2: नेपाल में बाढ़ के बाद गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए बिहार के 6 जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार और करीबी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम चंपारण के बगहा और वैशाली जिले के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।

0: राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है।
1: हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है, चीफ सेक्रेटरी डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं, जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी बाल्मीकिनगर जाऊंगा।
0: उधर उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल में फंसे लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1070 शुरू कर दी है। प्रभावित परिवार इस हेल्पलाइन के माध्यम से तुरंत जानकारी साझा कर सकते हैं।

0: 0700 शुरू कर दी है। प्रभावित परिवार इस हेल्पलाइन के माध्यम से तुरंत जानकारी साझा कर सकते हैं। महाराजागंज और कुशीनगर सीमावर्ती जिलों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तैयार रहने और गंडक तथा नारायणी नदियों में जलस्तर की लगातार निगरानी करने का निर्देश दिया है। जम्मू कश्मीर में कल पुंछ जिले के सुरनकोट इलाके में एक सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है। सरकार ने आगामी महीनों में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से प्याज की लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने रक्षाबंधन पर राज्य में महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सौगात दी है। महिला यात्री आज से 29 अगस्त की मध्य रात्रि तक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और शहर की बसों में एक सह यात्री के साथ मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। वीर चोट्रानी और वेलवेन सेंथल कुमार पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। ये दोनों भारतीय खिलाड़ी आज सेमीफाइनल में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचारों का अनुप्रसारण अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के इस वक्त 7:05 हुए हैं। लीजिए पेश है प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज।

0: आज सुबह
1: कार्यक्रम आज सुबह सुनने वाले आप सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी अंतरा का अनुरागी नमस्कार।

0: श्रोताओं, एक ओंकार अकाल पुरख की ये अनुगूंज हम ये विश्वास भरती है कि परमात्मा एक है, उसके जैसा और कोई नहीं। वाकई गुरुवाणी के ये शब्द हमें बतलाते हैं कि गुरु का नाम दाता है, गुरु ही हिम है, गुरु ही तुषार, यानी गुरु शांति का घर है। गुरु ही तीनों लोकों में ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाला दीपक है। श्रोताओं, भारतवर्ष अलग अलग मान्यताओं, परंपराओं और विचारधाराओं को संजोने वाला अकेला ऐसा देश है जहां प्रत्येक भाषा में लिखे धर्म ग्रंथों ने हमें समय समय पर न केवल रास्ता दिखाया है, बल्कि हमारे जीवन के प्रत्येक बाधा, विपत्ति और दुश्चिंता को दूर कर सदैव गतिशील बने रहने का भरोसा भी जगाया है। गुरु ग्रंथ साहिब में उल्लेखित दार्शनिकता कर्मवाद को मान्यता देती है। इस धरती पर कर्म ही सर्वोपरि है। गुरुवाणी के अनुसार ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सामाजिक उत्तरदायित्व से विमुख होकर जंगलों में भटकने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उसे अपने भीतर तलाश करने की जरूरत है। इस संसार में जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी अपने कर्म को दरकिनार कर अपने लक्ष्य की प्राप्ति कभी नहीं कर सकता। गुरु ग्रंथ साहिब मात्र सिख गुरुओं के उपदेश का एक संकलन नहीं, बल्कि अन्य अनेक संतों, विचारकों, दर्शन शास्त्रियों की सम्मिलित वाणी एवं विश्वास का एक अद्भुत ग्रंथ है। इसकी भाषा की सरलता, सुबोधता और सटीकता जहां जनमानस को आकर्षित करती है, वहीं संगीत के सुरों और 31 रागों का प्रयोग इसमें दिए आध्यात्मिक उपदेशों को कर्णप्रिय एवं मधुर बनाती है। गुरुवाणी की शक्ति हमें लोक कल्याण के प्रति जागरूक कर विनम्र बने रहने की प्रेरणा देती है। सिख समुदाय की माने तो 27 अगस्त का दिन इतिहास में विशेष महत्व रखता है। मित्रों, अध्ययन से पता चलता है कि 1604 ईस्वी में आज ही के दिन यानी 27 अगस्त के दिन ही सर्वाधिक श्रद्धेय अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में यानी हरमिंदर साहिब में सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना की गई। आज के दिन सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने इस पवित्र ग्रंथ को स्थापित किया, जिसे आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। मजहब चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो हमें हमेशा सहिष्णुता, भाईचारा, मोहब्बत और अमन का पैगाम ही दिया करते हैं। वैसे साथियों, वर्तमान समय में जहां तरह तरह के विकल्पों ने हमारे मूल्यों, आदर्शों को बुरी तरह से ध्वस्त कर रखा है, वहीं एक विवेकशील एवं बुद्धिजीवी होने के दृष्टिकोण से आज हमें हमारे धर्म ग्रंथों को पलटकर तनिक पढ़ने की आवश्यकता भी है, जिससे कि हम प्रकृति, परिवार और अपने देश के प्रति संवेदनशील बन सकें, दूसरों के लिए सहायक बन सकें, जरूरतमंदों की मदद कर सकें और अपने दायित्वों का निर्वहन भी करते चलें। बहरहाल, इन्हीं बातों के साथ चलिए इस वक्त सुनते हैं आज का ट्रैफिक अपडेट।
1: नमस्कार, उमा शंकर पांडे का। लीजिए, प्रतिदिन की तरह प्रस्तुत है कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर। आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर शहर के साथ ही शहर से बाहर उत्तर में रतनपुर मार्ग तो दक्षिण में रायपुर मार्ग, पूर्व में मस्तूरी तो पश्चिम में तखतपुर मार्ग में इस प्रकार बिलासपुर की चारों दिशा

0: गांव की सभी सड़कों में यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, यद्यपि प्रतिदिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, फिर भी हम यदि छोटी छोटी सावधानियों को अपना कर चलें तो सड़क दुर्घटना में बहुत हद तक निजात पा सकते हैं, क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी गलतियों के कारण प्रायः बड़ी बड़ी सड़क दुर्घटनाएं हुआ करती हैं। सबसे पहले तो अपने वाहन की गति में संयम रखें, क्योंकि प्रायः सभी सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण वाहनों का तेज रफ्तार होना पाया गया है। इसी प्रकार आप किसी वाहन से कहीं जा रहे हैं, इसी बीच दाहिने या बाएं आपको मुड़ना है, तो मुड़ने से पहले हाथ से या इंडिकेटर लाइट से संकेत जरूर देवें। दिन के समय धूप में इंडिकेटर लाइट ठीक से दिखाई नहीं देती है, इसलिए दिन में हाथ से ही मुड़ने का संकेत देवें, तभी अपना वाहन मोड़ें। दोस्तों, जब आप कार जैसे वाहन में बैठकर कहीं जा रहे हैं, कहीं रुकना पड़े तो हमेशा अपने बाएं तरफ का ही दरवाजा खोलकर उतरना चढ़ना करें, दाहिने तरफ का नहीं। कार जैसे वाहन में सफर करते समय विशेषकर युवा वर्ग बड़ी तेज आवाज में म्यूजिक सिस्टम चलाकर मस्ती करते हुए चलते हैं। इससे पीछे से आ रहे वाहन का आभास इसके चालक को नहीं हो पाता और ओवरटेक करते समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। अतः ऐसी मस्ती ना करें, ये घातक हो सकती है। इतना ही नहीं, कुछ चालक वाहन चलाते हुए वीडियो देखते हुए चलते हैं, इससे बड़ी लापरवाही और क्या हो सकती है। जब सड़कों में तमाम प्रकार के वाहनों की कतार लगी है, वो अभी खूनी रफ्तार में। अतः आप सभी से अनुरोध है, इन सावधानियों को हमेशा अपनाकर चलें, ताकि आपकी यात्रा शुभ हो।
1: श्रोताओं, ये था आज का ट्रैफिक अपडेट। और ट्रैफिक अपडेट को सुनने के पश्चात चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। 27 अगस्त 1939 को अचानक आकाश में गर्जना हुई और लोगों ने देखा कि दुनिया का पहला जेट विमान हाइकल HE-178 उड़ान भर रहा है। इस विमान को जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हाइकल ने बनाया था और उन्हीं के नाम पर इस विमान का नामांकन किया गया। इस विमान को सबसे पहले चलाया कैप्टन एरिच ने। जब उन्होंने अपने हाथों में इस विमान को थामा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने सुरक्षित लैंडिंग भी की, लेकिन शुरुआती दौर में इस विमान के विषय में वैज्ञानिकों ने ज़्यादा जोर नहीं दिया, ज़्यादा तवज्जो इस विमान की ओर नहीं दिए। थोड़ी सी कोताही भी बरती गई, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेना को इसकी उपयोगिता समझ आई और फिर जेट विमानों को बनाने और विकसित करने का काम तेजी से किया गया। वैज्ञानिकों की माने तो दुनिया के इस पहले जेट विमान की गति पहले तो धीमी होती है, लेकिन ऊंचाई पर पहुंचते ही ये द्रुत गति से अपनी उड़ान पूरी करते, अपनी उड़ान को पूरी करते और सफलता से जमीन पर आ जाते, जिससे कि युद्ध के दौरान मिली चुनौतियों को बहुत हद तक काबू में किया जाता रहा। यानी युद्ध की जो परिस्थितियां बनती हैं विपरीत तरह की, उनमें आसानी से रणनीतियों को इस्तेमाल कर विजय प्राप्त किया गया। और इसी तरह आज का दिन विशेष तो है ही, आज के दिन की दूसरी विशेष बात ये है कि हमारे पोखरों, झीलों और जलाशयों से जुड़ी जागरूकता की ओर आज का दिन हमें सजग करने वाला बहुत ही सुंदर और बड़ा दिन है। मित्रों, अक्सर हम देखते हैं कि न केवल नदियों

0: छोटे बड़े नालों में बल्कि दर्शनीय स्थलों पर भी निर्मित झीलों के आकर्षण में पड़कर नौका विहार या पर्यटन का आनंद उठाने वाले जो व्यक्ति होते हैं या हमारे मित्र या परिचित होते हैं, वो अपने परिवार के साथ इन स्थलों पर जाया करते हैं। साफ शांत सुंदर झीलों की तरफ पिकनिक मनाने का प्लान करते हैं और वहाँ जाकर उन पार्क पर, उन गार्डन में या झील के किनारे बैठकर कूड़ा भी फैलाने से नहीं चूकते। नौकायान के दौरान पेप्सी, चिप्स या दूसरे तरह के प्लास्टिक की जो बोतलें होती हैं या रैपर्स होते हैं, उन्हें पानी में विसर्जित करने से भी पीछे नहीं हटते, जिससे कि झीलों का सौंदर्य न केवल दूषित होता है बल्कि झीलों का पानी भी मैला और प्रदूषित होकर अन्य जलीय जीव जंतुओं को प्रभावित करता है, उन्हें नुकसान पहुंचाता है। इसी तरह की समस्याओं से निजात पाने और जल संरक्षण, सौंदर्य बोध और सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी न फैलाने के उद्देश्य से आज के दिन को विश्व झील दिवस या पानी को साफ सुथरा बनाए रखने की ओर हमें जागरूक करने का बहुत ही सुंदर और अद्भुत दिन है, जिसे प्रेरित होकर हम अपने आसपास की नदी एवं झीलों को साफ सुथरा बनाए रख सकते हैं। इन दिनों हमारे शहर अरपा में भी, हमारे शहर की नदी अरपा में भी जल स्तर काफ़ी बढ़ चुका है और हम आते जाते अक्सर ये देखा करते हैं कि लोग बाग अपने दोपहिया वाहनों में या कार या अन्य तरह के वाहनों में पॉलीथिन में भरकर घर से या तो पूजा पाठ का कोई सूखा फूल, पुष्प या प्लास्टिक की कई चीज़ें लेकर आते हैं पुल तक और इधर उधर देखकर गाड़ी रोककर नदियों में विसर्जित कर देते हैं। हमारी अरपा बहुत दूषित होती है इन सब चीज़ों से। हमारा कर्तव्य है कि एक अच्छे नागरिक होने के नाते कम से कम अपने शहर की आबोहवा को सुरक्षित हम रख सकें और हमारी एकमात्र जीवनदायिनी अरपा की सुरक्षा के लिए, सफाई के लिए जागरूकता बरतें, बच्चों को सिखाएं। हम देखते हैं कि नदियों के किनारे बहुत सारे चौपाटी या ठेले भी लगे होते हैं जहां शाम को बच्चे या युवा टोलियों में घूमते, खाते पीते, झूमते नज़र आते हैं। उन्हें भी आज ये समझाने की आवश्यकता है कि भाई आप सैर सपाटे ज़रूर कीजिए लेकिन नदियों के आसपास की जगह को, सार्वजनिक स्थलों को, पार्क या बेंचों को दूषित या गंदगी से बचाए रखें। ये हमारा कर्तव्य ही नहीं, जिम्मेदारी और बहुत विवेकपूर्ण निर्णय होगा कि हम अपने शहर की आबोहवा को, वातावरण को सुरक्षित रख सकें। तनिक सोचिए कि जब हम वाहन से रुककर बहुत सारा कूड़ा नदियों में प्रवाहित करते हैं और फिर नदी को प्रणाम करके क्षमा याचना भी करते हैं, तब प्रकृति हम पर ज़रूर मुस्कुराती होगी। क्या प्रकृति हमें क्षमा कर पाएगी? शायद नहीं, लेकिन हम और आप आसपास की बहुत सारी चीज़ों को साफ रखकर अपने नैतिक जिम्मेदारियों का पालन अवश्य कर सकते हैं। चलिए इन्हीं छोटी छोटी बातों के साथ ही इस वक्त सुनते हैं कुछ संदेश।
1: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जांचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS।

0: TVS केयर ऐप।
1: कुछ रिश्तों को शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस एक राखी, एक मुस्कान और न्यू दिल्ली स्वीट्स की मिठाइयाँ। जब दीदी अपने हाथों से न्यू दिल्ली स्वीट्स की मिठाई खिलाती है तो लगता है जैसे पूरा बचपन जुबान पर रख दिया हो। इस रक्षाबंधन रिश्तों की सबसे मीठी याद घर ले जाइए।
2: न्यू दिल्ली स्वीट्स, हाउस ऑफ प्योरिटी, लिंक रोड, बिलासपुर।
3: श्रोताओं, हम अक्सर खेलकूद की बातें करते हैं, संगीत की बातें करते हैं, लेकिन आज 27 अगस्त का दिन भारतीय पेशेवर कुश्ती पहलवान दलीप सिंह राणा, जिसे हम द ग्रेट खली के नाम से भी जानते हैं, उनका जन्मदिन है आज। उनका जन्म हिमाचल के सिरमौर जिले के धीरैना गांव में हुआ। खली के पिता हुए ज्वाला राम और माता तांडी देवी। खली को WWF की दुनिया में लोगों का बहुत स्नेह मिला। खली बताते हैं कि इन्होंने अपनी कुश्ती की शुरुआत सन 2000 में की। खली कुश्ती करने से पहले पंजाब पुलिस के सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ भी रहे। द ग्रेट खली ने पहलवानी में और बहुत सारे अन्य विविध कलाओं में भी अपने कला का प्रदर्शन किया है। खली ने 4 हॉलीवुड और 2 बॉलीवुड फिल्में भी की हैं। सुकून और राहत की बात आज ये है कि 8 साल के लंबे अंतराल के पश्चात जनवरी 2026 में खली ने रिंग में अपनी वापसी की घोषणा की। 2007 में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का खिताब खली ने अपने नाम किया। तो आज ग्रेट खली के जन्मदिन पर हम खूब सारी शुभकामनाएं उन्हें भेजते हैं और ये दुआ करते हैं कि वो सलामत रहे और पहलवानी के उस पूरे एक कला को अपने मूड के हिसाब से, अपने अद्भुत कौशल के हिसाब से दुनिया भर के अन्य देशों तक भी वो पहुंचाने का सुंदर काम करते रहें।
0: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए। किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जाँचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
1: कुछ रिश्तों को शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस एक राखी, एक मुस्कान और न्यू दिल्ली स्वीट्स की मिठाइयाँ। जब दीदी अपने हाथों से न्यू दिल्ली स्वीट्स की मिठाई खिलाती है तो लगता है जैसे पूरा बचपन जुबान पर रख दिया हो। इस रक्षाबंधन रिश्तों की सबसे मीठी याद घर ले जाइए।
2: न्यू दिल्ली स्वीट्स, हाउस ऑफ प्योरिटी, लिंक रोड, बिलासपुर।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब हम बात करेंगे भारतीय फिल्म जगत के एक ऐसे अद्भुत निर्देशक, संपादक और लेखक के विषय में जिनकी आज याद का दिन है, जिन्होंने मध्यम वर्गीय परिवार की छोटी छोटी रसमयी बातों और घटनाओं को सिल्वर स्क्रीन पर कुछ ऐसे उकेरा कि पात्र जीवंत होकर हमारी स्मृतियों में सदा के लिए रच बस गए। यहाँ कुछ फिल्मों के नाम लेते ही आप में से बहुतेरे श्रोता साथियों को यह समझने में देर नहीं लगेगी कि वो फिल्म निर्देशक कौन हुए। जी हाँ, उनकी निर्देशित फिल्में हुई हैं आनंद, गोलमाल, चुपके चुपके, बावर्ची, खूबसूरत, नमक हराम और सत्यकाम। ये हैं उनकी कुछ बेशकीमती चुनिंदा फिल्में। श्रोताओं, आज ऋषिकेश मुखर्जी की पुण्यतिथि है। ऋषिकेश मुखर्जी ने बेहद सरल, संजीदा एहसासों के साथ फिल्मों के किरदारों को जिलाए रखा है। उनकी निर्देशित फिल्में आने वाली कई पीढ़ियों के सिनेमा प्रेमियों की अमर यादें बनकर मुस्कुराती रहेंगी। आइए सुनते हैं ऋषिदा की फिल्म का एक प्यारा सा गीत, जिसमें जीवन की नश्वरता और आने वाले पल की उम्मीद दोनों ही रंग

श्रोताओं, इस गीत को तो आज हम पूरा नहीं सुन पाए, लेकिन हाँ, इस गीत के जो भाव हैं वो ज़रूर हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आज ऋषिकेश मुखर्जी की याद का दिन है। हम उनके फिल्मी करियर को, उनके फिल्मी सफ़र को करते हैं नमन, और अब समस्त शुभकामनाओं के साथ लेते हैं विदा आपके अपने कार्यक्रम आज सुबह के इस अंक से। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज सुबह। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 7:31 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। सदाबहार नगमों के सफर में आज हम बात करेंगे एक ऐसी आवाज के विषय में जिन्होंने टूटे हुए बिखरे हुए दिलों को सहारा दिया और उनके दर्द को उभारा और इस तरह वो बन गए बेहद संवेदनशील एक बेहतरीन आवाज़।

श्रोताओं, आज हम कार्यक्रम में बात कर रहे हैं हिंदी सिने जगत के लोकप्रिय पार्श्व गायक मुकेश के विषय में। मुकेश को गाने का शौक बचपन के दिनों से ही बहुत अधिक रहा, मगर उनकी आवाज की खूबियों को पहचाना उनके रिश्तेदार मोतीलाल ने, जब मुकेश अपनी बहन की शादी में गीत गाते हुए देखे और सुने गए। वहीं से मोतीलाल उन्हें अपने साथ मुंबई ले आए और शुरू हुआ उनका करियर।

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
3: कुछ रिश्तों को शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस एक राखी, एक मुस्कान और न्यू दिल्ली स्वीट्स की मिठाइयाँ। जब दीदी अपने हाथों से न्यू दिल्ली स्वीट्स की मिठाई खिलाती है तो लगता है जैसे पूरा बचपन जुबान पर रख दिया हो। इस रक्षाबंधन रिश्तों की सबसे मीठी याद घर ले जाइए।
4: न्यू दिल्ली स्वीट्स, हाउस ऑफ प्योरिटी, लिंक रोड, बिलासपुर।
5: श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं मुकेश के विषय में। मुकेश ने अपना सफ़र 1941 में शुरू किया। निर्दोष फिल्म के गाए गीतों से उन्होंने अभिनय की भी शुरुआत की। उनकी अभिनय में इतनी गहरी रुचि थी कि उन्होंने माशूका, आह, अनुराग और दुल्हन जैसी फिल्मों में बतौर अभिनेता काम भी किया। उनका सबसे पहला गाना रिकॉर्ड हुआ दिल ही बुझा हुआ हो तो। मुकेश की सुरीली आवाज़ में 1945 में फिल्म आई थी पहली नज़र, जिसके लिए उस दौर के सुपरस्टार मोतीलाल पर फिल्माया गया दिल जलता है तो जलने दे। इस गीत को संगीत से सवारा था अनिल विश्वास साहब ने। इस गीत को सुनने वालों का बहुत प्यार, बहुत स्नेह मिला। लेकिन इस गीत के साथ ही मुकेश के आवाज़ की तुलना KL सहगल के गीतों से की जाने लगी। प्रारंभिक दौर में मुकेश KL सहगल के गीतों से बहुत मुतासिर भी रहे, लेकिन इस तुलनात्मक अध्ययन के पश्चात भी उनके सुनने वालों ने उन्हें प्रेम करना बंद नहीं किया। मुकेश की आवाज़ में एक अलग तरह का दर्द महसूस किया गया, जिसे बाद के दिनों में संगीतकार नौशाद ने कई अपनी कंपोजिशन में कुछ अलग ढंग से उकेरा और मुकेश बन गए एक ऐसी आवाज़ जो बेहद संवेदनशील तरीके से अपनी बातों को और अपने जज्बातों को रखने के लिए पहचाने जाने लगे। यानी हम कह सकते हैं कि एक दौर ऐसा भी आया कि नौशाद ने मुकेश की आवाज़ को परवाज दी और मुकेश के कंठ से बेहतरीन गीतों को गवाया। वैसे भूलने वाली बात ये भी नहीं है कि मुकेश ने कुछ बेहतरीन रोमांटिक गीत भी गाए हैं।

जिसमें उनका अंदाज एक शर्मीले लड़के की तरह उभर कर सिल्वर स्क्रीन पर देखा गया, सुनने वालों ने बहुत हद तक अपने दिल का जुड़ाव उन गीतों से महसूस भी किया। वो कौन से गीत थे, आइए सुनते हैं उसी तरह का एक प्यारा रोमांटिक मीठा सा गीत।

श्रोताओं, एक दौर ऐसा भी आया कि फिल्म आग के बाद मुकेश राज कपूर की आवाज बन गए और यहीं से शुरू हुआ दो जिस्म एक जान का अनूठा संगम। मुकेश तो पहले से ही

नीलकमल में आंख जो देखे गा चुके थे। उन्होंने अपने जिंदगी के कई बेहतरीन गीतों को राज कपूर की आवाज में कुछ यूं पिरोया कि वो अमर संगीत के रूप में हिंदी फिल्म के इतिहास में दर्ज होते चले गए। राज कपूर और मुकेश की जोड़ी ने एक दूसरे की जबरदस्त जरूरत, चाहत और मोहब्बत बनकर सेलुलाइट के इतिहास में कुछ ऐसी बेमिसाल मिसालें कायम की कि जिन्हें याद कर आज भी हम भाव विभोर हो उठते हैं। लीजिए सुनिए एक और प्यारा संगीत।

श्रोताओं, मुकेश को फिल्म फेयर का पुरस्कार मिला, सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी, अनाड़ी फिल्म के इस गीत से। फिल्म फेयर का दूसरा पुरस्कार मिला, सबसे बड़ा नादान वही, पहचान फिल्म के इस गीत से। और फिर बेईमान फिल्म के लिए भी इन्हें 1972 में फिल्म फेयर का पुरस्कार मिला, लेकिन 1974 में मुकेश को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया रजनीगंधा फिल्म में गाए उनके इस गीत से।

कई बार यूं भी देखा है। ये गीत वाकई बेमिसाल गीत उस दौर का साबित हुआ और आज भी युवा इस गीत को गुनगुनाते हैं।

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
3: कुछ रिश्तों को शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस एक राखी, एक मुस्कान और न्यू दिल्ली स्वीट्स की मिठाइयाँ। जब दीदी अपने हाथों से न्यू दिल्ली स्वीट्स की मिठाई खिलाती है तो लगता है जैसे पूरा बचपन जुबान पर रख दिया हो। इस रक्षाबंधन रिश्तों की सबसे मीठी याद घर ले जाइए।
4: न्यू दिल्ली स्वीट्स, हाउस ऑफ प्योरिटी, लिंक रोड, बिलासपुर।
5: श्रोताओं, मुकेश का निधन 27 अगस्त यानी आज के दिन 1976 को दिल का दौरा पड़ने से अमेरिका में हुआ था, जहां वो एक स्टेज शो के लिए गए हुए थे। मुकेश के गीतों की चाहत उनके चाहने वालों के दिलों में सदा जीवित रहेगी। उनके गीत हम सब के लिए प्रेम, हौसला और आशा का वरदान है। मुकेश जैसे महान गायक न केवल दर्द भरे गीतों के लिए, बल्कि वो तो हम सब के दिलों में सदा के लिए बसने के लिए ही बने हैं। उनकी आवाज़ का अनोखापन, भीगे स्वर में हल्की सी नासिका लिए हुए संगीत प्रेमियों को छूने का वो अलहदा अंदाज मुकेश को एक महान गायक की उपाधि अता करता है। वो सदा मुस्कुराते हुए ही सबसे मिलते रहे। मुकेश के निधन पर राज कपूर ने कहा, मेरी आवाज़ और आत्मा आज दोनों चली गई। और मुकेश ने राज कपूर की फिल्म के लिए अंतिम गीत रिकॉर्ड किया सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के लिए।

श्रोताओं, ये था मुकेश पर केंद्रित आज का ये सफ़र, और मुकेश साहब को भावभीनी श्रद्धांजलि देने के साथ ही हम ये दुआ करते हैं कि उनकी आवाज़ यूं ही हमारे आसपास सदैव गूंजती रहे और हम उनकी आवाज़ से मोहब्बत करते रहें। चलिए इस वक्त समाचारों के लिए एक बार फिर से रुख करते हैं आकाशवाणी दिल्ली की ओर।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।

0: यूपीआई ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% यूपीआई पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे और हर दो में से एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। नेपाल में भीषण बाढ़ से करीब 160 लोगों की मौत, 133 भारतीयों सहित 750 से अधिक लोग लापता। नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू की। अमेरिका ने विश्व स्तर पर वीजा आवेदनों पर अस्थायी रूप से रोक लगाई। सोशल मीडिया कंपनी मेटा अपने प्लेटफॉर्मों पर बच्चों को नुकसान पहुंचाने के दावों के निपटारे के लिए $18 अरब तक का भुगतान करेगी। और क्रिकेट में भारतीय टीम कोलंबो में श्रीलंका के साथ टेस्ट श्रृंखला जीतने की ओर। अब समाचार विस्तार से। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई और 133 भारतीय नागरिकों सहित 750 से अधिक लोग लापता है। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। महत्वपूर्ण पुलों को

0: बहा ली गई और कई पनबिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया। एक रिपोर्ट।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण ग्लेशियर फट जाने से यह आपदा आई। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि नेपाल तिब्बत सीमा पर हेन्दी नदी में भूस्खलन और जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़ रसुवा जिले के तिमोरे शहर में भोटे कोशी के रास्ते त्रिशूली नदी में प्रवेश कर गई। इसके बाद बाढ़ ने नुवाकोट, चितवन, गोरखा, तनहू और नवलपरासी पूर्वी जैसे अन्य जिलों को चपेट में ले लिया और बाढ़ का पानी राजधानी काठमांडू से लगभग 200 किलोमीटर तक फैल गया। चीन के सरकारी चैनल ने बताया कि चीन की सीमा पर 3 लोगों की मौत हो गई है और 265 लोग लापता हैं। अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों से लगभग 100 लोगों को बचाया गया है। इनमें से 30 लोगों का काठमांडू के त्रिभुवन

0: सरकारी चैनल ने बताया कि चीन की सीमा पर 3 लोगों की मौत हो गई है और 265 लोग लापता हैं। अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों से लगभग 100 लोगों को बचाया गया है। इनमें से 30 लोगों का काठमांडू के त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल में इलाज चल रहा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ साथ आवश्यक दवाओं की 10 टन सामग्री नेपाल को भेज दी है, जिसमें अस्थायी आश्रय, कंबल, स्वच्छता किट और सौर लैंप शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत इस आपदा में नेपाल और उसके लोगों के साथ है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। नंबर है 9779851316807 और 9779701075000। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लापता लोगों की तलाश और बचाव के लिए हर संभव प्रयास करने का आदेश दिया है। पेचिंग में भारतीय दूतावास ने भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 00861851424905। इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क किया जा सकता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के 50 भारतीय तीर्थयात्री भी लापता लोगों में शामिल हैं। अब तक विनाशकारी बाढ़ के बाद कोलकाता और पश्चिम बंगाल के अन्य हिस्सों से 36 लोग लापता बताए जा रहे हैं। विश्व बैंक ने प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण के लिए नेपाल को आपात वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपए देने की पेशकश की है। वहीं नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। बिहार सरकार ने नेपाल में भयावह बाढ़ और गंडक नदी के जलस्तर में संभावित वृद्धि को देखते हुए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली सहित गंडक नदी के किनारे बसे जिलों के लोगों को सतर्क रहने को कहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बैराज में नदी का जलस्तर लगातार कम हो रहा है। आज सुबह बैराज से करीब 80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो कल रात दर्ज किए गए 150,000 क्यूसेक डिस्चार्ज का लगभग आधा है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में रह रहे 5,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। अन्य संवेदनशील जिलों में भी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। बिहार सरकार ने लोगों से सतर्क रहने, किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि हाई अलर्ट को देखते हुए एक उच्च स्तरीय टीम भी गठित की गई है।
3: हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल में फंसे लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1070 शुरू कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित परिवार इस हेल्पलाइन के माध्यम से तुरंत जानकारी साझा कर सकते हैं।
4: उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार अगर राज्य का कोई भी नागरिक नेपाल में फंसा है या उसे किसी भी तरह की मदद की जरूरत है तो उनके परिवार वाले तुरंत 1070 पर संपर्क कर सकते हैं। राज्य सरकार ने नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने और उन्हें तुरंत मदद पहुंचाने के लिए दूतावास स्तर पर संपर्क शुरू कर दिया है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। गंडक और नारायणी नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा।
5: यह संवाद युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से जुड़ने का सीधा माध्यम प्रदान करेगा। साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि उनके विचार और दृष्टिकोण भारत के युवा और खेल पारिस्थितिकी तंत्र पर चल रही चर्चा का हिस्सा बने। इसकी प्रमुख विशेषता युवाओं और अग्रणी भारतीय एथलीटों और

0: पदक विजेताओं के बीच सीधा संवाद है। कार्यक्रम का एक केंद्रीय पहलू युवा संवाद होगा। इसमें युवा प्रतिभागियों को अपने विचार, दृष्टिकोण और आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यह संवाद 5 विषयों पर आधारित होगा, जिनमें खेल, ओलंपिक आकांक्षाएं, युवा नेतृत्व, विकसित भारत और नशा मुक्त युवा शामिल हैं। खेलो इंडिया संवाद का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ, अनुशासित और खेल प्रिय राष्ट्र निर्माण के दृष्टिकोण के अनुरूप किया जा रहा है। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू कर दी है। मंत्रालय ने बताया है कि प्याज को 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि आगामी महीनों में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए प्याज की उपलब्धता पर्याप्त है, क्योंकि 2025-26 के लिए प्याज का अनुमानित उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। मंत्रालय ने बताया कि उत्पादन की अनुकूल संभावना को देखते हुए सरकार ने 2026-27 के दौरान मूल्य स्थिरीकरण कोष बफर के लिए रबी प्याज की 2 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। खरीद प्रक्रिया 15 मई से शुरू हुई और बफर के लिए लगभग 1,21,000 मीट्रिक टन प्याज की खरीद की जा चुकी है। मंत्रालय ने बताया कि पहली कांदा एक्सप्रेस नासिक से रवाना हो चुकी है। आनंद और सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: अमरीकी प्रशासन ने दुनिया भर के सभी अप्रवासी वीजा आवेदनों पर रोक लगा दी है। ये कदम अमरीकी विदेश विभाग द्वारा उन आवेदकों पर प्रतिबंध कड़ा करने और उनकी पहुंच सीमित करने के उद्देश्य से उठाया गया है, जो योग्य अमरीकियों के लिए आरक्षित सार्वजनिक लाभों पर निर्भर हो सकते हैं। सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने 18 अरब अमरीकी डॉलर का भुगतान करने और अपने फेसबुक तथा इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा के लिए और भी कड़े उपाय करने पर सहमति जताई है। एक रिपोर्ट।
3: अदालत की मंजूरी मिलने पर यह समझौता मेटा के खिलाफ राज्यों की ओर से दायर मुकदमों को रोक देगा। मेटा ने कहा है कि किशोरों को अपने प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित और उपयोगी अनुभव प्रदान करना कंपनी के लिए अत्यंत आवश्यक है। मेटा ने प्रतिद्वंदी टिकटॉक और यूट्यूब से भी इसी तरह के सुरक्षा उपाय अपनाने का आग्रह किया। यह समझौता कैलिफोर्निया, कोलोराडो, केंटकी और न्यू जर्सी से जुड़े एक अदालती मामले का निपटारा करेगा, जो 2023 में मेटा पर मुकदमा दर्ज करने वाले 29 राज्यों में शामिल थे। मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि मेटा ने बच्चों को अपने प्लेटफॉर्म की लत लगाने वाले फीचर्स जानबूझकर डिजाइन किए और इसके बारे में लोगों से जानकारी छिपाई, जिससे युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य के विकार पैदा हुए। मामले में यह भी आरोप लगाया गया कि मेटा ने माता पिता की सहमति के बिना 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का डेटा नियमित रूप से एकत्रित करके संघीय कानूनों का उल्लंघन किया। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को पहली पारी में कम स्कोर पर ऑल आउट करके और फॉलो ऑन देकर दूसरे और अंतिम टेस्ट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। कल चौथे दिन खेल समाप्त होने तक श्रीलंका ने 6 विकेट पर 229 रन बनाए थे। श्रीलंका के पासेंदु सूर्या बंदारा ने 92 रन बनाए। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद प्रियंका। नेपाल में जल प्रलय से मची तबाही को आज जनसत्ता और हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, नेपाल में केदारनाथ जैसी त्रासदी, ग्लेशियर से 2000 फीट का टुकड़ा गिरने से झील बनी, टूटते ही सैलाब। अमर उजाला की सुर्खी है, दो नए सैन्य संपर्क बनाएंगे भारत और चीन। ब्रिक्स सम्मेलन के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की भारत यात्रा से पहले विशेष प्रतिनिधियों के बीच दो हॉटलाइन पर बनी सहमति, 8 बिंदुओं से सुलझाएंगे सीमा विवाद। दहेज मामलों में अब तारीख पर तारीख नहीं। नवभारत टाइम्स ने बताया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने दहेज के मामले प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए। सरकार की सख्ती के बाद गिरने लगे चीनी के भाव। दैनिक जागरण ने लिखा है, सप्ताह भर में चीनी के मूल्य में 12 से 15 रुपए की कमी, कुछ दिनों में और गिरावट का अनुमान। दैनिक भास्कर की ये खबर ध्यान खींचती है, फोर्ब्स एशिया 100 टू वॉच सूची में सबसे ज्यादा 19 स्टार्टअप के साथ भारत शीर्ष पर। स्वदेशी पावर चिप से लेकर सीधे कैंसर सेल्स तक दवा पहुंचाने के इनोवेशन कर रही ये कंपनियां। राजस्थान पत्रिका ने ध्वनि प्रदूषण शीर्षक से लिखा है, ट्रैफिक की कर्कश आवाज तले दबी पक्षियों की मीठी चहचहट, इंसानों को अब पूरा नहीं मिल पा रहा तनाव मिटाने वाला नेचुरल टॉनिक।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल में भीषण बाढ़ से करीब 160 लोगों की मौत, 133 भारतीयों सहित 700

श्रोताओं, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार का अनुप्रसारण अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 8:30 हुए हैं। लीजिए, पेश है कार्यक्रम माटी के स्वर।

माटी के स्वर कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों का स्वागत अभिनंदन। चलिए आज हम आपको सुनवाते हैं कुछ लोक मिट्टी और लोक संस्कृति में रचे बसे मीठे मीठे से गीत। पहला गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं साथियों मिलिंद साव और साथियों की आवाज़ों में, जिसे पसंद किया है इंदिरा विहार रायगढ़ से अकरम नूरजहां, डब्लू नूरजहां, सईद नूरजहां, वसीम और वली उल्लाह नूरजहां ने। राजनंदगांव से हमारे साथी हैं याकूब यूसुफ इमरान और इरफान आसमा। रायगढ़ से ही हैं रेशमा तिवारी, सोनम अदीबा तिवारी। अकलतरा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, कीर्ति, संध्या, डिकेश, डॉली, वासु और पूर्वेश ने भी इस गीत की फरमाइश भेजी है। भाटापारा से हैं रमज़ान खान सिकंदर, अशरफ खान नासिर, अयाज अल्फेज खान, सादिया खान, हजरुन निशा। बिल्हा से शेख नासिर और महजबीन बानो। भाटापारा से मोतीलाल, संतोष कुमार, मुंडुल यादव। सूरजपुरा से सुरेंद्र कुमार, प्रीति, योग्य कुमार और मोक्ष कुमार यादव ने भी फरमाइश इस गीत की भेजी है। भाटापारा से हमारे साथी हैं दान सिंह रावत, दानु, पद्मिनी, शुभम, सौरभ रावत। और दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लचनपुर से विश्वनाथ साहू और पिपरिया से दुर्गाराम साहू। लुथरा खमरिया से हैं नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज। और देवरी भाटापारा से एक पत्र आया है इसी गीत के लिए। लिखने वाले हैं गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश, मयाराम, पुनेश्वर, फनेश्वर, मुकेश, हाव्या और सानिया रजक का। तो इन सभी की पसंद पर कार्यक्रम का पहला गीत लीजिए पेश है मिलिंद साव और उनके साथियों के स्वर में।

0: कुछ रिश्तों को शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस एक राखी, एक मुस्कान और न्यू दिल्ली स्वीट्स की मिठाइयाँ। जब दीदी अपने हाथों से न्यू दिल्ली स्वीट्स की मिठाई खिलाती है तो लगता है जैसे पूरा बचपन जुबान पर रख दिया हो। इस रक्षाबंधन रिश्तों की सबसे मीठी याद घर ले जाइए।
1: न्यू दिल्ली स्वीट्स, हाउस ऑफ प्योरिटी, लिंक रोड, बिलासपुर।
2: श्रोताओं, माटी के स्वर कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए, सुनिए, जिसे पसंद किया है अनूपपुर से पवन कुमार, संतोषी, बबली, स्वीटी, श्याम शंकर और राजू ने। और इस दफे हम आपको सुनवा रहे हैं अमचीरी बाई की आवाज में ये मीठा सा गीत। इसके साथ ही कुछ पत्र और हैं इस गीत के लिए। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, अकलतरा से रमेश कैवर्त, राजकुमारी, आरती कैवर्त, बिलगहना से श्याम शंकर, विजय, रागिनी, गीता, कैलाश, चंद्रवती, कुसुम और राधा।

पिंडरा से हमारे इन श्रोताओं ने भी इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी है। कैलाश, सुरेंद्र कुमार, संजना, प्यारेलाल, सुनवानी, बबली और इनके बहुत सारे साथी। इसी गीत की एक मिली जुली फरमाइश मुंगेली से भी आई है। लिखने वाले साथी हैं लव सिंह, ठगवा सिंह, लोकू, कृष्णमूर्ति पांडे, खीरू, अनुज, महेश, दशरथ और तुलसी कोटवार। लीजिए सुनिए इन सभी श्रोता साथियों की पसंद पर माटी के स्वर कार्यक्रम का ये दूसरा गीत अमचीरी बाई की आवाज़ में।

0: कुछ रिश्तों को शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस एक राखी, एक मुस्कान और न्यू दिल्ली स्वीट्स की मिठाइयाँ। जब दीदी अपने हाथों से न्यू दिल्ली स्वीट्स की मिठाई खिलाती है तो लगता है जैसे पूरा बचपन जुबान पर रख दिया हो। इस रक्षाबंधन रिश्तों की सबसे मीठी याद घर ले जाइए।
1: न्यू दिल्ली स्वीट्स, हाउस ऑफ प्योरिटी, लिंक रोड, बिलासपुर।

श्रोताओं, कार्यक्रम माटी के स्वर का अगला गीत आप तक पहुंचाने से पहले कार्यक्रम संबंधी एक सूचना हम आपको दे दें। प्रत्येक शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार यानी आज 27 अगस्त को स्टूडियो में कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर दुष्यंत कौशिक उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा खरीफ फसलों में समन्वित कीट प्रबंधन। इस विषय से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए आप हमें हमारे इन नंबरों पर कॉल लगा सकते हैं। हमारे नंबर नोट कीजिए, हमारे नंबर है मित्रों 2665 92 और 3100026। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का स्टडी कोड अवश्य लगा लें। बिलासपुर का स्टडी कोड है 07752। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग का प्रसारण आप 28 अगस्त शाम 7:30 से 8 बजे के बीच सुन सकते हैं। और अब चलिए कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं सुरेंद्र मधुकर और ज्योति चौहान की आवाज़ों में। फरमाइश इन श्रोता साथियों की है दुर्ग से पोषण बंछोर, चंद्रकिरण प्रीति और छाया बंछोर, दतरंगी भाटापारा से नोखेलाल वर्मा, हीरामणि पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, महानदी सिहावा से मिथिलेश देवांगन, मधु हिमांशु, अंकित देवांगन, रोहांसी से नूतन, गौरव घनश्याम, अलका जानवी साहू, बुड़गहन से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला और शशि कांता प्रजापति, और पोड़ी लाफा से हैं विद्यानंद साहू, त्रिवेणी रानी, बबली सुमन, मंटू मिष्टी, सृष्टि दृष्टि, गन्नू गणेश, कान्हा कृष्णा, अंशु, पोड़ी फली से राम स्नेही, मीना ब्रह्मानंद परमानंद, संध्या प्रियंका, हर्ष महिमा, प्रज्ञा तन्मय, सोमांश और आनंद, और पोड़ी अकलतरा से हैं दिलीप चंदन, चुवाराम, निखिल, वसुंधरा प्रांजल, और तखतपुर से जैमुन कॉल, दिलीप रामायणी और भुवनेश्वर कॉल ने भी इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी है। तो इन सभी साथियों की पसंद पर लीजिए पेश है सुरेंद्र मधुकर और ज्योति चौहान की आवाज़ में ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम में लीजिए पेश है शैलबाला ध्रुव की आवाज में ये मीठा सा गीत, जिसे पसंद किया है बसीबार से शिव नारायण नामदेव, सविता देवी, राम प्रसाद, आंचल चंचल चांदनी, विनय कुमार, वर्षा, मनोज कुमार और कान्हा ने। शांति नगर पाली से हैं विष्णु सिंह कोरम, संतोषी, आरती पूर्वा, प्रतिभा, योगेश, नीलेश और चंद्रशेखर। जांजगीर से हमारे श्रोता हैं दुर्गा प्रसाद तिवारी, अमन कुमार, मीनाक्षी, उमाबाई, हेमदेव, विष्णु प्रसाद और अंजुलता तिवारी। दर्री से नितेश कुमार, चंद्र विजय और दामो दाऊ। भाटापारा से मिलो मानिकपुरी, संतोष, संदीप, अजीत, लक्की। भार्गव, नीलक्ष, विवान मानिकपुरी। भाटापारा से ही हैं विरछा, संजना, संगीता, अंजलि और चारू मानिकपुरी। गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लकी विकी, नानू, रविंद्र और खुशी सेन। साथ में है रौनक सेन। एक और पत्र है इसी गीत की फरमाइश लिए। कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, मोनू, सोनू, कान्हा, आदित्य देवांगन। बमर चांटी टी से गंगा देवी, पूनम, धनेश्वरी, महेश्वरी, मिल्की, मीनाक्षी, निधि देवांगन। भाटापारा से हैं श्याम रतन मुंद्रा, रचनाकार मुंद्रा। भाटापारा से हैं बबला, रिखी राम और कमलेश्वरी यादव। एक और पत्र है पीपरपारा पालचुआ मुंगेली से उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी, योगिता, नितिन और वंशिका दिवाकर का। अमलेश्वर से हैं डोवन ठाकुर, सुमन, ज्योति, रियांश। दतरंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार। अमलेश्वर से ही मिथिलेश, तारिणी, सुजला, सुफला और सूरज ठाकुर। इन सभी की पसंद पर लीजिए पेश है कार्यक्रम का ये अगला गीत।

श्रोताओं लीजिए पेश है कार्यक्रम का अंतिम गीत उमा सोनी की आवाज भी। पसंद हमारे इन श्रोताओं की है, भाटापारा से है बचकामल मोतीलाल, बसंत भृगु, विनय ठाकुर, सूरज बारेकर, चुवाराम, राधेश्याम, लतेल प्रसाद, लेखराम, काजूराम, राकेश यदु, रविशंकर, जितेंद्र और नारायण यदु। भाटापारा से ही है सियाराम, अश्विनी पांडे, सोना डी से सुब्रत चौधरी और बेबी अनिशा। हथनीपारा भाटापारा से दुर्गा दुर्गेश्वरी, गीतू, मुकेश वर्मा और भाटापारा से ही हैं हरीश, किरण, दुलारी वर्मा। इनकी पसंद है उमा सोनी के स्वर में गाए इस गीत की।

श्रोताओं, ये था इस कार्यक्रम का अंतिम गीत जिसे आप सुन रहे थे उमा सोनी की आवाज में। और इस गीत के साथ ही माटी के स्वर कार्यक्रम का आज का ये अंक अभी ही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

श्रोताओं, सुबह के 9 बजे हैं। अब से लेकर 9:55 तक हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे और ठीक 9:55 पर प्रादेशिक समाचार के लिए हम जुड़ेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। तो चलिए इस वक्त फिलहाल जुड़ते हैं विविध भारती से।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक, और आइए अब आपको सुनवाते हैं रेडी, इस फिल्म का गीत नीरज श्रीधर और अमृता काक की आवाजों में। अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा है और प्रीतम का संगीत।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: श्रोताओं, इन दिनों नेत्रदान पखवाड़ा चल रहा है। नेत्रदान केवल आंखों का दान नहीं बल्कि किसी के अंधेरे जीवन में रोशनी देने का संकल्प है। हमारे जाने के बाद हमारी आंखें किसी ऐसे व्यक्ति की दुनिया को रोशन कर सकती हैं जिसने शायद कभी रंगों की खूबसूरती देखी ही ना हो। जीवन समाप्त होने के बाद भी किसी के जीवन में उजाला छोड़ जाना, इससे सुंदर दान और क्या हो सकता है। तो आप भी इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप चाहें अपना पंजीकरण इसके लिए करवाएं। बहुत नॉमिनल इसकी जो ये होती है प्रोसेस होती है, वो बहुत ही आसान प्रक्रिया होती है, आप कर सकते हैं। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी नेत्रदान किसी व्यक्ति ने किया हुआ है तो उसकी मृत्यु के तुरंत बाद आपको डॉक्टर को सूचित करना है कि इस व्यक्ति ने नेत्रदान किया है, ताकि समय रहते उनके नेत्रों को लिया जा सके। यदि इस चीज में देरी हो जाती है यदि, तो फिर वो आंखें काम की नहीं रह जाती। इसलिए वो आप जरूरी है कि आप जैसे ही किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और यदि उसने नेत्रदान किया हुआ है तो वो तुरंत डॉक्टर को, जो घर वाले हैं वो सूचित करें कि इस व्यक्ति ने नेत्रदान किया हुआ है। चलिए अब आपको सुनवाते हैं यमला पगला दीवाना, इस फिल्म का गीत सोनू निगम और निंदी कौर की आवाजों में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा है, राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: सारे आमंत्रित कलाकार हैं।
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
0: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
1: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: खिलाड़ी फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं श्रीराम और श्रेया घोषाल की आवाजों में। समीर ने इसे लिखा है, हिमेश रेशमिया का संगीत।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक, और आइए अब आपको सुनवाते हैं ये गीत सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजों में। फिल्म का नाम है बोल बच्चन। स्वानंद किरकिरे ने इसे शब्दबद्ध किया है और धुन बनाई है अजय अतुल ने।

नए दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और आइए अब आपको सुनवाते हैं अय्या इस फिल्म का गीत। इसे लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत है अमित त्रिवेदी का।

शाल्मली खोलगड़े और मोनाली ठाकुर की आवाजों में अभी आपने सुना अय्या फिल्म का गीत। और इस गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम हम संपन्न करेंगे। आपको बता दें कि आज सुबह 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम में आप सुनेंगे मुकेश को, आलेख और स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुति मनीषा जैन की। इसके अलावा आज दोपहर 4 बजे होगा हेलो फरमाइश कार्यक्रम, आप सुनेंगे, संवादक होंगी ममता सिंह। तो इन कार्यक्रमों को जरूर सुनिएगा, भूलिएगा नहीं इनका समय। इसी के साथ चित्रलोक कार्यक्रम से नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको एक दिलचस्प घटना बताते हैं। एक लड़का था जिसकी बहन की शादी हो रही थी और अभिनेता मोतीलाल चूंकि उसके रिश्तेदार थे इसलिए वो इस शादी में शामिल होने के लिए आए थे। चूंकि माहौल शादी के जश्न का था तो उस लड़के से कहा गया कि तुम गाना गाओ क्योंकि परिवार में सब जानते थे कि इसे गाने का शौक है। उस लड़के ने गाना गाया और सब लोग मुग्ध होकर सुनते रहे। मोतीलाल जी को लगा कि इस लड़के में प्रतिभा है। उन्होंने उसे मुंबई बुला लिया और बस यहां से फिल्म संगीत का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया क्योंकि ये नौजवान था मुकेश चंद्र माथुर।

0: सितारे रहेंगे।
1: हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास को खंगालें तो जो सबसे रोशन सितारे हमें नजर आते हैं पुरुष गायकों में, वो हैं मोहम्मद रफी, मुकेश और किशोर कुमार। जाहिर है कि इन तीन मुख्य सितारों को अलग कर दें तो फिल्म संगीत के न जाने कितने अनमोल गाने फिल्म संगीत के इतिहास से हट जाएंगे। मुकेश चंद्र माथुर के अपने फैन रहे हैं और दुनिया के कोने कोने में रहे हैं। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि मुकेश की गायकी में ऐसी सादगी, ऐसी सरलता है कि यूं लगता है जैसे वो हमारे लिए गा रहे हैं और हम उनके साथ गा रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि आपके परिवार में अंत्याक्षरी हो रही हो, कोई पिकनिक हो, कोई अन्य उत्सव हो, गाने का माहौल हो, तो कोई ना कोई मुकेश का फैन आपको जरूर मिल जाएगा। यूं लगेगा जैसे मुकेश उसकी

मुकेश चंद्र माथुर का जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में हुआ था। पिता लाला जोरावर चंद इंजीनियर थे और मां थी चांद रानी। दरअसल पुरानी दिल्ली में पैदा हुए इस लड़के के जहन में संगीत की महक बहुत पहले से थी। बहुत बचपन से इस लड़के ने गुनगुनाना शुरू कर दिया था। ये वो दौर था जब सबसे बड़े गायक थे कुंदन लाल सहगल और सभी उनके दीवाने हुआ करते थे। जाहिर है कि यंग मुकेश भी कुंदन लाल सहगल के फैन थे। दसवीं पास की उस जमाने में इतनी पढ़ाई बहुत मानी जाती थी। इसके बाद लोक निर्माण विभाग में काम करना शुरू कर दिया। तकरीबन यही दिन थे जब उनकी बहन की शादी हुई और वही घटना हुई जो हमने आपको इस कार्यक्रम की शुरुआत में सुनवाई थी, और इस तरह से मुकेश का मुंबई जाने का रास्ता खुल गया। हुआ यूं कि रंजीत मूवी टोन की ओर से एक विज्ञापन जारी किया गया जिसमें यह कहा गया कि एक नए गायक की तलाश जारी है। और फिर क्या हुआ कि चंदूलाल शाह के जारी किए गए इस विज्ञापन को देखकर मुकेश मोतीलाल जी के पास मुंबई आ गए। यहां आने के बाद उन्होंने पंडित जगन्नाथ प्रसाद से संगीत की तालीम लेनी भी शुरू कर दी और उन्होंने बड़ी शिद्दत से ये सपना देखा कि वो गायक अभिनेता बनेंगे। और ऐसा हुआ भी। सन 1941 आया, मुकेश ने अपनी पहली फिल्म साइन की निर्दोष। इस फिल्म में उन्होंने अभिनय भी किया और गाया भी। यानी ये वो पहला गाना है जो मुकेश जी ने गाया, पर इस गाने में मुकेश जी ने प्लेबैक नहीं किया, यानी किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए गाया। ये गाना था दिल ही बुझा हुआ है तो फसले बहार क्या।

मुकेश जी का पहला प्लेबैक गाना कौन सा था ये भी आपको बता देते हैं। सन 1945 में फिल्म पहली नजर बन रही थी। संगीतकार अनिल बिस्वास से मोतीलाल ने ये कहा कि आप मेरे लिए एक युवा गायक से प्लेबैक करवाएं। मुकेश की आवाज जब अनिल बिस्वास ने सुनी तो उन्हें ये आवाज जम गई और फिर मुकेश ने गाया अपना पहला प्लेबैक सॉन्ग पहली नजर फिल्म में।

जब कुंदनलाल सहगल तक इस गाने की ख्याति पहुंची और उन्होंने इस गाने का रिकॉर्ड सुना तो वो चकित रह गए। उन्होंने तपाक से ये सवाल पूछा, ये गाना मैंने कब गाया? इसके बाद उन्होंने मुकेश को अपने घर बुलवाया और कहा कि तुम गाने गाते जाओ। मुकेश एक के बाद एक कई गाने गाते चले गए और कुंदनलाल सहगल उस जमाने के सुपरस्टार, उस जमाने के लाजवाब गायक और अभिनेता मुकेश को मुग्ध भाव से सुनते चले गए। उन्हें लगा कि यही है मेरा उत्तराधिकारी और उन्होंने अपना रियाज वाला हारमोनियम मुकेश को भेंट कर दिया। ये कुंदनलाल सहगल का मुकेश के लिए आशीर्वाद था। सन 1941 में निर्दोष में अभिनय करने के बाद सन 1943 में मुकेश ने एक और फिल्म में अभिनय किया जिसका नाम था आदाब अर्ज। सन 1953 में उन्होंने फिल्म माशूका में अभिनय किया जहां उनकी हीरोइन थी सुरैया और सन 1951 में मल्हार फिल्म में अभिनय किया। संगीतकार रोशन की ये पहली फिल्म थी।

ये वो दौर था जब मुकेश कुंदन लाल सहगल की छाया में थे, उनके प्रभाव में थे और उनके जैसा गाया करते थे। सन 1948 में नौशाद ने दिलीप कुमार की फिल्म मेला के लिए मुकेश को गाने का मौका दिया और नौशाद के जरिए कुंदन लाल सहगल की छाया से बाहर आया उस जमाने का युवा पार्श्व गायक मुकेश। और फिर बस मुकेश की अपनी शैली तैयार हो गई। सन 1949 तक मुकेश का स्वर कुछ ऐसा हो चुका था।

1948-49 का दौर भारत में फिल्म संगीत के बदल जाने का दौर था। कैसे, आपको बताते हैं। लगातार नई प्रतिभाएं आती चली जा रही थीं और इन नई प्रतिभाओं में शामिल थे युवा संगीतकार शंकर जयकिशन। शंकर सिंह रघुवंशी और जयकिशन पांचाल किस तरह से मिले, ये तो एक इतिहास है। राज कपूर ने उन्हें अपनी फिल्म बरसात में संगीत देने का मौका दिया और इस युवा संगीतकार जोड़ी ने कई युवा कलाकारों से गाने गवाए, जिनमें से एक मुकेश भी थे। फिल्म बरसात में मुकेश ने दो गाने गाए थे। एक गाना था ये।

कि मुकेश का आखिरी गीत भी राज कपूर की ही फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया गया था। ये कहानी बाद में, पहले आपको एक दिलचस्प आंकड़ा बताते हैं। जरा सोचिए कि मुकेश ने किस संगीतकार के लिए सबसे ज्यादा गाया होगा। आपने सही सोचा है, शंकर जयकिशन के लिए मुकेश ने कुल 133 फिल्मों में पार्श्व गायन किया, जबकि कल्याण जी आनंद जी के लिए 99 फिल्मों में। जाहिर है कि कल्याण जी आनंद जी भी मुकेश के कम फैन नहीं थे।

इसके बाद राज कपूर, शंकर जयकिशन और मुकेश की इस तरह से टोली बनी कि एक के बाद एक इनकी फिल्में आती चली गईं और इन तमाम फिल्मों में मुकेश के गाने आते चले गए। यहां तक

चलिए फिर से पीछे चलते हैं, समय के चक्र को घुमाते हैं और पहुंच जाते हैं सन 1948 में। आप सोच रहे होंगे कि यहां हम क्यों आए हैं। दरअसल यहां हम आपको ये बताने के लिए आए हैं कि बरसात वो पहली फिल्म नहीं थी जिसमें मुकेश ने राज कपूर के प्रोडक्शन के लिए गाया था। राम गांगुली के निर्देशन में आग में वो ये गाना गा चुके थे।

अब राज कपूर के साथ मुकेश ने किन किन फिल्मों के लिए गाया, एक के बाद एक लड़ी में फिल्में और गाने पिरोते हुए आज के फनकार कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आप हमारे साथ साथ आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए जरा अपने पैंट को थोड़ा सा ऊपर मोड़ लीजिए, सिर पर एक टोपी पहन लीजिए और सन 1951 में चलकर उछलते हुए मेरे साथ गाइए।

1964 में राज कपूर ने अपनी बहुत ही महत्वाकांक्षी फिल्म बनाई, जो राज कपूर की पहली कलर फिल्म थी, फिल्म संगम। इस फिल्म में मुकेश ने ये मार्मिक गाना गाया था।

की पुस्तक मारे गए गुलफाम, हमें याद शैलेंद्र की आ रही है जिन्होंने इस पुस्तक पर तीसरी कसम फिल्म बनाई और इस फिल्म में मुकेश ने बड़े मन से गाया।

और फिर सन 1978, मुकेश को अमेरिका की यात्रा पर जाना था और जाने से पहले जो आखिरी गीत उन्होंने संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए रिकॉर्ड करवाया वो सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के लिए था।

इस गाने को रिकॉर्ड करने के बाद मुकेश ने एक लंबी उड़ान ली अमेरिका के लिए, और वहां से इससे भी लंबी उड़ान वो इस फानी दुनिया को अलविदा कह के चले गए। ये बातें हुई राज कपूर और मुकेश के साथ वाले गानों की। लेकिन ऐसा नहीं था कि राज कपूर के लिए सिर्फ उनके प्रोडक्शन में मुकेश ने गाया हो। जरा 1950 में केदार शर्मा की बनाई फिल्म बावरे नयन का ये गाना सुनिए और याद कीजिए नीली आंखों वाले राज कपूर को।

अब आप सोच रहे होंगे ये भी कोई बात हुई कि पूरे आज के फनकार कार्यक्रम में केवल राज कपूर की बातें। अरे नहीं नहीं, ये नाइंसाफी हम नहीं होने देंगे। दिलीप कुमार के लिए जो प्लेबैक मुकेश ने किया वो तो लाजवाब था। फिल्म यहूदी का ये गाना सुनिए, शैलेंद्र के बोल हैं।

0: सन 1962 में चलते हैं, जब मनोज कुमार मुकेश की आवाज के जरिए।
1: श्रोताओं, 9:54 हो चुके हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए इस वक्त हम रुक करेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र की ओर।
2: 9:55 हुए हैं, अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
0: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री आज देश भर के अलग अलग स्थानों पर मौजूद 8,00,000 से अधिक युवाओं से वर्चुअल संवाद करेंगे। राज्य शासन ने खेल अलंकरणों के लिए चयनित खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और निर्णायकों की सूची जारी कर दी है और छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने के संबंध में सुझाव प्राप्त करने आज रायपुर में राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में आज देश भर में खेलो इंडिया संवाद, खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के अलग अलग स्थानों पर मौजूद 8,00,000 से अधिक युवाओं से वर्चुअल संवाद करेंगे। यह कार्यक्रम देश के प्रत्येक जिले के 2 प्रमुख महाविद्यालयों में आयोजित किया जाएगा। इसके तहत युवा प्रतिभागियों को स्थानीय खेल हस्तियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों के साथ सीधे संवाद करने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान 15 मिनट का एक समर्पित युवा संवाद सत्र भी होगा, जिसके माध्यम से युवा अपने विचार, आकांक्षाएं और नीतिगत सुझाव व्यक्त कर सकेंगे। राज्य शासन ने खेल अलंकरणों के लिए चयनित खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और निर्णायकों की सूची जारी कर दी है। पिछले 3 वर्षों के लिए कुल 82 लोगों को पुरस्कार और सम्मान दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ट्रॉफी के लिए 5 दलों के 43 खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों का चयन किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त को खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और निर्णायकों को राज्य अलंकरण प्रदान करेंगे। राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में विभिन्न खेल पुरस्कारों के साथ मुख्यमंत्री ट्रॉफी के लिए चयनित प्रतिभागियों को भी पुरस्कृत किया जाएगा। छत्तीसगढ़ भाजपा ने आगामी महीनों में 15 नगरी निकायों के लिए चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। इनमें संगठन से जुड़े नेता, विधायक, पूर्व विधायक, महापौर और पार्षद शामिल हैं। हर निकायों में 1 प्रभारी और 2 सह प्रभारी मिलाकर कुल 4500 पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। इनमें 15 निकायों में 4 नगर निगम, 4 नगर पालिका और 6 नगर पंचायत शामिल हैं। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में तीसरी बार पेपर लीक का मामला सामने आया है। बीएससी प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स का पेपर 19 अगस्त को सुबह 10 बजे होना था, लेकिन परीक्षा से 5 घंटे पहले ही पेपर की पीडीएफ स्टूडेंट्स के बीच वायरल हो गई। विश्वविद्यालय ने तेलीबांधा पुलिस को मामले की जांच के लिए पत्र लिखा है। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने शासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की उपस्थिति में आज रायपुर में राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी। इस विषय पर व्यापक विचार विमर्श करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 200 लोगों को आमंत्रित किया गया है। इनमें आयोग, निगम, मंडल, विभिन्न सामाजिक संगठनों, समाज प्रमुखों, विकास प्राधिकरणों के पदाधिकारियों, प्रबुद्ध नागरिक, जनप्रतिनिधि और विशेषज्ञ शामिल हैं। बैठक में समान नागरिक संहिता के विभिन्न प्रावधानों, सामाजिक प्रभावों और व्यवहारिक पहलुओं पर भी चर्चा की जाएगी। छत्तीसगढ़ में आज कई जगह बारिश का अलर्ट है। कुछ इलाकों में भारी बारिश के साथ गरज चमक और बिजली गिरने की चेतावनी है। बलरामपुर के तेतरडीह में मंगलवार दोपहर कृषि विभाग का बांध टूट गया। पानी खेतों में भरने से धान की फसल को नुकसान पहुंचा है। शासकीय स्कूलों में ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने में आ रही तकनीकी दिक्कतों के बीच स्कूल शिक्षा विभाग ने विद्या समीक्षा केंद्र ऐप को अपग्रेड किया है। ऐप में ऑफलाइन मोड और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की सुविधा जोड़ी गई है। अब शिक्षक बिना इंटरनेट के भी स्कूल परिसर में चेक इन कर सकेंगे। इससे प्रदेश के प्राथमिक से हायर सेकेंडरी स्कूलों और कार्यालयों में पदस्थ करीब 1,75,000 शिक्षक कर्मचारियों को राहत मिलेगी। महासमुंद के सरायपाली के ग्राम बरिहा पाली के 4 श्रमिकों को तमिलनाडु के नमक्कल जिले में रेस्क्यू टीम और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से मुक्त करा लिया गया है। ठेकेदार द्वारा उन्हें गांव लौटने से रोक

0: की शिकायत पर जिला प्रशासन की टीम भेजी गई थी। आवश्यक औपचारिकताओं के बाद श्रमिकों के महासमुंद लौटने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री आज देश भर के अलग अलग स्थानों पर मौजूद 8 लाख से अधिक युवाओं से वर्चुअल संवाद करेंगे। राज्य शासन ने खेल अलंकरणों के लिए चयनित खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और निर्णायकों की सूची जारी कर दी है और छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने के संबंध में सुझाव प्राप्त करने आज रायपुर में राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे है। लीजिए पेश है कार्यक्रम आपकी पसंद। आपकी पसंद कार्यक्रम सुनने वाले आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत, अभिनंदन। फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित इस कार्यक्रम का पहला गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं अनपढ़ फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज है, राजा मेहंदी अली खां के लिखे बोल हैं और मदन मोहन ने इस गीत को संगीतबद्ध किया है। पसंद इस गाने के लिए हमारे पास इन श्रोताओं की पहुंची है। लुथरा खमरिया से हैं नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज। भाटापारा से श्याम रतन मुंद्रा, रचनाकार मुंद्रा। भाटापारा से बाबला यादव, रिकी राम, कमलेश्वरी। और दतरंगी से हैं भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, लचनपुर से शिवनाथ साहू और पिपरिया से दुर्गाराम साहू। देवरी भाटापारा से कन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश मयाराम, पुनेश्वर फनेश्वर, मुकेश हाव्या और सानिया रजक ने भी इस गीत की फरमाइश लिख भेजी है। बलौदा से है दिलहरण गौतम, अंजलि, आनंद पटेल और समृद्धि। भाटापारा से एक और पत्र है मोतीलाल, संतोष कुमार, मुंडुल यादव। सूरजपुरा से सुरेंद्र कुमार, प्रीति, योग्य और मोक्ष कुमार। हठरी बाजार भाटापारा से है मोतीलाल, गौतम, देवदास, मुकेश, पवन गोलू। और दामन बोर्ड से कुमार यादव, अमृत यादव, कामदेव और लेखुराम यादव। महारानी चौक भाटापारा से हमारे इन श्रोताओं ने भी इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी है। परस शर्मा, निधि शर्मा, रुचि, नित्या शर्मा। सिद्ध बाबा भाटापारा से हैं कामता, सोनमत, मन्नू और निकिता यादव। तो इन सभी श्रोता साथियों की पसंद पर लीजिए पेश है कार्यक्रम का पहला गीत अनपढ़ फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज़ में।

श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए। पेश है आशा भोसले की आवाज में काजल फिल्म से, साहिर की रचना है, रवि का संगीत और पसंद हमारे इन श्रोता साथियों की। भाटापारा से दान सिंह रावत, दानू पद्मिनी रावत, शुभम सौरभ, नीरज रावत। भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र, दुष्यंत राघवेंद्र। अकलतरा से अभिनव, अभिषेक, उमा देवी साहू। मोती गार्डन भाटापारा से मोतीलाल, कल्पना, बिट्टू कुमार, चिंटू, युग कुमार। भाटापारा से ही राम कुमार, अमरीका, गणेश, कार्तिक, युवराज। तेलीपारा से रजन साहू, बेबी शानी, छन्नूलाल श्रीवास, अनीता श्रीवास। भाटापारा से हैं बचकामल, मोतीलाल यादव, बसंत भृगु, विनय ठाकुर, चुवाराम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यदु, लेखराम यदु, राधेश्याम, जितेंद्र साहू। भाटापारा से ही सियाराम, अश्विनी पांडे, सोनाडी से सुब्रत चौधरी और अनीशा, रायपुर से नीलू मेघ। भाटापारा हथनी पारा से दुर्गा दुर्गेश्वरी वर्मा, मुकेश हरीश, किरण दुलारी वर्मा। अगलतरा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, कीर्ति, संध्या, डीकेश, वासु, डॉली और पूर्वेश। बीट शहर से प्रकाश, पराग, प्रदीप, केशव पटेल। भाटापारा से अमृता, पार्वती, ईश्वरी, लक्ष्मी, प्रेरणा, डिम्पी। नेवधा से दुलारी, प्रियंका, प्रीति, उमेश्वरी, सुनती यादव। भाटापारा से एमएल यादव, अजय कुमार, अमित, अमिन, गिरीश, करण, युवान, दाबेश। नेवधा से सेवकराम, टुपेंद्र कुमार, तुलेंद्र कुमार और देव कुमार यादव ने भी इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी है।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कुछ रिश्तों को शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस एक राखी, एक मुस्कान और न्यू दिल्ली स्वीट्स की मिठाइयाँ। जब दीदी अपने हाथों से न्यू दिल्ली स्वीट्स की मिठाई खिलाती है तो लगता है जैसे पूरा बचपन जुबान पर रख दिया हो। इस रक्षाबंधन रिश्तों की सबसे मीठी याद घर ले जाइए।
4: न्यू दिल्ली स्वीट्स, हाउस ऑफ प्योरिटी, लिंक रोड, बिलासपुर।
5: श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम का इस वक्त आप आनंद उठा रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। लीजिए पेश है कार्यक्रम का अगला नगमा, किशोर कुमार की आवाज में अंधा कानून फिल्म से। आनंद बख्शी के लिखे बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है संगीत और पसंद हमारे इन श्रोता साथियों की है। रायगढ़ से अकरम नूरजहां, डब्लू नूरजहां, सईद वसीम, वली उल्लाह नूरजहां। राजनंदगांव से याकूब आसमा, यूसुफ इमरान, इरफान आसमा। रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, अदीबा तिवारी। नैला से प्रमोद कुमार, वीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली, प्रियांशु। खतियापारा जूना बिलासपुर से हैं सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, शनि, रेयांश, कान्हा, आदित्य देवांगन। बमर चाटीडी से गंगा देवी, पूनम, धनेश्वरी, महेश्वरी, मिल्की, मीनाक्षी, निधि देवांगन। गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की, विक्की, नानू, रविंद्र सेन, खुशी और रौनक सेन। दतरंगी भाटापारा से हैं नोखीलाल वर्मा, हीरामणि, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि वर्मा। बठेना से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, रेखा, धनेश्वरी। सारागांव से सुजान, सोहद्रा, आयुषी, कृत वर्मा। नवागढ़ कटई से हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, सीमा, शारदा, दामिनी। बेमेतरा से सुरेश कुमार, पूर्णिमा, हेमलता, कमलकांत, वीरेंद्र, व्रजकांत और इनके साथ ही। पुड़ग्रहण से हैं रामदुलारी प्रजापति, रामचरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला और शशिकांता प्रजापति। एक और पत्र है इसी गीत के लिए, अकलतरा से रमेश कैवर्त, राजकुमारी आरती कैवर्त का। रोहांसी से हैं डगेश्वर राम साहू, नूतन गौरव, घनश्याम, अलका, जानवी साहू। दरचूरा से हमारे साथी हैं ददुआ साहू, भूरी, संतोषी, दुलोरिन, रेखा, मोतीलाल, कामेश्वरी, प्रीतम कुमार साहू। इन सभी

0: कुछ रिश्तों को शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस एक राखी, एक मुस्कान और न्यू दिल्ली स्वीट्स की मिठाइयाँ। जब दीदी अपने हाथों से न्यू दिल्ली स्वीट्स की मिठाई खिलाती है तो लगता है जैसे पूरा बचपन जुबान पर रख दिया हो। इस रक्षाबंधन रिश्तों की सबसे मीठी याद घर ले जाइए।
1: न्यू दिल्ली स्वीट्स, हाउस ऑफ प्योरिटी, लिंक रोड, बिलासपुर।
2: राखी बनाए रिश्ता और शानदार।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म का ये गीत, जिसे पसंद किया है हमारे इन श्रोताओं ने। बसीबार से हैं शिव नारायण नामदेव, सविता देवी, आंचल चंचल, चांदनी, विनय, मनोज कुमार, कंवर। जांजगीर से राम नारायण, कविता देवी, कुसुम लता, खुशबू कुमारी कश्यप। इंदिरा नगर रायगढ़ से शेख अब्दुल सलीम बेगम, परवीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम, आसिफ नईम राजा। दतरंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार, छावेंद्र कुमार। मर्रा कोना बावली से उत्तम कुमार कौशिक, बिहारी लाल, हरीश कुमार, शिवम कुमार कौशिक। मगरलोड से पुन्नूराम साहू, तेजस्वी साहू, राजश्री और राजवीर साहू। भिलाई से सुशील जैन, कल्पना, सिया, सौरभ, शौर्य और शुभम जैन। बिलगहना से श्याम शंकर, विजय, रागनी, गीता, कैलाश, चंद्रवती, कुसुम और राधा। और बालोद से इसी गीत की फरमाइश भेजी है जितेंद्र दास मणिपुरी, मिलऊ, जय दास, देवेश, धनवंतिन बाई और मोतिन बाई ने। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम का अगला गीत हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म से।

श्रोताओं, फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद का इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम में लीजिए पेश है सुमन कल्याणपुर की आवाज में रेशम की डोरी फिल्म का गीत। इंदीवर की रचना धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने और फरमाइश इन श्रोता साथियों की है। पूड़ी भाटा अकलतरा से दिलीप चंदन, चुवाराम निखिल, वसुंधरा प्रांजल, बिरगांव से जयमुन कौल, दिलीप कौल, रामायणी और भुवनेश्वर कौल, सिहावा से मिथिलेश मधु, हिमांशु, अंकित दिवांगन, पोटिया कला दुर्ग से संजय सुजाता, शशांक, सीमा साहू और नांदेड़ से प्रभाकर जोंदले, आरती जोंदले, धरसीवा से छेदूलाल, सीता, अर्चना, अरुणा, अनुराधा, अल्पना यादव और दुर्गापारा संतोषी नगर से छन्नूलाल यादव, अनुराम, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाऊ, रानू, खुशी, प्रवीण और सी एल यादव, अवरेठी पारा बाटापारा से अनीता, वीना, नेहा, मोनिशा साहू और बेमित्रा से हमारे साथी हैं सुरेश कुमार, पूर्णिमा, हेमलता, कमलकांत, वीरेंद्र, वृजकांत सारथी, दरचूरा से ददुआ साहू, भूरी, संतोषी, दुलोरिन, रेखा, मोतीलाल, कामेश्वरी और प्रीतम कुमार साहू ने भी इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी है।

श्रोताओं, ये था आपकी पसंद कार्यक्रम का अंतिम गीत। आज के सफर में हमने आपको सुनवाया कुछ राखी पर केंद्रित बेशकीमती तराने, जिनकी पसंद हमारे श्रोताओं ने भेजी थी।

और इस अंतिम प्रस्तुति के साथ ही इस कार्यक्रम का आज का ये सुहाना सफर अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त बोल रहे हैं। सुबह के 10:30 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम नए तराने।

नए तरानों के सफर का ये पहला तराना हम आपकी नजर कर रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज में पिप्पा फिल्म से। शैली के लिखे बोल हैं और ए आर रहमान का है संगीत। लीजिए सुनिए।

साथियों पिप्पा फिल्म का गीत अरिजीत सिंह और साथियों की आवाज में अभी आप सुन रहे थे। लीजिए पेश है कार्यक्रम का अगला तराना, जावेद अली और वन ज्योत्सना की आवाज में दे दनादन फिल्म से। आशीष पंडित के लिखे बोल हैं, प्रीतम का है संगीत। लीजिए सुनिए।

0: श्रोताओं, इस गीत को सुनने के पश्चात चलिए जान लेते हैं आज का ट्रैफिक अपडेट।
1: नमस्कार, उमाशंकर पांडे का। लीजिए, प्रतिदिन की तरह प्रस्तुत है कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट साहब बिलासपुर। आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर शहर के साथ ही शहर से बाहर उत्तर में रतनपुर मार्ग तो दक्षिण में रायपुर मार्ग, पूर्व में मस्तूरी तो पश्चिम में तखतपुर मार्ग में इस प्रकार बिलासपुर की चारों दिशाओं की सभी सड़कों में यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, यद्यपि प्रतिदिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, फिर भी हम यदि छोटी छोटी सावधानियों को अपना कर चलें तो सड़क दुर्घटना में बहुत हद तक निजात पा सकते हैं, क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी गलतियों के कारण प्रायः बड़ी बड़ी सड़क दुर्घटनाएं हुआ करती हैं। सबसे पहले तो अपने वाहन की गति में संयम रखें, क्योंकि प्रायः सभी सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण वाहनों का तेज रफ्तार होना पाया गया है। इसी प्रकार आप किसी वाहन से कहीं जा रहे हैं, इसी बीच दाहिने या बाएं आपको मुड़ना है तो मुड़ने से पहले हाथ से या इंडिकेटर लाइट से संकेत जरूर देवें। दिन के समय धूप में इंडिकेटर लाइट ठीक से दिखाई नहीं देती है, इसलिए दिन में हाथ से ही मुड़ने का संकेत देवें, तभी अपना वाहन मोड़ें। दोस्तों, जब आप कार जैसे वाहन में बैठकर कहीं जा रहे हैं, कहीं रुकना पड़े तो हमेशा अपने बाएं तरफ का ही दरवाजा खोलकर उतरना चढ़ना करें, दाहिने तरफ का नहीं। कार जैसे वाहन में सफर करते समय विशेषकर युवा वर्ग बड़ी तेज आवाज में म्यूजिक सिस्टम चलाकर मस्ती करते हुए चलते हैं, इससे पीछे से आ रहे वाहन का आभास इसके चालक को नहीं हो पाता और ओवरटेक करते समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। अतः ऐसी मस्ती ना करें, ये घातक हो सकती है। इतना ही नहीं, कुछ चालक वाहन चलाते हुए वीडियो देखते हुए चलते हैं, इससे बड़ी लापरवाही और क्या हो सकती है। जब सड़कों में तमाम प्रकार के वाहनों की कतार लगी है, वो अभी खूनी रफ्तार में। अतः आप सभी से अनुरोध है, इन सावधानियों को हमेशा अपनाकर चलें, ताकि आपकी यात्रा शुभ हो।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे बिलासपुर शहर का ट्रैफिक अपडेट।

श्रोताओं, अरिजीत सिंह और अरमान खान की आवाज़ में धुरंधर फिल्म का गीत अभी आपने सुना। इरशाद कामिल की रचना थी और शाश्वत सचदेव का संगीत था। लीजिए पेश है अब लक्ष्य कपूर की आवाज़ में बबाल फिल्म का गीत। कौसर मुनीर की रचना और संगीत आकाश द्वीप का है।

0: प्यार में बिलीव करती हूँ, बस प्यार में बनने में बिलीव नहीं करती. जो जब तक है तब तक है.
1: कॉकटेल टू, लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत, नए तरानों के सफर का ये गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं.

श्रोताओं, कॉकटेल टू जी हाँ, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे प्रीतम महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव और रुआ के की आवाज में। रचना महमूद और अमिताभ भट्टाचार्य की थी और इसे संगीत से संवारा था प्रीतम ने। लीजिए अब पेश है मेरी क्रिसमस फिल्म का ये गीत अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाज में। बोल लिखे हैं वरुण ग्रोवर ने और संगीत से संवारा इस गीत को प्रीतम ने।

अभी आप सुन रहे थे मेरी क्रिसमस फिल्म का ये गीत, और इस अंतिम तराने के साथ ही नए तराने का ये सफ़र आज यहीं समाप्त होता है। श्रोताओं, ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, सुबह के 11 बजे हैं। लीजिए पेश है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं श्रोताओं आज का सुविचार। इसे भेजने वाले हैं मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला जी। लिखते हैं,
2: सत्य की राह भले कठिन हो लेकिन मंजिल हमेशा उजाले तक पहुंचाती है। झूठ कुछ पल चमक सकता है पर सत्य सदा सम्मान और विश्वास दिलाता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके द्वारा भेजे गए संदेश। कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत और गुरकीरत राहुल के साथ गुरशब्द सिंह राहुल जी का।
2: तहसील ठियोग जिला शिमला से सूरज चौहान जी
1: और मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतन माला जी ने लिखा है, आज उमंग कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के जीवन, संघर्ष और राष्ट्रभक्ति से जुड़ी अत्यंत रोचक, प्रेरणादायक एवं ज्ञानवर्धक जानकारी सुनने का अवसर मिला।
2: ये भी जानिए, मैं ये जानकर गर्व हुआ कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जैसे ओजस्वी पुकार और जय हिंद जैसे अमर राष्ट्रनाद को जन जन तक पहुंचाने में नेताजी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
1: उनका अदम्य साहस, अटूट देश प्रेम और बलिदान आज भी प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए अजीत जी और विमलेश जी और कार्यक्रम की पूरी टीम का हार्दिक धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: अगला संदेश हमें मिला है भाटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का। लिखा है, आपकी संपूर्ण टीम को बहुमूल्य जानकारी प्रदान करने वाले कार्यक्रम के निर्माण हेतु हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के देश सेवा सर्वोपरि के सिद्धांत को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से श्रेष्ठ साबित करने वाला प्रेरक प्रसंग सुनकर मन गदगद होकर उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। आपको हार्दिक आभार और धन्यवाद।
2: आपको भी हार्दिक आभार संदेश भेजने के लिए। ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। जैसा हर बार हम निवेदन करते हैं इस बार भी करेंगे कि जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं इस सप्ताह पिछले दो दिनों में हमने बात की भारत के दो अनोखे गांवों की। आज एक बार फिर से हम लेकर आए हैं एक और रोचक गांव की जानकारी। तो विमलेश जी आज अपनी ज्ञान यात्रा में हम कहाँ चल रहे हैं?
2: अजीत जी चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं भारत के उत्तर पूर्वी राज्य की ओर और चलते हैं एक गांव में जहां मानो बारिश रुकना ही भूल गई हो।
1: क्या बात है, जहां मानो बारिश रुकना ही भूल गई हो। अच्छा ऐसा भी कोई गांव है? कोई मजाक कर रही हैं आप?
2: नहीं नहीं अजीत जी बिल्कुल सच। ये वो जगह है जहाँ के छाते भी कहते हैं वर्षा रानी कभी तो रुको।
1: क्या बात है, वर्षा रानी कभी तो रुको।
2: जी चलिए श्रोताओं की ओर से एक प्रश्न पूछते हूँ, बताइए ये कौन सी जगह है?
1: अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर की वर्षा भी रुकना भूल जाती है तो मुझे याद आ गया, वो जगह है मौसिन राम, ये मेघालय राज्य में है।
2: बिल्कुल सही जवाब। अच्छा तो जरा श्रोताओं को ये तो बता दें कि कितनी बारिश होती है वहाँ?
1: विमलेश जी यदि यूं ही बता दूं ना कि वहाँ की औसत सालाना बारिश कितनी होती है तो जानकारी में वो मजा नहीं आएगा
2: जी।
1: तो पहले मैं बताता हूँ कि भारत के कुछ और शहरों में बारिश कितनी होती है
2: जी।
1: जैसे दिल्ली की औसत वार्षिक वर्षा लगभग 650 मिलीलीटर,
2: चेन्नई की लगभग 1400 मिलीमीटर और मुंबई की लगभग 2200 मिलीमीटर,
1: और यदि कोलकाता की बात करें तो ये लगभग 1600 मिलीमीटर है। तो अब सुनिए कि मौसिन राम मेघालय की औसत सालाना वर्षा कितनी है
2: जी।
1: तो यहाँ की सालाना औसत वर्षा है 11900 से लेकर 12

0: हजार मिलीमीटर तक,
1: जी
0: यानी यदि इसे मीटर में मापें तो औसत सालाना बारिश लगभग 12 मीटर के आसपास है।
1: 12 मीटर, यानी अगर इतना बारिश का पानी जमा हो जाए तो 4 मंजिला मकान की ऊंचाई के बराबर होगा।
0: जी जी, तो बिमलेश जी, अब हम अनुमान लगा सकते हैं कि चेन्नई, मुंबई और अन्य शहरों की अपेक्षा यहाँ बारिश कितनी होती है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि यहाँ पर 1200 मिलीमीटर की बात हम कर रहे हैं। तो आपने ठीक कहा, 12 मीटर यानी इतना पानी यदि जमा हो जाए तो 4 मंजिला मकान की ऊंचाई के बराबर होगा। हालांकि इतना पानी वहां

0: वहां के लोग सुबह उठकर सबसे पहले क्या करते होंगे, चाय या मौसम का हाल?
1: शायद दोनों ही, लेकिन उनके लिए बारिश कोई खास घटना नहीं है, ये तो उनकी रोज की जिंदगी का हिस्सा है।
0: जी, अब कुछ और मजेदार बातें जानते हैं। अजीत जी, वहाँ अनाज का भंडारण और कपड़ों को सुखाना तो बहुत बड़ी समस्या होगी, वहाँ ये काम कैसे होते हैं?
1: विमलेश जी, बड़ा अच्छा और उपयोगी प्रश्न आपने पूछा। वहाँ कपड़ों को सुखाने के लिए पारंपरिक रूप से टिन या लोहे की पेटियाँ होती
0: जी,
1: जिन्हें आग जलाकर गर्म रखा जाता है। भीगे कपड़े उन्हीं गर्म पेटियों में सूखते रहते हैं।
0: और अनाज का भंडारण वे धान के पुरालों या पुआलों में रखकर करते होंगे, ये उनके पारंपरिक तरीके हैं।
1: जी
0: तो जी जी अब बात करते हैं उनके घरों की। घरों को भी भारी बारिश को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। उस इलाके में बहुत से ऐसे घर मिल जाएंगे जो बांस के खम्भों पर टिके हुए हैं। वहाँ रास्तों पर पानी, फिसलन और कभी कभी भूस्खलन भी बहुत बड़ी चुनौती है। बता दें कि खासी जनजाति का मुख्य भोजन चावल है और जादू यहाँ का पारंपरिक व्यंजन है।
1: इमरेश जी, मन में एक सवाल और आता है कि वहाँ बच्चे स्कूल कैसे जाते होंगे?
0: अजीत जी, ऐसा नहीं है कि वहाँ बारिश के कारण स्कूल बंद रहते हैं। भूस्खलन और तेज तूफानों के समय विशेष सावधानी बरती जाती है, लेकिन वहाँ बच्चे नियमित रूप से स्कूल जाते हैं। दिल्ली और NCER शहरों में स्कूल जाते समय बच्चे सोचते हैं आज बारिश होगी तो क्या होगा, जबकि
1: मौसिन राम में बच्चे सोचते होंगे आज कितनी बारिश होगी। विमलेश जी, इतनी बारिश के बाद वहाँ की प्रकृति कैसी होगी?
0: अद्भुत, चारों तरफ हरियाली, पहाड़, झरने, धुंध और गुफाएं, मानो प्रकृति ने खुद को हरे रंग में रंग दिया हो। एक बात और, वहाँ लगातार होने वाली बारिश के कारण सामान्य पुल बहुत अधिक नहीं टिकते, इसलिए उस क्षेत्र और मेघालय राज्य में पेड़ों की जड़ों से भी पुल बनाए जाते हैं।
1: जी हाँ, इन्हें लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है। यहाँ पेड़ों की जीवित जड़ों को वर्षों तक दिशा देकर मजबूत पुल का रूप दिया जाता है। ये पुल कभी नहीं टूटते।
0: जी,
1: यानी विमलेश जी, सब कुछ सुनकर ऐसा लगता है कि वहाँ के लोग प्रकृति को हराने की कोशिश नहीं करते।
0: जी बिल्कुल सही कहा अजीत जी, वे प्रकृति के साथ जीना सीखते हैं। तो अजीत जी, मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स का ये गांव मौसिन राम हमें क्या सिखाता है?
1: विमलेश जी, ये गांव हमें ये सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, मनुष्य उनके साथ तालमेल बनाकर जीवन को सुंदर बना सकता है।
0: जी अजीत जी, मेरे मन में एक खूबसूरत वाक्य आ रहा है।
1: भला वो क्या?
0: बारिश कितनी भी हो, जीवन में उमंग की धूप बनी रहनी चाहिए।
1: वाह क्या बात है, बारिश कितनी भी हो,
0: जीवन में उमंग की धूप बनी रहनी चाहिए।
1: जी जी ये बात है। तो साथियों, ये थी आज की जानकारी भारत के एक और गांव मौसिन राम के बारे में। ये गांव तो है ही, साथ ही साथ एक बहुत बड़ा क्षेत्र भी। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, मौसिन राम और मेघालय खासी जनजातियों का मुख्य भोजन क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मौसिन राम और मेघालय की खासी जनजातियों का मुख्य भोजन क्या है?
1: श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन को भी लगातार फॉलो कर सकते हैं।
0: और यदि आपको NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना है या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम या ध्वनि पुस्तकों को सुनना है तो कृपया ये दो वेबसाइट के पते नोट कर लीजिए।
1: जी, पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर NCERT बुक्स PDF टाइप करें।
0: और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना है या ऑडियो बुक्स तो YouTube पर जाइए और टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल, विकल्प आपको मनचाही पाठ्य पुस्तकों पर ले जाएंगे।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सबसे पहला हमारा आज का कार्यक्रम है धरती का हरियाला उत्सव।
0: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में मानसून के बारे में विस्तार से बताया गया है और विशेषकर इसके बनने की प्रक्रिया पर चर्चा की गई है।
1: धरती का हरियाला उत्सव।
2: नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। ऋतिक और रश्मि नाना नानी के घर गर्मी की छुट्टियों में गए हुए थे। नाना नानी दोनों ही शिक्षक रह चुके हैं। शाम को ऋतिक और रश्मि चौपाल जरूर जाते थे। बहुत गर्मी पड़ रही थी, सब गर्मी के प्रकोप से परेशान थे। देखते ही देखते चौपाल में चर्चा मानसून की होने लगी। ऋतिक और रश्मि जब घर पहुंचे तो उनके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, मानसून किसे कहते हैं? आइए सुनते हैं कि क्या बातें हो रही हैं ऋतिक, रश्मि और उनके नाना नानी के बीच।
3: नाना जी, नाना जी।
4: अरे ऋतिक,
5: रश्मि।

0: भाई आओ आओ आओ, कैसी रही चौपाल?
1: ठीक रही नाना जी, आज ना किसी ने गीत गाया और ना ही कोई नाटक दिखाया गया। आज तो बस यही बात हो रही थी कि
2: बहुत गर्मी पड़ रही है। कोई कह रहा था कि मानसून अब बस आने ही वाला है।
3: नाना जी,
2: इतना तो मुझे भी पता है कि यह ग्रीष्म ऋतु के बाद आता है, लेकिन आप हमें और कुछ बताइए ना।
1: हाँ हाँ बताइए ना। माँ बताती हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे आप?
0: बेटा मैं भूगोल पढ़ाता था।
2: ये लो, नानी जी भी आ गई।
4: अरे यहाँ क्या बातें हो रही हैं?
0: अरे कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, मैं तो बता रहा था इन्हें कि तुम बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाती हो।
4: हाँ वो तो है।
1: नानी, हम मानसून के बारे में जानना चाहते थे।
4: अच्छा तो ये बात है, तो भाई चलो शुरुआत करते हैं तुम्हारे नाना जी से।
0: अच्छा चलो भाई चलो, मैं शुरू करता हूँ। देखो बच्चों, मानसून के बारे में जानने से पहले ये तो जान लें कि मानसून शब्द आया कहाँ से है।
1: कहाँ से आया है
0: भाई? शाब्दिक रूप से मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से आया है। किस शब्द से?
1: अरबी भाषा के मौसम शब्द से।
0: बहुत अच्छे बहुत अच्छे भाई। मौसम शब्द का अर्थ होता है ऋतु। एक बात और बता दूं कि इस शब्द का प्रयोग पूरी दुनिया में नहीं होता।
2: पूरी दुनिया में नहीं होता तो फिर?
0: ये शब्द हिंद महासागर, अरब सागर, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण एशिया सहित आसपास के क्षेत्रों में मौसमी पवनों के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है।
1: आपने कहा ये मौसमी पवन है, क्या मानसून पवन या हवा है?
0: बहुत सुंदर प्रश्न बेटी, बहुत सुंदर प्रश्न। नहीं बेटी, मानसून सामान्य हवा या पवन नहीं है, ये एक ऋतु है जो विशेष मौसमी हवाओं के कारण आती है, इसीलिए इसे मानसूनी हवा भी कहते हैं। इसी के कारण वर्षा ऋतु आती है।
1: नाना जी, मानसूनी पवन कैसे बनती है?
0: देखो बच्चों, अगर सरल शब्दों में कहें तो जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, एशियाई भूभाग गर्म होने लगता है, वहाँ एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है।
1: अच्छा नाना जी।
0: चूँकि पवन ऊंचे दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर बहती है, इसलिए ये महासागर से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बहती है। ये समुद्री पवन नमी लेकर आती है।
1: अच्छा।
0: जो गर्म भूभाग पर संघनित होती है और फिर उससे भारी वर्षा होती है।
1: अब समझ में आया। नाना जी, मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि भारत में मानसून आने ही वाला है, इसका क्या मतलब हुआ?
0: देखो भाई, यदि भारत की बात करें तो मानसून यानी मानसूनी हवाएं भारत के दक्षिणी हिस्से से प्रवेश करती हैं, कुछ सप्ताहों में उत्तर की तरफ बढ़ती हैं और जुलाई के महीने तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल जाती हैं।
4: और बच्चों, भारत में मानसून सबसे पहले केरल में आता है।
0: हाँ।
4: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है।
1: ओ।
4: हमारे देश की लगभग 60-70% खेती मानसून पर ही निर्भर करती है।
0: बिल्कुल।
4: और हाँ, हमारी भारतीय परंपरा में 6 ऋतुएं मानी जाती हैं, जिन्हें षड ऋतु कहा गया है।
1: अच्छा।
4: वर्षा ऋतु का प्रभाव सभी ऋतुओं पर पड़ता है। अच्छा मानसून यानी अच्छी फसल, और अच्छी फसल यानी
1: अच्छी अर्थव्यवस्था।
4: हाँ।
0: बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। तुम्हें पता है वर्षा का हमारी भारतीय संस्कृति पर भी बहुत गहरा प्रभाव है। ये सिर्फ बारिश का मौसम ही नहीं है, हमारी कला, साहित्य, त्योहारों और संस्कृति का भी आधार है।
2: वो कैसे?
4: वो ऐसे कि महाकवि कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है मेघदूत। कहा जाता है कि इस महाकाव्य में बादलों और वर्षा ऋतु का सबसे सुंदर चित्रण है।
1: ओ।
4: अगर आधुनिक कविताएं कहें तो फिर सुमित्रानंदन पंत,

0: और महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी मानसून यानी वर्षा ऋतु की सुंदरता के बारे में बहुत कुछ और बहुत सुंदर लिखा है।
1: भाई इसे सावन और भादों का नाम भी दिया गया है। और हाँ, यदि संगीत की बात करें तो हमारे राग जैसे मेघ मल्हार, मिया मल्हार, गौड़ मल्हार और राग देश विशेष रूप से वर्षा ऋतु के लिए ही तो रचे गए हैं। समझ गए
2: जी नाना जी। और हमें मानसून के बारे में जानकारी भी मिल गई।
3: हाँ हाँ, पूरी जानकारी मिल गई।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम धरती का हरियाला उत्सव, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम तुलसी गौड़ा जंगल की इंसाइक्लोपीडिया।
5: इस कार्यक्रम में महान पर्यावरण जनजातीय कार्यकर्त्री तुलसी गौड़ा के जीवन और पर्यावरण संरक्षण में उनकी अहम भूमिका के बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है।
6: नंगे पांव, धोती नुमा पारंपरिक कपड़े, आदिवासी गहने पहनी
7: तुलसी गौड़ा, 72-year-old ट्राइबल वुमन फ्रॉम कर्नाटका,
8: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तंको पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित करिछंती।
9: इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट शी इज कॉल्ड इन कर्नाटका तुलसी गौड़ा।
6: जंगलों की इनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली तुलसी गौड़ा
10: को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया है।
11: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। आज राष्ट्रपति भवन के एक भव्य समारोह में श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा सन 2020 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
12: श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण।
11: यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। देश भर में प्रसन्नता की लहर।
13: नवंबर 2020 को भारत सरकार ने श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, जो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है। राष्ट्रपति भवन के रेड कार्पेट पर नंगे पांव चलते हुए श्रीमती तुलसी गौड़ा पद्मश्री सम्मान लेने जब महामहिम राष्ट्रपति के पास पहुंची, तो सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति इस आदिवासी महिला को देखकर सभागार देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा।

0: उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र पर्वतों और सघन जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। पहाड़ों से उछलती कूदती नदियां जब घाटियों और समतल मैदानों से कल कल करती हुई गुजरती हैं, तो एक अनोखा नजारा पेश करती है।
1: इस सुरम में वातावरण को और भी संगीतमय बना देता है पक्षियों का कलरव। इस क्षेत्र में अनेक जनजातियां रहती हैं। उनके जनजातीय संगीत और नृत्य तो मानो संपूर्ण सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। ये जनजातियां मुख्य रूप से खेतीबाड़ी और पशुपालन पर निर्भर हैं। यहाँ के आदिवासी विशेष रूप से नर्सरियों में बागबानी करके औषधीय पौधों को उगाने का कार्य करते हैं।
0: समृद्ध आदिवासी संस्कृति और प्रचुर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच तुलसीगौड़ा का जन्म 1944 में होनाली गांव के हलक्की आदिवासी परिवार में हुआ था। पिता के मृत्यु के बाद उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से नर्सरी में काम करना शुरू किया। निर्धनता के कारण कभी वो स्कूल नहीं जा पाई।
1: बड़ी हो जाने पर तुलसी ने अपनी माँ और बहनों के साथ गांव की ही एक सरकारी नर्सरी में दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करना शुरू किया। पौधों से उनका बहुत लगाव था। तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को

0: देखते हुए उन्हें पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
1: एक बार की बात है, उनके गांव की नर्सरी में वन विभाग द्वारा कुछ पौधे लाए गए। वो औषधीय पौधे थे और बहुत महंगे भी। वन विभाग की योजना थी बड़े पैमाने पर इन औषधीय पौधों की खेती करने की। पौधे रोप दिए गए, लेकिन एक दो दिनों के बाद वो मुरझाने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें उन पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
0: कुछ ही दिनों में उन पौधों में जान सी आ गई और वो खूब हरे भरे होकर पनपने लगे। इस घटना से तुलसी का नाम स्थानीय वन विभाग में फैल गया और सबने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस घटना को याद करते हुए वो बताती हैं।
2: उन दिनों में करीब 20 वर्ष की थी। पौधों के बारे में मेरा अनुभव बहुत नहीं था। मुझे उस नर्सरी में बुलाया गया था। वहां जाकर मैंने देखा कि सब कुछ ठीक था। रोज उन्हें पानी 2 बार दिया जाता था और खाद की भी कोई कमी नहीं थी।
3: अच्छा,
2: अक्सर मैंने देखा था कि कई बार ज्यादा पानी देने से कुछ पौधे मर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पौधों को जरूरत से बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है, क्यों ना पानी की मात्रा कम करके देखा जाए। जब ऐसा किया तो 2 दिनों में पौधों में कुछ अच्छे बदलाव आए। हाँ।
3: ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई तुलसी जी।
2: जी, पौधों के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें कितना पानी दिया जाए
3: और कितना नहीं दिया जाए। हाँ। तुलसी जी, ये तो हुई पानी की बात। क्या आपने उन पौधों के बारे में कुछ और भी अनुभव किया था?
2: हाँ हाँ, मैंने एक और बात पर गौर किया था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि यदि उन्हें साथ साथ रखा जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं।
3: अरे वाह, ये तो बहुत ही सचमुच गौर करने वाली बात है।
2: हाँ, और अगर अलग अलग रखा जाए तो वो उस तरह से नहीं बढ़ पाते। कुछ पौधे तो अकेले लगाए जाने से बढ़ते ही नहीं हैं और फिर धीरे धीरे कमजोर होकर सूख जाते हैं।
3: अच्छा,
2: मुझे लगा कि क्यों ना इन्हें एक दूसरे के आसपास रोप कर देखा जाए। फिर हमने ऐसा ही किया तो पाया कि आश्चर्यजनक रूप से ये पौधे बढ़ने लगे थे। हाँ।
3: अरे, ये तो बड़ी ही अद्भुत बात बताई आपने तुलसी जी। तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे?
2: हाँ, बिल्कुल देना चाहूंगी। मेरा कहना है कि देश को बचाने के लिए वन को बचाना होगा। वन बचाओ, देश बचाओ।
1: उन्होंने पेड़ पौधों और जंगल को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से शामिल कर लिया था। उनके अंदर पेड़ पौधों की सेवा करने का जज्बा आ गया था। एक बार उन्होंने कहा था,
2: मुझे नहीं मालूम कि जंगल के बारे में मैंने इतना ज्ञान कैसे एकत्रित किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं पौधों से, जंगल से बातें कर सकती हूं। मैं जंगल की भाषा बोल सकती हूं।
1: कहते हैं कि वो जहां भी जाती थी वहां के सभी पेड़ पौधों के बारे में भली भांति बता सकती थी। वो विस्तार से चर्चा कर सकती थी कि किस पौधे को कितना पानी देना है, उन्हें खाद किस मात्रा में देना है और बीजों का संग्रह व भंडारण किस तरह से करना चाहिए।
0: श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को जंगल और उसके पौधों के

0: बारे में उनके ज्ञान के कारण पर्यावरणविदों द्वारा जंगल के विश्वकोश और उनकी जनजाति द्वारा वृक्ष देवी और जंगल अम्मा के रूप में जाना जाता है। वो जंगल में हर प्रजाति के पेड़ की माँ या मातृ वृक्ष की पहचान करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती हैं, चाहे वो कहीं भी हो। किसी भी पेड़ का मात्र एक सूखा पत्ता भी उठाकर वो बता सकती हैं कि इसकी माता पेड़ कहाँ है।
1: आइए जानते हैं कि मातृ वृक्ष या माता पेड़ किसे कहते हैं। नाम से ही विदित होता है कि एक बच्चे को पालने में माता की जो भूमिका होती है, वही भूमिका इन पेड़ों की भी होती है। तो आइए सुने कैसे।
2: तुलसी जी, अक्सर माता पेड़ों या मातृ वृक्षों के बारे में बात की जाती है, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि माता पेड़ों या मातृ वृक्षों को आखिर पहचानते कैसे हैं?
3: बड़ा अच्छा सवाल है। माता पेड़ या मातृ वृक्ष अपने आकारों से पहचाने जाते हैं।
2: अच्छा।
3: ये जंगल के सबसे पुराने, बड़े, लंबे और घने पेड़ होते हैं। और हाँ, पुराने होने की वजह से इनकी जड़ें बहुत गहरी और दूर दूर तक फैली होती हैं।
2: अच्छा।
3: इनकी जड़ों से आसपास के बहुत से छोटे और समान वृक्ष भूमि के अंदर जड़ों से जुड़े होते हैं और मातृ वृक्ष से भोजन लेते हैं।
2: अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारियां आपने दी हैं। और अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और बताइए ना मातृ वृक्षों के बारे में।
3: हाँ हाँ, बिल्कुल। देखिए, जड़ें गहरी होने के कारण ये अपनी जड़ों द्वारा आसानी से भूमिगत जल और फास्फोरस जैसे मिट्टी के पोषक तत्वों को खींच लेते हैं और उन पेड़ों को देते हैं जिनकी जड़ें अभी बहुत गहरी नहीं है। ठीक है ना?
2: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी दिलचस्प और उपयोगी जानकारियां दी हैं आज। एक बार फिर से बहुत धन्यवाद।
3: आपका भी बहुत धन्यवाद।
1: तुलसी गौड़ा जी को 300 औषधीय पौधे और 1,00,000 से भी अधिक पेड़ लगाने का गौरव प्राप्त है। कहते हैं कि उनके द्वारा लगाया गया एक भी पेड़ सूखा नहीं है। उनके द्वारा लगाए गए औषधीय पौधों के इस्तेमाल से उस क्षेत्र की जनजातियों का बड़ा कल्याण हुआ है।
0: 78 वर्षीय श्रीमती तुलसी गौड़ा ने 60 वर्षों तक कर्नाटक वानिकी विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं और अब वो अवकाश प्राप्त जीवन बिता रही हैं। लेकिन आज भी उनकी ऊर्जा कम नहीं हुई है। इन दिनों भी वो अपने गांव की नर्सरी और वानिकी विभाग के दफ्तर में बीजों का संग्रह लेकर पैदल चलती हुई दिखाई देती हैं। किसी ने कहा है, महानतम चीजें हमेशा अति साधारण होती हैं, यानी ग्रेटेस्ट थिंग्स आर ऑलवेज सिंपलेस्ट। तुलसी गौड़ा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन।
4: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम तुलसी गौड़ा जंगल की इंसाइक्लोपीडिया। हमें आशा है कि हमारे आज के कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आए होंगे। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम
5: चेतना,
4: जगबंधु
5: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
7: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11:30 हुए हैं। अब से लेकर सुबह के 11:55 तक हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे और ठीक 11:55 पर प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से करेंगे। तो चलिए, इस वक्त फिलहाल जुड़ते हैं विविध भारत

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

बड़ा छल बलिया अरे मारो रसिया देखो पहन लियो जाली मारा कुर्ता ओ खूब सजा खिड़खिड़ के हंसा झट थाम लिया फिर हाथ मेरा ओ घूम घूम ना चल लागा क्या खूब जोश में जागा गिरा लौंग किधर कहीं बाला गिरा मारो अंग अंग मतवारा भया हम भाप गयो मन कांप गयो दोनों नाचत नाचत हाँप गयो झट सीने से फिर लिपटाए लियो और अपने आप में समाय लियो।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं फाल्गुनी पाठक का गाया ये गीत। एल्बम का नाम है मेरी चूनर उड़ उड़ जाए। गीत संगीत ललित सेन का।

मिलिन इंगले का संगीतबद्ध किया ये गीत आपको सुनवाएंगे, आवाज भी मिलिन इंगले की। एल्बम का नाम है ये है प्रेम और शब्द रचना श्याम अनुरागी की।

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
0: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
1: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: अब के सावन इस एल्बम से सुनिए गीत शुभा मुद्गल की आवाज में। प्रसून जोशी ने इसे लिखा है। शांतनु मोइत्रा का संगीत।

0: श्रोताओं, विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी हम रिले कर रहे थे। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 11:55 हुए हैं। प्रादेशिक समाचार अब रायपुर से रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। दिन के 11:55 हुए हैं। अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री ने आज देश भर के अलग अलग स्थानों पर मौजूद 8,00,000 से अधिक युवाओं से किया वर्चुअल संवाद। नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन के कारण फंसे छत्तीसगढ़ के नागरिकों की सहायता के लिए राज्य सरकार ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर। और छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने के संबंध में सुझाव प्राप्त करने आज रायपुर में राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में आज देशभर में खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के अलग अलग स्थानों पर

मौजूद 8 लाख से अधिक युवाओं से अब से कुछ देर पहले वर्चुअल संवाद किया। यह कार्यक्रम देश के प्रत्येक जिले के 2 प्रमुख महाविद्यालयों में आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत युवा प्रतिभागियों को स्थानीय खेल हस्तियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों के साथ सीधे संवाद करने का अवसर मिल रहा है। कार्यक्रम के दौरान 15 मिनट का एक समर्पित युवा संवाद सत्र भी होगा, जिसके माध्यम से युवा अपने विचार, आकांक्षाएं और नीतिगत सुझाव व्यक्त कर सकेंगे। राज्य शासन ने खेल अलंकरणों के लिए चयनित खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और निर्णायकों की सूची जारी कर दी है। पिछले 3 वर्षों के लिए कुल 82 लोगों को पुरस्कार और सम्मान दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ट्रॉफी के लिए 5 दलों के 43 खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों का चयन किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त को खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और निर्णायकों को राज्य अलंकरण प्रदान करेंगे। राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में विभिन्न खेल पुरस्कारों के साथ मुख्यमंत्री ट्रॉफी के लिए चयनित प्रतिभागियों को भी पुरस्कृत किया जाएगा। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई और 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से अधिक लोग लापता है। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और 1 दर्जन जल विद्युत परियोजनाओं को ठप्प कर दिया। भारत ने बाढ़ से जूझ रहे नेपाल की सहायता के लिए 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री तथा आवश्यक दवाइयां भेजी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अचानक आई बाढ़ से नेपाल में हुई तबाही पर वहां के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। इस बीच नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन के कारण फंसे छत्तीसगढ़ के नागरिकों की सहायता के लिए राज्य सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। प्रदेश के नागरिक अथवा उनके परिजन सहायता एवं आवश्यक जानकारी के लिए आपदा प्रबंधन हेल्पलाइन नंबर 1070 और फोन नंबर 0771-222-3471 पर संपर्क कर सकते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार अपने प्रत्येक नागरिक के साथ खड़ी है। फंसे नागरिकों की सुरक्षित वापसी और आवश्यक सहायता के लिए सरकार पूरी तरह तत्परता से कार्य कर रही है। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने शासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की उपस्थिति में आज रायपुर में राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी। इस विषय पर व्यापक विचार विमर्श करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 200 लोगों को आमंत्रित किया गया है। इनमें आयोग, निगम, मंडल, विभिन्न सामाजिक संगठनों, समाज प्रमुखों, विकास प्राधिकरणों के पदाधिकारियों, प्रबुद्ध नागरिक प्रतिनिधि और विशेषज्ञ शामिल हैं। बैठक में समान नागरिक संहिता के विभिन्न प्रावधानों, सामाजिक प्रावधानों और व्यवहारिक पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। रक्षाबंधन पर्व के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल द्वारा दुर्ग रायगढ़ दुर्ग के बीच आज से 29 अगस्त तक रक्षाबंधन पैसेंजर ट्रेन चलाई जाएगी। इस ट्रेन का ठहराव दुर्ग रायगढ़ दुर्ग के सभी मध्यवर्ती स्टेशनों पर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में आज कई जगह पर बारिश का अलर्ट है। कुछ इलाकों में भारी बारिश के कारण गरज चमक और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। बलरामपुर के तेतरडीह में मंगलवार दोपहर कृषि विभाग का बांध टूट गया। पानी खेतों में भरने से धान की फसल को नुकसान पहुंचा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री ने आज देशभर के अलग अलग स्थानों पर मौजूद 8 लाख से अधिक युवाओं से किया वर्चुअल संवाद। नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन के कारण फंसे छत्तीसगढ़ के नागरिकों की सहायता के लिए राज्य सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर और छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने के संबंध में सुझाव प्राप्त करने आज रायपुर में राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं। अब से लेकर शाम के 4 बजे तक हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे और ठीक 4 बजे हम अनुप्रसारित करेंगे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। तो चलिए इस वक्त फिलहाल जुड़ते हैं विविध भारती से।
1: सरकार स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि खेलों से जीवन बदलता है और देश का गौरव बढ़ता है।
2: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है, ये विकसित

0: भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है, खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
1: इस अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में खेल राष्ट्रीय प्राथमिकता और युवा सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के अंतर्गत मेरा युवा भारत ने आयोजित किया। देश भर में इस कार्यक्रम में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हर जिले के दो दो कॉलेजों के युवाओं ने भाग लिया। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और कई पनबिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया। एक रिपोर्ट।
2: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण ग्लेशियर फट जाने से ये आपदा आई। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि नेपाल तिब्बत सीमा पर हिंदी नदी में भूस्खलन और जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़ रसुवा जिले के तिमोरे शहर में भोटे कोशी के रास्ते त्रिशूली नदी में प्रवेश कर गई। इसके बाद बाढ़ ने नुवाकोट, चितवन, गोरखा, तनहू और नवलप्रासी पूर्वी जैसे अन्य जिलों को चपेट में ले लिया और बाढ़ का पानी राजधानी काठमांडू से लगभग 200 किलोमीटर तक फैल गया। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने बताया कि बाढ़ के कारण लापता हजारों लोगों में लगभग 300 भारतीय पर्यटक शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने नेपाल के लिए 37 टन से अधिक मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री, दवाइयां तथा खाद्य पैकेट की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और राहत कार्यों में पूरा सहयोग दे रहा है। भारत ने कल नेपाल के लोगों की सहायता के लिए 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री और आवश्यक दवाइयां भेजी थी। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि भारतीय बचाव दल प्रभावित क्षेत्र में मौजूद हैं और राहत अभियान में सक्रियता से जुटे हैं। विश्व बैंक ने प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण के लिए नेपाल को आपातकालीन वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपए देने की पेशकश की है। वहीं नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल कनाडा की विभिन्न वित्तीय कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने का आग्रह किया। बैठक में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के अवसर बढ़ाने पर चर्चा हुई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज हल्की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 200 अंक गिरकर 77,273 पर और निफ्टी 50 अंक की गिरावट के साथ 24,158 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। स्वीकार कीजिए नेहा आगरकर देसाई का नमस्कार। साथियों, हिंदी सिनेमा को सादगी, संवेदनशीलता और रिश्तों की खूबसूरत कहानियां देने वाले फिल्मकार थे ऋषिकेश मुखर्जी। निर्देशक, लेखक और संपादक के रूप में उन्होंने ऐसी फिल्में रची जो आज भी दिल के बेहद करीब हैं। उनकी फिल्मों के गीत भी उतने ही मधुर और यादगार रहे। आज उनकी पुण्यतिथि पर सुनते हैं उनकी फिल्मों से जुड़े कुछ सदाबहार नगमे। गोलमाल फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में, गुलजार के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।

ये गीत था फिल्म चुपके चुपके से, आवाज लता मंगेशकर की। आनंद बख्शी ने इसे रचा और सचिन देव बर्मन का संगीत। और आइए अब आपको अगला गीत सुनवाते हैं, फिल्म अनाड़ी से लता मंगेशकर की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा है, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
0: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
1: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर
2: सिर्फ विविध भारती पर।
3: आशीर्वाद फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं जिसे लिखा है गुलजार ने, वसंत देसाई का संगीत।

0: मंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: आइए अब आपको सुनवाते हैं अभिमान फिल्म का गीत, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा है और तर्ज बनाई है सचिन देव बर्मन ने।

खूबसूरत। इस फिल्म का गीत अब आपको सुना रहे हैं आशा भोसले और अशोक कुमार की आवाजों में। गुलजार की शब्द रचना है और धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

आइए अब आपको सुनवाते हैं नमक हराम फिल्म का गीत, किशोर कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी की रचना है और संगीत है राहुल देव बर्मन का। साथियों, आज हम आपको सुनवा रहे थे ऋषिकेश मुखर्जी की

फिल्मों की कुछ गीत, उनकी फिल्मों की तरह उनके गीत भी जिंदगी की छोटी-छोटी खुशियों और भावनाओं को खूबसूरती से बयां करते हैं। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।

कार्यक्रम सुरीला सफर सुनने वाले सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। संगीत के इस सुरीले सफर में आप है हमारे हम सफर। तो चलिए एक बार फिर से आपको बता दें कि क्या है आज की इबारत। प्यार मोहब्बत के इशारों को आवारा बादल पागल सौदाई को दुनिया में कौन समझा है। एक लड़की गाती है गुनगुन कि तू नहीं तो ये बहार क्या बहार है। जिसे देखकर परवाने होते हैं कुर्बान, वो आ तो गई पर बड़ी छोटी है मुलाकात और ये बेईमान भौरा देखो कैसे मुस्काए और रोज डाली पर क्या लिख जाए कि प्यार अभी ना हुआ तो कभी नहीं। कोई लड़की रात सपने में मिली थी कि इश्क में बर्बादी का सोग मनाना फिजूल है, तो प्यार की ठंडी आग में जलते बुझते कभी तुम कहो कि मैंने तुम्हें ये दिल दे दिया। सुरीला सफर के हमारे बहुत सारे साथी हम सफर बहुत सारे संदेश मैसेज कमेंट्स पहले ही लिख चुके हैं और लगातार लिख रहे हैं, तो हम पढ़ते हैं कुछ संदेश कुछ संदेशे।

शाम ढलते ही तन्हाई के साए में कोई पुरानी धुन दिल को महका जाती है, जैसे दूर किसी वादिये पुरनूर से पायल की झनकार आ रही हो। जब तक दिलदार का दीदार ना हो, ये रंगीन शाम भी अधूरी सी लगती है। और चाहत के इस सफर में हम आहट पर यही गुमान, मतलब हर आहट पर यही गुमान होता है कि वो आ रही है। इस उम्मीद पर परवाने भी लौ पर अपनी जान निसार कर देते हैं। मुलाकात का पल चाहे कितना भी मुख्तसर हो, उसकी यादें उम्र भर का सरमाया बन जाती है। उस नादान की अदाओं पर फिदा होकर ये दिल बार बार बहक जाता है और इकरारे मोहब्बत का ये सिलसिला कभी थमने का नाम नहीं लेता। तो आइए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ में कार्यक्रम की, जिसमें आवाजें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की। फिल्म का नाम है मधुमती, और आप हमें बता दीजिए कि इस गीत के गीतकार और संगीतकार कौन है।

जवाब तो हमें मिल गया है कि इस गीत को लिखा था शैलेंद्र ने और संगीत था सलील चौधरी का। आवाज की दुनिया के हमारे दोस्त आज हमारी ही तरह इबारत लिखकर भेज रहे हैं, यानी कि क्या बात है भाई। गीतों का ये सुरीला सफर शायराना आशिकाना होता जा रहा है, यानी कि तुम भी चलो हम भी चले और चलती रहे जिंदगी। वैसे ये गीत आज की लिस्ट में नहीं है दोस्तों, अपने विचार अपनी बातें अपने पैगाम अपने संदेश अपने कमेंट्स आपने भेज दिए हैं जो हम तक पहुंच गए हैं और लगातार आप भेज रहे हैं, तो इन सारी बातों को संदेशों को हम इस कार्यक्रम में पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे और सुरीला सफर में आगे बढ़ते जाएंगे। एक मैसेज मिला है कि देखा जाए तो इजहार से शुरू हुआ प्यार का सफर इंतजार की गलियों से गुजरता है, विरह के आंसू से धुलकर ये और गहरा हो जाता है और अंत में मिलन के आनंद से आनंद में डूबकर अमर हो जाता है। यही मोहब्बत का मुकम्मल चक्र है। जुबां से तो कह ना पाए कभी हम, मगर आज आंखों से सब बयां कर बैठे हैं। तुम आओगे कभी ये सोचकर ऐ सनम, सांसें भी सीने में कुछ ठहर सी गई हैं। क्या बात है, क्या बात है भाई। अगला कमेंट है कि यादें भी कितने खूबसूरत होती हैं, बीते हुए लम्हों को फिर से जीने का बहाना देती हैं। कुछ लोग दूर होकर भी दिल के पास रहते हैं, उनकी यादें हर खामोश शाम को खास बना देती हैं। शुरुआत में प्यार मोहब्बत में गुमसुम से एहसास के साथ एक झिझक सी रहती है, कहीं ऐसा ना हो कि प्यार का इजहार नकार दिया जाए, लेकिन आवारा बादल सा दिल बेखबर और नादान भौरे की तरह गली गली मंडराते हुए किसी तरह पागल सौदाई की तरह इजहार कर बैठता है और पुकार बैठता है प्यार को। फिर शुरुआत होती है मुलाकातों की, जहां छोटी छोटी बातें लंबी हो जाती हैं।

दोस्तों, सुरीला सफर में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और फिल्म में जो होती हैं उसमें डबल रोल ही नहीं, जीवन में भी दो मुंह वाले, दो चेहरे वाले लोग भी होते हैं। तो इस बारे में भी अपने विचार भेज दीजिए। आइए सुनते हैं अगला गीत, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में साहिर का लिखा गीत। फिल्म का नाम है हम दोनों, और इस गीत के संगीतकार का नाम बताइए और अभिनेता तैयार होकर कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं वो भी बता दीजिए जरा।

कमेंट्स मिला है कि आज आपका पहला सफर है, पर घबराए ना, हम सब आपके साथ हैं और थोड़ा बहुत कुछ है भी तो हम श्रोता भी समझते हैं कि आज आपका पहला दिन है।

एक श्रोता मित्र हमें लिखती हैं कि आज तो हमारे भाई के घर रक्षाबंधन मनाने जा रही हूँ, तो कार्यक्रम में शामिल होना थोड़ा मुश्किल है, मगर इबारत से लगता है कि आज तो बहुत सुरेले और दिलकश गीत सुनने को मिलेंगे। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।

साथियों, सुरीला सफर का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। गीतकार हैं शकील बदायूनी, संगीतकार हैं नौशाद, फिल्म का नाम है राम और शाम। इस फिल्म में दिलीप कुमार के साथ जो दो नायिकाएं थीं उनके नाम बता दीजिए, लिख भेजिए हमारे फेसबुक पेज पर।

हम दोनों इस फिल्म के गीत के संगीतकार थे जयदेव, और देवानंद सेना में ड्यूटी पर जाने की तैयारी कर रहे थे, ऐसा भी जवाब हमें मिल गया। दोस्तों, आप हमें लगातार जवाब और मैसेज तो भेज रहे हैं और हमसे जुड़ते भी जा रहे हैं, तो अब तक तो आपको ये पता चल गया होगा कि आज के कार्यक्रम में ली गई फिल्मों में एक बात कॉमन है, और वो क्या बात है जरा बता दीजिए। सीता और गीता इस फिल्म का गीत है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, गीतकार है आनंद बख्शी, संगीत है राहुल देव बर्मन का। और ऐसी ही एक और फिल्म थी जिसकी नायिका श्रीदेवी थी, तो उस फिल्म का नाम लिख दीजिए।

एक श्रोता ने लिखा है कि उस फिल्म का नाम जिसमें श्रीदेवी थी उसका नाम है चालबाज। सीता और गीता की रीमेक थी वो फिल्म। एक चेहरा मगर दो किरदार, एक शक है मगर दो अंदाज, एक रिश्ता मगर दो अलग अलग रंग। प्रोग्राम इस तरह का है। अच्छा।

यानी कि आज के कार्यक्रम में ली गई फिल्मों में जो बात कॉमन है वो क्या है वो तो आपने बता दी। तो आइए अब सुनते हैं ये गीत किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार हैं अनजान, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी। फिल्म का नाम है डॉन और इस फिल्म में अमिताभ बच्चन का नाम क्या है, नाम क्या है वो बता दे हमें। और हमें आपसे ये भी पूछना है, एक गीत जो हमने आपको बताया वो आपने अभी तक हमें नहीं बताया कि नदी बहती है झरझर, हवा कहती है सरसर, बात फैली है घर घर घर, गोरिया गाए गुनगुन। ये गीत अभी तक आपने हमें नहीं बताया कि ये किस गीत का अंतरा है।

कार्यक्रम सुरीला सफर। एक साथी मित्र ने हमें लिखा है कि हम अभी राखी की तैयारी में लगे हैं और समय निकालकर ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, क्योंकि कल नहीं सुन पाएंगे, कल हम बाहर जाने वाले हैं। और ये अगला संदेशा है कि जिस फिल्म में डबल रोल होता है वहाँ एक पात्र सीधा और दूसरा जरूरत से ज्यादा चालाक क्यों होता है, सोचने वाली बात है। एक साथी ने लिखा है कि अक्सर मैं अपनी पत्नी से कहता हूँ कि कभी तुम भी तो कहो कि मैंने तुम्हें ये दिल दे दिया, तो मैं तो हमेशा इजहार

करता ही हूँ। हाय रे किस्मत, शादी को इतने साल हो गए पर धर्मपत्नी सिर्फ शर्माती हुई दीवाना कह देती हैं मुझे और गुनगुना देती हैं कि बालम तेरे प्यार की ठंडी आग में जलते बुझते मैं तो हार गई रे। एक मैसेज शिकायत वाला भी मिला है पर प्यार भरा है। पटर पटर बोलती हो बहुत, ऐसा मेरे लिए लिखा है। दोस्तों, अगर आप ये समझ ही गए हैं कि आज के सुरीला सफर में हमने ऐसी फिल्मों के गीतों को चुना है जिसमें नायक और नायिकाएं डबल रोल में थे, तो इसके अलावा भी और कौन सी ऐसी फिल्में हैं जिसमें डबल ट्रिपल रोल किए गए थे, तो आपको याद हो तो उन फिल्मों के नाम लिखकर संदेश हमें भेज दीजिए।

साथियों, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर। सुन क्या रहे हैं आप, तो हमारे हम सफर हैं। ये एक जो मैसेज मिला है हमें, कमेंट्स मिला है कि नदियां बहती है झरझर, ये अंतरा है छुनमुन पायल या छुनमुन छुनमुन फिल्म विरासत के गीत का। और विजय अमी जी के अक्सर फिल्मों में उनका यही नाम होता था, और उन्होंने लिखा है कि ये फिल्म जो थी डॉन, उन्होंने झांसी की नंदनी टॉकीज में देखी थी। एक श्रोता मित्र लिखते हैं कि मुझे फिल्म मौसम की याद आ रही है, जिसमें शर्मिला टैगोर जी ने डबल भूमिका निभाई थी और नायिका और उनकी बेटी के बेटे के रूप में संजीव कुमार अभिनेता थे। और धर्मेंद्र जी ने डबल रोल किया था यकीन इस फिल्म में। तो अब अगला गीत सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति और अमित कुमार साथियों की आवाजों में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म का नाम है चालबाज। और इस फिल्म में श्रीदेवी के साथ जो दो हीरो थे उनके नाम हमें लिख भेजिए। श्रीदेवी के डबल रोल के नाम भी आप बता सकते हैं।

हमारे श्रोता लिखते हैं कि चालबाज फिल्म में श्रीदेवी के साथ हीरो थे रजनीकांत और सनी देओल, और किसी ने अनिल कपूर भी लिखा है जो कि गलत है। और ये अगला कमेंट है कि मेरा साया में साधना का डबल रोल था और कहो ना प्यार है में ऋत्विक रोशन भी डबल रोल में थे। एक श्रोता लिखते हैं कि दो फूल और दिल तेरा दीवाना तथा हमजोली में महमूद, जिगरी दोस्त जैसे को तैसा तथा प्यासा सावन, जितेंद्र, किशोर कुमार बॉम्बे का चोर, अशोक कुमार मेरी सूरत तेरी आंखें और शाहरुख खान डॉन तथा पहेली में डबल रोल में थे। तो साथियों, अब जो अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसमें ये बता दीजिए कि काजोल के साथ में इस फिल्म में विलन कौन थे।

मंगेशकर और कुमार सानू गीतकार थे, आरन बख्शी संगीतकार थे, उत्तम सिंह। फिल्म का नाम था दुश्मन। और एक श्रोता मित्र ने जवाब लिखकर भेजा है कि काजोल के साथ में दुश्मन फिल्म में जो विलन की भूमिका निभाई थी वो आशुतोष राणा थे। बहुत सारे कमेंट्स मिले हैं कि जैसे को तैसा, जिगरी दोस्त, बैराग, संजीव कुमार की नौ रोल वाली फिल्म महान में अमिताभ बच्चन का ट्रिपल रोल था, आंटी नंबर वन, चाची 420 और अंगूर, इज्जत में धर्मेंद्र का डबल रोल, दो कलियां में नीतू सिंह, सावन भादव में नवीन निश्चल, कस्मे वादे में अमिताभ बच्चन और

साथियों, सुरीला सफर के हम सफर बनकर आज आप हमारे साथ चले और अपने विचार, बातें, संदेश आपने हमारे साथ साझा किए, आप सभी को हम देते हैं धन्यवाद। आज की तरह कल भी हमारे साथ तय कीजिए संगीत का ये सुरीला सफर देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: श्रोताओ नमस्कार। आज त्रिवेणी में बातें होंगी मुलाकात पर। मुलाकात केवल दो लोगों का मेलजोल नहीं होता, ये भावनाओं, यादों और अपनापन का एक सुंदर संगम होता है। कभी कभी वर्षों बाद किसी अपने से हुई छोटी सी मुलाकात भी मन में ऐसी खुशियां भर देती है जैसे सूखे हुए आंगन में अचानक फूल खिल उठे हो। हर मुलाकात अपने साथ कुछ पल लेकर आती है, कुछ मुस्काने, कुछ बातें और कुछ यादें। कुछ मुलाकातें जीवन में एक नया अध्याय जोड़ देती हैं, तो कुछ मुलाकातें बीते हुए पलों को फिर से जीवंत कर देती हैं। अपनों से मिलने का आनंद शब्दों में नहीं बल्कि आंखों के चमक और चेहरे की मुस्कान में दिखाई देता है। मुलाकातों का महत्व तब और भी बढ़ जाता है जब रिश्तों में दूरी आ जाती है। एक सच्ची मुलाकात कई शिकायतों को मिटा सकती है और दिलों के बीच की दूरियों को कम कर सकती है। कभी कभी एक छोटी सी मुलाकात किसी के लिए बहुत बड़ी खुशी बन जाती है।
1: छोटी सी

जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर संदेशों और साधनों से जुड़े रहते हैं, लेकिन आमने सामने की मुलाकात का एक एहसास ही अलग होता है। किसी अपने की आवाज, मुस्कान और साथ बैठकर बिताए हुए पल रिश्तों को और भी गहरा बना देते हैं। मुलाकात वो खूबसूरत पल है जहाँ समय कुछ देर के लिए ठहर जाता है, यादें मुस्कुरा उठती हैं और दिल कहता है कुछ रिश्ते दूर रहकर भी पास रहते हैं। ये एक ऐसा क्षण होता है जो कभी कभी बहुत छोटा होता है, लेकिन उसकी यादें जीवन भर हमारे साथ चलती है। किसी अपने से मिलना मन को वैसी ही शांति देता है जैसा लंबे समय बाद थकी हुई आत्मा को सुकून की छांव मिल जाए। मुलाकात का अर्थ केवल सामने बैठकर बातचीत करना नहीं, इसमें अपनापन होता है, भावनाओं की गर्माहट होती है और एक दूसरे की खुशियों और परेशानियों को समझने का अवसर होता है। कई बार वर्षों बाद हुई एक मुलाकात पुराने रिश्ते में नई जान डाल देती है। बचपन के मित्र, बिछड़े हुए रिश्तेदार या पुराने परिचित जब मिलते हैं तो बीते हुए दिनों की यादें फिर से आंखों के सामने जीवंत हो जाती हैं।

कुछ मुलाकातें अचानक होती हैं और जीवन में विशेष स्थान बना लेती है। राह चलते किसी पुराने साथी से मिल जाना, किसी प्रियजन का अचानक घर आ जाना या किसी लंबे इंतजार के बाद अपने से मिलना, ये पल मन में खुशी की नई रोशनी जगा देते हैं। ऐसी मुलाकातें हमें एहसास कराती है कि रिश्तों की असली खूबसूरती समय और दूरी से कम नहीं होती। आज के आधुनिक समय में हम दूर बैठे लोगों से तुरंत बात कर सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं, लेकिन आमने सामने की मुलाकात का महत्व अलग ही है। किसी की आंखों में खुशी देखना, चेहरे के मुस्कान महसूस करना और साथ बैठकर कुछ पल बिताना रिश्तों को और मजबूत बनाता है। शब्दों से अधिक कभी कभी एक मुलाकात बहुत कुछ कह जाती है। मुलाकातें हमें सिखाती है कि रिश्तों को बनाए रखने के लिए समय देना आवश्यक है। जैसे पौधे को पानी की जरूरत होती है, वैसे ही रिश्तों को भी प्रेम और साथ की आवश्यकता होती है। एक छोटी सी मुलाकात भी किसी के जीवन में बड़ी खुशी का कारण बन सकती है। कुछ मुलाकातें जीवन बदल देती है। ऐसी मुलाकातें हमारे विचारों और रास्तों को नई दिशा दे सकती है। मुलाकातें जीवन की किताब के वे सुंदर पन्ने हैं जिसे पढ़कर मन बार बार मुस्कुरा उठता है, क्योंकि सिर्फ मिलते नहीं, वे अपनी मौजूदगी से अपने जीवन में खूबसूरत एहसास छोड़ जाते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को प्रतिबद्ध। नेपाल में बाढ़ से लगभग 160 लोगों की मौत, 300 भारतीय समेत सहित 1000 से ज्यादा लोग लापता। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की दूसरी खेप भेजी। नेपाल बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम तैनात। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए बातचीत की कोई निश्चित समय सीमा नहीं। और कोलंबो में दूसरे तथा अंतिम टेस्ट क्रिकेट में श्रीलंका ने दूसरी पारी में चायकाल तक भारत पर 151 रन की बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में ऐसा खेल ढांचा विकसित किया जा रहा है जिसमें खिलाड़ियों की प्रतिभा को हर स्तर पर सहयोग मिले।
1: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलों से जीवन बदलता है और देश का गौरव बढ़ता है।
1: जब मैं स्पोर्ट्स की बात

0: बात करता हूं तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है, ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है, खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने लाल किले की प्राचीर से 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों में खेल प्रतिभा खोजने के लिए बड़े प्रतिभा खोज अभियान की घोषणा की थी।
0: लाल किले से मैंने 5 साल की उम्र से 15 साल की उम्र के खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए एक बड़े टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है, और इसमें भी हमें केवल ये नहीं देखना है कि किस बच्चे की किस खेल में रुचि है, बल्कि ये भी देखना है कि कौन सा बच्चा किस खेल के लिए फिट है, हमें उस हिसाब से ही उस बच्चे को ट्रेनिंग देनी होगी।
1: इस अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट और संडे ऑन साइकिल जैसी पहलों ने लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया है।
2: भारत का स्पोर्ट्स इकोसिस्टम केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडल्स तक सीमित नहीं है, फिट इंडिया से करोड़ों युवाओं को जोड़ने से लेकर संडे ऑन साइकिल जैसी पहलों तक आपने फिटनेस को लाइफस्टाइल और स्पोर्ट्स को नेशनल मूवमेंट बना दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फेयर अपॉर्चुनिटी को मजबूत करने का प्रयास यह सुनिश्चित करता है कि प्रतिभा को अपना टैलेंट साबित करने का समान मंच मिले।
1: ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के तहत मेरा युवा भारत माय भारत ने आयोजित किया था। देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हर जिले के 2-2 कॉलेजों के युवाओं ने इसमें भाग लिया। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि केंद्र सरकार ने देश में मजबूत खेल व्यवस्था और बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए 36,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। गुजरात में गांधीनगर के पालज स्थित IIT में आयोजित खेलो इंडिया संवाद से अलग मीडिया से बातचीत में डॉ मांडविया ने कहा कि इस राशि का इस्तेमाल खेल अकादमियों की स्थापना, खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और खेल सुविधाओं को मजबूत करने में किया जाए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि भारत को अपनी खेल परंपराओं को एक जीवंत खेल संस्कृति में विकसित करना चाहिए। उन्होंने नई दिल्ली के हिंदू कॉलेज में खेलो इंडिया संवाद में हिस्सा लिया। छात्रों को संबोधित करते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश एक मजबूत खेल तंत्र विकसित करने के लिए लगातार काम कर रहा है।
3: इंटरनेशनल लेवल में हमारा मेडल्स बढ़ रहे हैं। पहले तो हम एक मुश्किल से 2 मेडल मिलते थे, अब तो हम हर कंपटीशन, चाहे वो कॉमनवेल्थ हो, चाहे ओलंपिक्स हो, एशियन गेम्स हो, अब तो मल्टीपल मेडल्स जीतते हैं इंडियन प्लेयर्स। ये तो बहुत फक्र की बात है।
1: कश्मीर के सभी 10 जिलों के हजारों छात्रों, खिलाड़ियों और अन्य लोगों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल माध्यम से आयोजित खेलो इंडिया संवाद में भाग लिया। प्रतिभागियों ने युवा पीढ़ी को खेल अपनाने और खेल में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री के प्रयासों की सराहना की। चंडीगढ़ के 51 शिक्षण संस्थानों के हजारों विद्यार्थियों और राष्ट्रीय खेल सेवा स्वयं सेवकों ने आज खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पठानकोट स्थित आर्य महिला महाविद्यालय की छात्रा शिव्या ने कहा कि प्रधानमंत्री के संदेश हमेशा युवाओं को विकसित भारत के निर्माण के लिए समर्पित रूप से काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज आगामी ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अहमदाबाद के सर्किट हाउस एनेक्सी में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गृहमंत्री गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में 450 करोड़ रुपए की लागत से टी सीरीज टैंकों के ओवरहॉलिंग प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। इस परियोजना से रक्षा उपकरणों के रखरखाव और उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.

0: newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और कई पन बिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया है। एक रिपोर्ट।
1: नेपाल में आई इस भीषण त्रासदी का कारण भूकंप के झटकों से ग्लेशियर फट जाने को माना जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों से लगभग 100 लोगों को बचाया गया है। इस बीच काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। नंबर है +977-985-131-6807 और +977-970-91-07500। विश्व बैंक ने भी प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए नेपाल को आपातकालीन वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपए देने की पेशकश की है। इसके अलावा नेपाल में बाढ़ के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने बताया कि बाढ़ के कारण लापता हजारों लोगों में लगभग 300 भारतीय पर्यटक शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि नेपाल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास जारी हैं। डॉ जयशंकर ने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के विदेश सचिव और काठमांडू और पेचिंग में भारत के राजदूतों के साथ नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर समीक्षा बैठक की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि विदेश मंत्रालय इस संबंध में विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों, पर्यटन संचालकों और परियोजना अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार राहत सहायता प्रदान करने के लिए नेपाल के साथ मिलकर काम कर रही है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारतीय बचाव दल प्रभावित क्षेत्र में मौजूद हैं और राहत अभियान में सक्रियता से जुटे हुए हैं। भारत ने नेपाल के लिए 37 टन से अधिक मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री, दवाइयां तथा खाद्य पैकेट की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और राहत कार्यों में पूरा सहयोग दे रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ ने कहा है कि नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। हालांकि दोनों राज्य सरकारों के समन्वय से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। बल के महानिरीक्षक नरेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया कि दोनों राज्यों में एनडीआरएफ की 20 टीम तैनात की गई है, जिनमें से 9 बिहार में और 11 उत्तर प्रदेश में है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बल की एक टीम तैनात की गई है।
2: यूपी में कुशीनगर एरिया अफेक्ट होता है गोरखपुर के पास, तो एक टीम वहां पर डाइवर्ट कर दी गई थी। एक जो सीडब्ल्यूसी का भी इनपुट था कि उसका इम्पैक्ट वाल्मीकि नगर में बैरेज है गंडक रिवर पे, उसका जो पानी का डिस्चार्ज का फ्लो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। फील्ड में अभी तक फ्लड का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। स्टेट गवर्नमेंट ने अपने रिसोर्सेज एनडीआरएफ की जो रिक्वायर्ड तैनाती है वो कर दी है दोनों राज्यों में, और अभी तक हम इस स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं।
0: इस बीच मौसम विभाग ने शनिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। वहीं शनिवार और रविवार को ओडिशा के कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू कर दी है। मंत्रालय ने बताया कि प्याज को 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि पहली कांदा एक्सप्रेस महाराष्ट्र के नासिक से रवाना हो चुकी है और लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज लेकर आज देर शाम या कल सुबह तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इसके पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार पर अपने सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता जारी न करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि डीए अभी तक जारी नहीं होने के कारण 3 लाख से अधिक राज्य सरकार के कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला

सीतारामन ने कल कनाडा की विभिन्न वित्तीय कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने का आग्रह किया। बैठक में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के अवसर बढ़ाने पर चर्चा हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए वार्ता फिर शुरू करने की कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्हें बातचीत फिर से शुरू करने की कोई जल्दबाजी नहीं है। श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका बड़ी बढ़त हासिल कर रहा है। उन्होंने ईरान की आर्थिक मुश्किलों का भी उल्लेख किया। इस बीच कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी आज ईरान पहुंचेंगे। वे ईरानी अधिकारियों से मुलाकात कर तनाव कम करने और बातचीत के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत मजबूत स्थिति में बना हुआ है। श्रीलंका ने चायकाल तक दूसरी पारी में 155 रन की बढ़त बना ली है। इससे पहले भारत ने श्रीलंका को उनकी पहली पारी में 290 रन पर ऑल आउट करके फॉलो ऑन दिया है। दो मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 143 अंक गिरकर 77,330 जबकि निफ्टी 36 अंक की गिरावट के साथ 24,171 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को पूरी तरह प्रतिबद्ध। नेपाल में बाढ़ से लगभग 160 लोगों की मौत, 300 भारतीय समेत 1,000 से ज्यादा लोग लापता। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की दूसरी खेप भेजी। नेपाल बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए NDRF की टीमें तैनात। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और कोलंबो में दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में श्रीलंका ने दूसरी पारी में चायकाल तक भारत पर 155 रन की बढ़त बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम सदाबहार नखमे। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम का पहला गीत है मुकेश की आवाज में, गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम है अनाड़ी।

होली आई रे। इस फिल्म का गीत सुनिए मुकेश की आवाज में। गीतकार हैं इंदिवर, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मुकेश की आवाज में। गीत रचना है आनंद बख्शी की, संगीत रचना है दान सिंह की, फिल्म का नाम है माई लव।

आनंद बख्शी का लिखा गीत सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। संगीत है राहुल देव बर्मन का। फिल्म का नाम है तीसरा कौन।

0: अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में वो गीत जिसे लिखा था साहिर लुधियानवी ने। संगीतकार थे रोशन, फिल्म का नाम था दिल ही तो है।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं मुकेश की आवाज में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम है आशिक।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आप सुनेंगे मुकेश और वैजयंती माला की आवाजों में। गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है शंकर जयकिशन का, फिल्म का नाम है संगम।

0: सहेली सुनने वाली हमारी सभी सखियों सहेलियों श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का
1: नमस्कार।
0: हेल्दी नमस्कार।
1: तो ठीक है, आपका नमस्कार है तो साथ में मेरा भी, यानी कि आरती श्रीवास्तव का भी सभी सखियों को, सभी सखाओं को और दीपा जी को नमस्कार।
0: आरती, तुम्हें भी हमारा नमस्कार।
1: बिल्कुल,
0: और आप सब, हम सब सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहें, ताकि आगे का जीवन हर दिन खुशियों से बीते, है ना।
1: बिल्कुल,
0: यही चाहत होती है। एक चीज हमारे सभी श्रोताओं और सखियों से पूछना चाहते हैं, हम हमेशा कहते हैं हेल्दी नमस्कार, तो बताइए अपने हेल्थ का, अपनी तबीयत का कौन कौन खूब अच्छे से ध्यान रखना शुरू कर दिए हैं या करते हैं, या कोई थोड़ा सा एक पॉजिटिव अगर बदलाव आया है तो वो भी जरूर बताइएगा।
1: बिल्कुल, और साथ ही हम जो विषय लेके आए उसके बारे में बता देते हैं। आज हम बात करेंगे, आज जो है विश्व झील दिवस है,
0: यानी कि वर्ल्ड लेक डे।
1: हाँ जी, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं और हम चाहेंगे हमारे जो श्रोता हैं वो भी अपने सारे विचार हमारे साथ में साझा करें। और साथ ही हम बात करेंगे कहानी पद्मश्री के अंतर्गत सिंधु ताई सपकाल की।
0: हाँ,
1: बहुत ही प्रेरणादायक व्यक्तित्व है जिनका।
0: बिल्कुल, इतनी ज्यादा उन्होंने परेशानियों को झेला है और बहुत कठिनाइयों से और कष्ट भरा जीवन उनका रहा है, तो एक बहुत अच्छी उनकी प्रेरणादायक कहानी, ताकि हम जो ये छोटी छोटी शिकायत करते हैं ना, तो कहीं उसको हम साइड में रखें कि छोटी छोटी सी बातों में हम नाराज हो जाते हैं या कभी चिढ़ भी जाते हैं, तो देखिए कितनी बड़ी बड़ी कठिनाइयों को भी सामना, उनका सामना करते हुए कैसे एक व्यक्ति, और उसमें भी विशेष तौर पर महिला जब आगे बढ़ती है तो सबका जो सर है ऊपर उठ जाता है।
1: बिल्कुल, और साथ ही हम बात करेंगे बढ़ती उम्र के साथ सुरक्षित भविष्य, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं।
0: जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आजकल जो हम देख रहे हैं कि बच्चे बाहर हैं, माता पिता वहां हैं जहां उन्होंने हमेशा नौकरी की है, या कोई उनका घर है गांव में या कोई होम टाउन है, वहीं रहना पसंद करते हैं। अब बच्चे तो चाहते हैं वो जहां रह रहे हैं वहां पे मम्मी पापा आ जाएं। मम्मी पापा का ये कहना होता है कि नहीं, हमें तो बस भाई जहां रह रहे हैं वहीं अच्छा लग रहा है,
1: बिल्कुल
0: आप लोग बस आते जाते रहिएगा।
1: क्योंकि ना होता भी है ना, जब जो बच्चे हैं वो अपने जो करियर है उसकी वजह से नहीं आना चाहते, और जो माता पिता है वो इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि वो वहां पे हमेशा से रह रहे हैं, वहां पे उनका पूरा सब दोस्त है, सब जो जानने वाले लोग हैं, परिचित हैं, तो अपने अपने कारण है, इस वजह से वो अपनी अपनी जगह पे रहना चाहते हैं।
0: लेकिन ऐसे में कितना अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है, कैसे सुरक्षित भी रहें और सतर्क भी रहें, थोड़ी बातचीत हम उस पे करेंगे।
1: बिल्कुल, हम चाहेंगे हमारे जो सखा हैं, जो सखियां हैं, वो भी अपने विचार हमारे साथ में साझा करें इस विषय के ऊपर।
0: बिल्कुल, क्या कोई ऐसे हैं हम में से, ये सखी सहेली परिवार में से, कि कोई अकेले रह रहे हैं या बच्चे उनके दूर हैं, या वो नहीं जाना चाहते हैं, या उनके बच्चे कहते हैं उनसे बार बार कि आप अब हमारे साथ ही रहिए, ऐसी कोई अगर घटना हो गई है या कोई अनुभव है उनका, तो हमारे साथ अवश्य साझा करें।
1: बिल्कुल, और साथ ही हम बात करेंगे कुछ अच्छी अच्छे टिप्स की जो बारिश में सीलन की दुर्गंध को भगा सके, जो बहुत बड़ी समस्या आजकल।
0: ये बात तो है आरती, कपड़े आप कितने भी सुखा लो लेकिन वो एक अलग से गंध सी आने लग जाती है, और जो हम जहाँ पे रोज की चादर, तकिए वगैरह के लिहाफ ये सब जो रखते हैं ना, उनमें से भी एक अजीब सी अलग सी गंध आने लग जाती है। तो हमें लगता है हम सब तो साफ सफाई से रखे हैं, नैपकिन वगैरह जो हम रखते हैं हमें लगता है धुल धुला के सब कुछ अच्छे से रखा हुआ है, फिर भी ये क्यों एक गंध आ रही है, तो इस पे थोड़ी सी हम बात करेंगे।
1: बिल्कुल, तो ये सारी बातें तो हम करेंगे लेकिन एक गीत सुनने के बाद।
0: चलो भैया, आरती ने कहा है पहले गीत सुनना चाहती है, तो चलिए सखियों की भी फरमाइश होगी जरूर।
1: जी,

0: भाई जब इतने सुरीली शुरुआत हो जाए ना आरती, तो एकदम लगता है एक घंटा हमारा तो बहुत ही सुरीला और सजीला सफर होगा।
1: बिल्कुल, और सुरीली बोलियां ही बोलनी चाहिए, क्योंकि
0: हाँ
1: कड़वी बोलियां बोलने से सिर्फ दुश्मनी होती है।
0: देखिए ऐसा नहीं है हमेशा की दुश्मनी होती। अब माँ बाप तो देखो माता पिता या अपने बड़े भाई बहन होते हैं ना,
1: कड़वाहट नहीं कहते उसे,
0: वो कड़वाहट नहीं कहते, लेकिन कभी कभी जब नहीं मानता ना छोटा, तो फिर उसको कड़वे बोल या कड़े शब्द बोलकर,
1: कड़े शब्द बोलने
0: है ना, बोलने पड़ते हैं जी। लेकिन हम यहाँ पे बात कड़े शब्दों की नहीं कर रहे हैं, हम कड़ी कठिन परिस्थितियों में कैसे जिया जाता है वो जानते हैं, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, सिंधुताई सपकाल की। तो देश ने हमारे समय समय पर ऐसी महान विभूतियों को जन्म दिया है आरती, जिन्होंने अपने संघर्ष और सेवा के से समाज को नई दिशा दी, है ना। ऐसी एक महिला जिनके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, नाम है उनका सिंधुताई सपकाल, जिन्हें प्यार और सम्मान से अनाथों की माई भी कहा जाता है। उनका जीवन संघर्ष, ममता, साहस और मानवता की अद्भुत कहानी है।
1: बिल्कुल, और हम उनकी बात करें तो उनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र के वर्धा जिले के पिंपरी मेघी गांव में, और उनका बचपन बहुत ही कठिन परिस्थितियों में बीता था। आर्थिक अभाव के कारण वो अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर सकी, लेकिन परिस्थितियों ने उनके भीतर सीखने और आगे बढ़ने की इच्छा को कभी भी समाप्त नहीं होने दिया। जीवन ने उन्हें कम उम्र में ही विवाह और पारिवारिक जो जिम्मेदारियां होती है उसके बंधन में उनको बांध दिया था
0: जी। और ये जो उनका वैवाहिक जीवन था ना, वो भी कोई सुगत नहीं था। कठिन परिस्थितियों और पारिवारिक संघर्षों के बीच जब वो गर्भवती हुई, तब अत्यंत पीड़ा और अकेलेपन का वो सामना कर रही थी। उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन इसके बाद उनके जीवन की कठिनाइयां और बढ़ गई थी। उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया था। उस समय उनके पास न तो कोई रहने का ठिकाना था आरती, और न खाने के लिए पर्याप्त भोजन हुआ करता था, और न ही ऐसा कोई व्यक्ति जिस पर वो भरोसा कर सके।
1: बिल्कुल, और अब खुद ही कल्पना करके देख सकते हैं कि एक माँ अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर जीवन की कठिन राह पर अकेली निकल पड़े। कभी रेलवे स्टेशन पर उनका आसरा बना, तो कभी मंदिर या किसी पेड़ की छांव पर। कई बार उन्हें भूखे रहना पड़ा, दूसरों के सामने हाथ फैलाने की स्थिति आई, लेकिन सिंधुताई ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पीड़ा को अपनी शक्ति बना लिया था।
0: जी हाँ, और यही संघर्ष आगे बढ़कर उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य बना। जब उन्होंने अपने जैसे बेसहारा और ऐसे बच्चे जो जरूरतमंद है उन्हें देखा, तो उनके भीतर भी कि जो माँ की ममता होती है वो जाग उठी। उन्होंने सोचा कि जिस तरह उन्हें अपने जीवन में अकेलेपन और असुरक्षा का सामना करना पड़ता है, वैसे किसी बच्चों को इस तरह का सामना न करना पड़े। तो उन्होंने कभी उन्हें अकेला उन्हें ऐसा लगा कि कभी उन्हें अकेला छोड़ा जाना नहीं चाहिए। उन्होंने बेसहारा बच्चों को अपनाना शुरू किया, और वे उनके लिए केवल आश्रय नहीं बनी बल्कि माँ बन गई।
1: बिल्कुल, और धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ती गई। सिंधुताई ने अपने जीवन को उन बच्चों के नाम कर दिया जिन्हें समाज ने सहारे के बिना छोड़ दिया था। वो बच्चों को भोजन देती,

0: की शिक्षा की व्यवस्था करती और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती थी। उनके लिए हर बच्चा उनका अपना बच्चा था।
1: और ये जो सफर था आरती, ये आसान नहीं था, क्योंकि पहले उन्होंने धन अर्जन किया, उसमें से कुछ उन्होंने बचाया, और फिर आगे चल के और कई जो समाज सेवी संगठन है उनसे भी उन्होंने मांगा कि मदद मांगी कि भाई मेरे साथ इतने सारे बच्चे हैं और मैं अकेली हूं, तो मुझे जरूरत है धन की और अलग अलग सुविधाओं की। तो सब लोगों ने आगे बढ़ के उनका ये उनके लिए मदद का हाथ बढ़ाया।
0: बिल्कुल।
1: और उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि माँ होना केवल जन्म से नहीं बल्कि ममता और जिम्मेदारी निभाने से भी होता है।
0: बिल्कुल। और सिंधुताई सपकाल ने हजारों अनाथ और जरूरतमंद बच्चों को मां का प्यार दिया। वो बच्चों को शिक्षा दिलाने के साथ साथ उनके भविष्य को संवारने के लिए लगातार प्रयास करती रहीं। उनके आश्रम में पले बड़े अनेक बच्चे आगे चलकर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और शिक्षक बने, और कुछ ने स्वयं समाज सेवा का रास्ता चुना, जैसे कि उनके साथ में अच्छा हुआ था, वैसे उन्होंने भी सोचा वो भी किसी के साथ में अच्छा करें।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने सेवा को कभी दया का विषय नहीं बनाया। वे बच्चों को कमजोर समझकर उन पर उपकार नहीं करती थी, बल्कि उन्हें आत्मसम्मान और आत्मनिर्भर बनाना चाहती थी। और हमेशा उन्होंने कहा कि जीवन जीने का एक अवसर आप अपने लिए ढूंढिए।
0: बिल्कुल। उनके कार्यों को देश में विदेश में सम्मान मिला। उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें पद्मश्री भी शामिल है, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार उन बच्चों का प्यार था जो उन्हें माई कहकर पुकारते थे।
1: जी, और सिंधुताई सपकाल ने 4 जनवरी 2022 को इस संसार से सदा के लिए विदा ले ली। उनकी लेकिन उनकी ममता और सेवा की कहानी आज भी जीवित है। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि मन में साहस और दूसरे के लिए संवेदना हो, तो एक व्यक्ति भी समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकता
0: बिल्कुल।
1: है।
0: बिल्कुल। और उन्होंने लाकर दिखाया वो परिवर्तन।
1: लाकर दिखाया। और देखिए, ये तो हम आज सिर्फ उनको याद कर रहे हैं, लेकिन जब असल में हुआ होगा तो कितना कठिन रहा होगा वो सारी परिस्थितियों को सामना करना। बच्चे इतने सारे हैं, खाने के लिए भरपूर भोजन नहीं है, या कभी कभी हर रोज का दिन चलाने के लिए उतना धन नहीं है, तो बहुत कठिन होता है जब ऐसे दिन आते हैं। लेकिन माँ की शक्ति कुछ एक अनोखी और अलग ही होती है ना, वो अद्भुत होती है, कुछ अपने बच्चों के लिए तो कर ही जाती है।
0: जी हाँ।
1: लेकिन हम क्या कर सकते हैं?
0: एक गीत सुने।

0: भाई ऐसा तो होता है कोई एक व्यक्ति जीवन में ना जिसको देख के मन का संयम टूट जाता
1: हाँ बिल्कुल,
0: है। कोई सखी भी हो सकती है।
1: हाँ और क्या, ऐसे तो
0: पता है
1: हमारे
0: आरती एक हल्की सी शर्मिली सी मुस्कान दे रही है सारी।
1: जैसे कि दीपा जी को देखकर बिल्कुल, और हम अपने जो श्रोता हैं उन्होंने जो लिखा है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि उन्होंने एक हमारे श्रोता है वो जो लिखते हैं कि सिंधु ताई सपकाल को अनाथों की माँ कहा जाता था, जिन्होंने अपना पूरा जीवन हजारों अनाथ बच्चों के पालन पोषण और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया।
0: जी, और एक और ये संदेश आया है। ये इन्होंने कहा कि पद्मश्री प्राप्त सिंधुताई सपकाल को मैंने पूरा कार्य मैंने उनका सुना तो है, ये देखा भी है। वो बहुत ही मधुर वाणी की महिला और अनाथों के प्रति उनका जो दिल में वात्सल्य भाव था उनका, वो देखते ही बनता था। उनकी बेटी ममता सपकाल मेरी छात्रा रह चुकी हैं, जो अब उनकी माँ का काम आगे बढ़ा रही हैं। और एक और संदेश आया है, ये कहते हैं कि सिंधुताई ने खुद का दर्द भुलाकर उन लावारिस बच्चों को अपना उन जरूरतमंद बच्चों का अपना बना लिया, और उनके लिए अलग अलग जगह से कभी पेट भरने के लिए जुगाड़ उन्हें लगानी पड़ती थी, कभी कहीं से मांगना पड़ता था, तो कभी उनको एक चीज बोलना पड़ती थी कि मेरे बच्चे भूखे हैं। तो उन्होंने अपने जीवन में 1400 से अधिक अनाथ बच्चों को गोद लिया और उनका भविष्य संवारा। उनके द्वारा संचालित संस्था और अनाथालय में बच्चों को शिक्षा, आश्रय और संस्कार दिए जाते। उन्हें महाराष्ट्र की मदर टेरेसा भी कहा जाता है।
1: बिल्कुल, एक और संदेश है हमारा, तो हमारी श्रोता जो कहती हैं कि आज सिंधु आई को आपने याद किया, इसलिए वो धन्यवाद कह रही हैं। और सिंधु आई हमारे वर्धा जिले के पिंपरी मेघी गांव में जन्मी थी और वो अनचाही संतान थी, इसलिए उनका नाम चिंधी रखा था। चिंधी मतलब बिना काम का बारीक सा टूटा हुआ टुकड़ा। आई ने, यानी अगर आपको आई का मतलब नहीं पता वैसे तो

0: पता है आई का मतलब।
1: हम्म।
0: और वो पति ने भी उनको निकाल दिया था, तो जब वो गर्भवती थी, और आई ने अपनी अपनी जच्ची खुद अपने हाथों से की थी, और उस बच्ची का नाम ममता रखा था, जो आज उनकी संस्था जो अनाथ बच्चों के लिए आई ने खोली थी उसे संभालती है। आई ने बहुत संघर्ष किया जीवन में, और जीवन के आखिरी वक्त उन्होंने अपने पति को भी अपने बच्चे की तरह संभाला था। आई महान थी।
1: बिल्कुल सही कहा, और हम उन्हें नमन करते हैं। और उनके जैसा एक हर महिला अपने अंदर एक हिम्मत और की शक्ति बना के रखे,
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि इस तरह से जो उतार चढ़ाव आते हैं अपने जीवन में, हर एक के जीवन में आते हैं, कहीं किसी को किस रूप में, कहीं किसी को किस रूप में, तो उनकी उनका जीवन तो हमें यही सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, डटकर उसका
0: बिल्कुल,
1: सामना
0: हार
1: करें।
0: नहीं मानना चाहिए बस
1: जी
0: कभी।
1: बिल्कुल,
0: एक गीत सुन ले।
1: चलो एक गीत सुन लेते हैं।

0: बड़ा ही सुंदर प्यारा सा गीत है ये वाला, है ना। और अच्छा, आगे की बात बताने से पहले साथियों एक सवाल, सवाल ये कि क्या आप कुछ प्रसिद्ध झीलों के नाम बता सकते हैं, और पर्यटन के लिए आप कहाँ कहाँ कहीं पे घूमने गए थे, कोई प्रसिद्ध हमारे देश की झील। वैसे कुछ संदेश आए हैं जो विदेश में भी प्रसिद्ध झीलों के आसपास घूम कर आए हैं, तो वो भी हम पढ़ेंगे। और अब हम बताते हैं कि आज है वर्ल्ड लेक डे, यानी कि विश्व झील दिवस।
1: और विश्व झील दिवस का उद्देश्य क्या है? तो दीपा, इसका उद्देश्य यह है कि दुनिया भर की झीलों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और झीलों के संरक्षण, संवर्धन और जीर्णोद्धार, साथ ही लगातार प्रबंधन के लिए उनका प्रबंधन चलता रहे होता है। इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उसको लोगों को प्रोत्साहित करना।
0: जी, तो 2024 में संयुक्त राष्ट्र ने झीलों के संरक्षण और लगातार विकास के महत्व पर चर्चा की और विश्व झील दिवस की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए कई चर्चाओं में जोर दिया, और फिर बहुत सारे

0: डिस्कशंस हुए, उसके बाद 27 अगस्त को विश्व झील दिवस के रूप में इसे नामित किया गया।
1: बिल्कुल, ये दिवस झीलों की कई भूमिकाओं को मान्यता देता है जिनमें मनोरंजन और आर्थिक उपयोग से लेकर जलवायु विनियमन तक शामिल हैं। और साथ ही हमारे लिए ताजे पानी का स्रोत भी है।
0: और जो पेयजल की आपूर्ति करती है ये ताजे पानी का स्रोत, और कृषि और कई तरह के जो उद्योग है उसको सहारा देती हैं। फिर जो जैव विविधता है उसको बनाए रखने में भी झीलें बहुत महत्वपूर्ण काम करती हैं। मछलियों के लिए, वन्य जीवन की बात करें अगर हम, पौधों के लिए आवास प्रदान करती हैं। झीलें बाढ़ के पानी को अवशोषित करती हैं और कार्बन का भंडारण भी करती हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो कई सारी गतिविधियों के लिए भी और मानवीय गतिविधियों के लिए भी महत्वपूर्ण है झील। लाखों लोगों की आजीविका झीलों पर निर्भर है, जैसे मछली पकड़ना, कृषि है उस पर, या पर्यटन से संबंधित जो भी काम होते हैं। झील अतिरिक्त पानी को अवशोषित और संग्रहित कर सकती है, उसके आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ के प्रभावों को कम करने में मदद मिलती है झीलों की वजह से। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि झीलों पर लगातार खतरा बढ़ रहा है। वो किस प्रकार का है कि लगातार बढ़ता प्रदूषण, पानी का अत्यधिक उपयोग, या फिर ठोस अपशिष्ट होते हैं ना जो हम ऐसे डाल देते हैं, थैले वगैरह कचरा उठा के उसमें डाल दिया जाता है, या बढ़ता हुआ तापमान है, या वर्षा के बदलते पैटर्न्स जो आजकल होने लग गए हैं, उसकी वजह से जो झील का इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र, उस पर हमेशा मतलब एक सतत दबाव पड़ता जा रहा है।
1: बिल्कुल, और इसी को लेकर हमारे, जब ये आपने एक प्रश्न पूछा था दीपा कि आप कहाँ गए हैं घूमने, तो एक हमारे जो श्रोता है उन्होंने एक लिखा है, संदेश लिखा है, तो वो कहते हैं कि मैं अभी हाल ही में जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट घूमने गई थी। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट में कई खूबसूरत झीलें हैं जिनमें सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय नाम टीटीसी और श्लस्चुसी है। टीटीसी वो यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध प्राकृतिक झील है जो अपने सुंदर नजारों और बोट राइड के लिए जानी जाती है। हम लोगों ने भी बोट राइड करके वहाँ के नजारों का लुत्फ उठाया, यानी अच्छे तरीके से उन्होंने झील में अच्छे से घूमा है।
0: बिल्कुल, और जो झील के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ये भी देखने में आया है कि झीलों पर लगातार खतरा बढ़ रहा है, वो हमने अभी बात कर ही रहे थे। और ऐसे में ये आवश्यक हो जाता है कि झीलों के पारिस्थितिकी और आर्थिक महत्व के बारे में जागरूकता बढ़े, उनके संरक्षण के लिए एक मिलजुल की कार्रवाई हो जो कि उसका सब लोगों को प्रोत्साहन मिले, ताकि एक अवसर मिल सके कि हम झील के बारे में जहां चर्चाएं हो, जहां पर ये उससे जुड़ी जितनी भी परेशानियां हैं या जो सामने जो कठिनाइयां आ रही हैं, झील का बनावट वैसी ही बने रहे, उसका इकोसिस्टम वैसा ही बना रहे, तो इस पर एक अवसर प्रदान हो सके सभी के लिए।
1: बिल्कुल, और इसी को लेकर एक हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि हर वर्ष 27 अगस्त को विश्व झील दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने झीलों के संरक्षण और उनके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 27 अगस्त को इस दिन के रूप में चुना था। और जो स्रोत हैं, झीलें जो होती हैं वो पृथ्वी पर उपलब्ध सतह के ताजे पानी का लगभग 90% हिस्सा प्रदान करती हैं। ये बाढ़ के पानी को सोखने और कार्बन को संग्रहित करने में मदद करती हैं। ये जलीय जीवों, पौधों और वन्य जीवों को आश्रय देती हैं।
0: जी, और झीलें वैसे देखा जाए तो दो भागों में भी बंटती हैं। एक होते हैं मीठे पानी की झीलें और खारे पानी की झीलें। तो अब अगर हम बात करें कि कौन कौन से जो झील हैं जो कि प्रसिद्ध हैं, तो लेक सुपीरियर है, और ये जो है ये लेक सुपीरियर है, ये क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कहते हैं। और रूस की भी एक मीठे गहरे झील की है जगह, लेक टिटिकाका। फिर उसके अलावा हमारे देश की झीलें हैं।
1: बिल्कुल, जैसे कि डल झील है जम्मू कश्मीर में, वुलर झील है जम्मू कश्मीर में, और पेंगोंग त्सो लद्दाख में है जो, और त्सो मोरिरी लद्दाख में ही है ये भी, और लोकटक झील मणिपुर में, और चिलिका झील उड़ीसा में, और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में। बहुत बहुत सारी झीलें हैं जो बहुत खूबसूरत भी हैं।
0: देखिए, बात बात में हम एक अंतराल लेना तो भूल ही गए, तो चलिए ले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: अंतराल के बाद हम फिर आ चुके कार्यक्रम है सखी सहेली। तो झील के बारे में बातें हो रही थी, एक संदेश आया है आरती, ये कहते हैं कि हमारे शहर अजमेर में पौराणिक और ऐतिहासिक अन्ना सागर लेक है जो कि मुगल काल के जमाने का बना हुआ है, दौलत बाग और बारादरी के किनारे में स्थित है और शाम के समय में क्वींस नेकलेस की तरह नजारा दिखता है जो कि मुंबई के मरीन ड्राइव के जैसा नजारा, जो मुंबई का प्रसिद्ध है ना क्वींस नेकलेस, जब आप मरीन ड्राइव की तरफ जाते हैं तो वहां पर ये नजारा देखने को मिलता है। तो इसी तरीके का नजारा आप अजमेर के इस झील सागर लेक में भी देख सकते हैं।
1: बहुत अच्छी बात है, उन्होंने बताई जाना चाहिए देखने के लिए।
0: बिल्कुल, तो एक और जगह हमारे लिस्ट में जुड़ गई ना कि यहाँ पे भी हमें जाना है।
1: बिल्कुल, और हम बात करने जा रहे हैं
0: कि भाई जब बढ़ती उम्र होती जाती है तो जब असल में जब उम्र छोटी रहती है तो हमें लगता है सब कुछ तो हो जाएगा, सब कर लेंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे उम्र बढ़ती जाती है, बच्चे अपने बड़े हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं बाहर, तब कहीं एहसास होता है कि इतना जल्दी जल्दी ये परिवेश बढ़ता चला जा रहा है, हर दिन से जीवन बदल रहा है, बच्चे काम के सिलसिले में या पढ़ाई के लिए बाहर चले जाते हैं, किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं या किसी दूसरे देश में, और फिर जो माता पिता हैं वो वहीं पीछे रह जाते हैं उस शहर में जहाँ उन्होंने ताउम्र काम किया हो या उनका मूल शहर या गांव वहीं हो।
1: बिल्कुल,
0: अब हो ये जाता है आरती कि बच्चे वापस नहीं आना चाहते और माँ बाप नए शहर नए परिवेश में अपने आप को ढालने में थोड़ा उन्हें दिक्कत आती है, वो कहते हैं भाई हम जहाँ हैं जिधर हैं हम तो वहीं ठीक है, तुम हमसे आ करके मिल जाया करो।
1: बिल्कुल, क्योंकि ना इतनी उम्र जहाँ हमने बिताई होती है ना, तो हम वहां से जाके दूसरी जगह जाना फिर वहां पे एडजस्ट करना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना।
0: बिल्कुल,
1: जब हमने सारा समय अपनी सारी जिंदगी उस जगह पे एक जगह पे बिताई है, तो इसके बारे में तो हम आगे बात करते रहेंगे। गीत सुन ले,
0: चलिए सुनते हैं।

0: बहुत ही
1: भाई
0: सुंदर
1: देखो
0: गीत था ना।
1: बहुत प्यारा। और ये जब बात होती है ना कि क्या किया जाए, बच्चे कहीं और, माँ बाप कहीं और, ऐसे में लगता है कि रुक कर सोच लिया जाए कि जब हमारी उम्र बढ़ेगी तो कैसा होगा जीवन और हमें क्या करना चाहिए। तो
0: बिल्कुल।
1: देखिए उम्र भी कोई अचानक से तो आरती ऐसा नहीं है कि बढ़ती चली जाती है, तो धीरे धीरे चलकर आती है। तो अपने सुरक्षित भविष्य की योजना तभी से हमें बना लेनी चाहिए जब एक व्यक्ति एक्टिव या उसका जो है ना सक्रिय लाइफ हो, तभी वो सोच ले तो बेहतर है।
0: बिल्कुल। और बच्चों का सानिध्य मिले तो जीवन और भी खुशनुमा हो जाता है, लेकिन अगर वो दूर भी हैं तो भी अपना जीवन सम्मान, सुरक्षा और अपनी शर्तों पर जिया जाना चाहिए। और जिंदगी की दूसरी पारी का ये समय किसी का इंतजार करने का नहीं होता, बल्कि खुद के लिए जीने की सुदृढ़ तैयारी करने का होता है।
1: तो भाई क्या क्या तैयारी कर सकते हैं हम, जैसे कि हम स्वावलंबी बनना चाहिए, यानी सेवानिवृत्ति के बाद आमदनी का एक नियमित या सुनिश्चित जरिया होना बहुत जरूरी है, ताकि किसी के भी आगे हाथ ना फैलाना पड़े।
0: बिल्कुल।
1: उम्र बढ़ने के साथ देखियो ना, देखो ना, दवाइयों का, फिर स्वास्थ्य संबंधी या देखभाल करने की अचानक जरूरत, ये बढ़ जाती है। तो इसके लिए अपने कामकाजी जीवन के दौरान ही निवेश के पे थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। पेंशन योजना है या स्वास्थ्य बीमा या कोई ऐसा इमरजेंसी फंड, इस तरह का चीजें थोड़ी सी तैयार करके रखें, ताकि आपका जो दायरा है या जो पीछे आगे आने वाली जो जिंदगी है वो एक मजबूत रूप ले सके।
0: बिल्कुल। और इसके साथ ही सभी वित्तीय जानकारियां जैसे कि बैंक खातों के विवरण और निवेश से जुड़े दस्तावेज भी हमेशा व्यवस्थित रखें, ताकि आपात स्थिति में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।
1: बिल्कुल।
0: और घर
1: अब
0: में बिल्कुल उम्र के
1: जी
0: अनुसार कुछ बदलाव भी कर लेना चाहिए। इसे भी आराम और सुरक्षा दोनों के लिहाज से तैयार करें, जैसे कि फिसलने वाले जो चिकने फर्श होते हैं, कम रोशनी वाले कॉरिडोर या असुरक्षित और ढलान वाली सीढ़ियां बुढ़ापे में बड़े हादसों का कारण बन सकती हैं। इससे सुरक्षा के लिहाज से ये बदलाव स्वयं ही आप 40 से 50 की उम्र तक आप करवा सकते हैं, या आप
1: हाँ, जब
0: अपने
1: आप
0: हिसाब,
1: या
0: जब
1: आप
0: भी
1: अपने
0: आपको मन
1: हिसाब
0: करे।
1: से, जब
0: हाँ,
1: आपको
0: इसमें
1: मन
0: कोई
1: करे, ऐसा
0: ऐसा
1: कोई
0: नहीं है।
1: उम्र की कोई सीमा नहीं है। आपको लगता है कि नहीं, हम थोड़ा सा चेंजेस अपने घर में थोड़ा बदल लेते हैं तो ठीक है, या आपको ऐसा लगता है नहीं हमें नहीं करना है, हमारे बच्चे आएंगे उनके सामने ही हम सब करवाएंगे, तो ये तो अपने अपने ऊपर भी
0: और
1: निर्भर
0: अपने
1: करता
0: घर
1: है।
0: को किस तरह से सजाना ये आपके ऊपर निर्भर करता
1: बिल्कुल
0: है,
1: बिल्कुल।
0: इसमें उम्र का
1: और
0: कोई लेना
1: आपका
0: देना
1: आपके
0: नहीं है।
1: स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, कैसा आपको लगता है कि कोई सपोर्ट की या कोई ऐसे सहारे की जरूरत है, तो उस तरह की कोई चीजें, कोई अटैचमेंट फिटिंग्स वैसे आप घर में लगवा सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और यदि आप बिल्कुल ही अकेले रह रहे हैं तो अपने पड़ोसियों या कोई पुराने आपके मित्र का जो कोई ग्रुप है या कोई स्थानीय समुदाय है, एक ऐसा भरोसेमंद नेटवर्क तैयार करना बहुत जरूरी हो जाता है आरती, जो जरूरत पड़ने पर एक कॉल या आपकी आवाज पर आपकी मदद के लिए तुरंत हाजिर हो सके।
0: बिल्कुल। और संतानों से लगाव तो स्वाभाविक है कि भाई सभी को अपने
1: बिल्कुल।
0: बच्चे प्यारे होते हैं, और उन पर हर जरूरत के लिए पूरी तरह से आश्रित होना ये ठीक बात नहीं है। और इसलिए अपने मन में ये भाव बिल्कुल भी ना आने दें कि ये तो बच्चों का फर्ज है कि आपको उन्हें संभालना है, और ना ही दूसरों को देकर आपके मन में ये भाव आना चाहिए कि मेरे बच्चे मेरी सेवा क्यों नहीं करते।
1: बिल्कुल। अब हम
0: आपको
1: ये बोल के,
0: स्वावलंबी बनना
1: जी बिल्कुल, अब
0: है।
1: हाँ, अभी हम ये शिकायत करने लग जाएं, अरे ये तो देखो बच्चों की ड्यूटी है ना, ये तो करना ही चाहिए, उन्हें फोन तो लगाना ही चाहिए, पूछना तो चाहिए, फला दिन तो उन्हें आना ही चाहिए, क्या वो एक दिन दो दिन के लिए नहीं आ सकते, तो इस तरह की बातें करना आज के जमाने में जहाँ की बच्चों को भी, जहाँ वो रह रहे हैं, हर दिन चुनौतियां उन्हें अपने काम में या जो भी जिस क्षेत्र में भी वो कार्यरत है वहां पे उन्हें देखना होता है, तो माता-पिता को भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा किस स्थिति से गुजर रहा है। उन सब बातों को थोड़ा सा
0: बिल्कुल
1: रख के और घर में आप विचार विमर्श एक कर लीजिए।
0: बिल्कुल। और साथ ही आप अपने आप को इतना ज्यादा बिजी रखिए कि आपको जरूरत ही ना पड़े
1: जरूरत ही ना
0: किसी
1: पड़े।
0: चीज की।
1: जी
0: अपने अपने फ्रेंड सर्कल को आप बढ़ाइए, लोगों से बातचीत करिए, और समाज में घुलिए मिलिए। बहुत चीजें हैं करने वाली, आप जो नहीं कर पाए अभी तक अपने जीवन में उसको करिए, अपने शौक पूरे करिए और घूमिए फिरिए। बहुत सी चीजें आप जो कर सकते हैं।

0: और इसके अलावा बच्चों के साथ भविष्य की उम्मीदें क्या हैं, अपने निवास, प्राथमिकताओं और किसी भी संभावित मेडिकल इमरजेंसी के बारे में हमेशा साफ और स्पष्ट बातचीत आप करें। जब आप अपनी इच्छाओं के बारे में पारदर्शी चर्चा करते हैं तो इससे रिश्तों में किसी भी प्रकार की गलतफहमी या खटास की कोई गुंजाइश नहीं बचती, बल्कि आपसी समझ, परिपक्वता और एक दूसरे के प्रति सम्मान और अधिक गहरा हो जाता है।
1: बिल्कुल। अब देखिए ना, अकेले रहना और अकेलापन महसूस करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं आरती। तो अकेलेपन को मानसिक कमजोरी बिल्कुल ना बनने देना चाहिए। और जैसे आपने कहा ना कि अपनी रुचि के हिसाब से और आपको जो कला पसंद है बस उन्हें अपना लीजिए और जिंदा दिली से हम जिए। और इसी से संबंधित ढेर सारे संदेश भी आए हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ हमारी जिम्मेदारियां भले ही कम हो जाए लेकिन सुरक्षित भविष्य की चिंता हमेशा बनी रहती है। सुरक्षित भविष्य केवल आर्थिक बचत का नाम नहीं है, इसमें अच्छा स्वास्थ्य, जीवन शैली, अच्छे रिश्ते, मानसिक शांति, ये सब भी शामिल है। उम्र बढ़ने के साथ संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद और अपनी पसंद की गतिविधियां, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, उसमें सक्रिय रहना जीवन को बेहतर बनाता है। भविष्य सुरक्षित करने का सही समय कल नहीं आज है।
0: बिल्कुल, बहुत जरूरी है अपने आप को आप उस हिसाब से रखें कि अपने अपनी सारी जरूरतें आप खुद पूरा कर सकें। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि अकेलापन बढ़ती उम्र का सबसे बड़ा दुश्मन है। मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए सामाजिक जुड़ाव जरूरी है। अपने परिवार, बच्चों और पुराने दोस्तों के साथ आप संवाद बनाए रखें। वरिष्ठ नागरिकों के क्लब हैं, जैसे स्वयंसेवी संस्थाएं हैं या धार्मिक या सामाजिक गतिविधियों से आप जुड़ते रहिए ताकि मन आपका व्यस्त रहे। और नई तकनीक है उसको सीखना, जैसे कि मोबाइल में कुछ चीजें होती हैं उनको सीखना, और साथ ही किताबें पढ़ना या कोई अपनी पुरानी आपकी जो हॉबी है, आपका जो शौक है उसको आप पूरा कर सकते हैं। और ये सब चीजें आपको मानसिक रूप से मजबूत रखती हैं।
1: बिल्कुल। और मानसिक एक शांति और खुशी के लिए क्या क्या
0: गीत
1: कर सकते
0: संगीत
1: हैं?

0: तो भाई हम बात कर रहे थे कि बढ़ती उम्र में क्या किया जाए और कैसे अपना ख्याल रखा जाए। एक संदेश आया है कि उम्र बढ़ने के साथ बीमारियां और चिकित्सा खर्च दोनों बढ़ जाते हैं। बिना स्वास्थ्य बीमा के बुढ़ापे में सारी बचत खत्म हो सकती है, इसलिए आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए। कोई अच्छे सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस आप ले सकते हैं। यह सरकारी योजनाएं हैं, बहुत सारी ऐसी हैं जो मुफ्त इलाज की सुविधाएं देती हैं, इनका लाभ उठाना चाहिए। नियमित जाँच करवाते रहिए, जैसे गंभीर बीमारी रूप ना ले ले, कोई गंभीर रूप ना ले ले, और इसके लिए नियमित हेल्थ चेकअप और सक्रिय जीवन शैली को अपनाना जरूरी है।
1: बिल्कुल, और इन्होंने इतनी अच्छी अपने संदेश लिख के भेजे और सबसे अपने विचार भी साझा किए और सुझाव भी दिए, तो उन पे अमल करना चाहिए। साथ ही जाओ अब हम बात कर लें कुछ टिप्स की उपयोगी।
0: बिल्कुल, देखो ये जो दिक्कत आती है इन दिनों में, खासतौर पे बारिश के दिनों में, कि सीलन की एक दुर्गंध सी आने लग जाती है घर में भी, हम कितना भी ख्याल रख लें। तो ऐसे में अगर हमें थोड़ा सा कुछ पता हो कि हम कैसे इससे छुटकारा पा सकते हैं, तो भाई अच्छी ही बात है कि
1: बिल्कुल,
0: घर में घुसते से अगर
1: हाँ
0: किसी को ऐसा लगे कि कुछ अलग सी गंध आ रही है, तो वो सामने वाले का चेहरा ही आपको दिखा देगा कि हाँ भाई कहीं तो कुछ गड़बड़ है। तो
1: बिल्कुल
0: ऐसा ना हो, उसी के उपाय के बारे में बात कर रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो
1: तो एक
0: दूर
1: हम
0: से ये दूर करने के लिए कुछ आसान उपाय हैं, जैसे कमरे की खिड़कियां और दरवाजे को कुछ समय खुला रखें ताकि हवा आती जाती रहे। दीवारों और फर्श को गीला ना रहने दें, नमी तुरंत सुखाएं। कमरे में पंखा चलाएं ताकि हवा का प्रवाह बनता रहे। और अलमारी, जूते या सामान को समय समय पर बाहर निकालकर हवादार जगह पर रखें। सीलन वाली जगह पर बेकिंग सोडा की छोटी कटोरी रख दें, यह गंध सोखने में मदद करता है। और दीवार पर फफूंद अगर आपको दिखाई दे रही है या दुर्गंध लगा बनी है, तो आप एक प्रशिक्षित व्यक्ति की मदद लेकर सफाई उसकी करवा सकते हैं। ये संदेश हमारे एक सखी ने लिख भेजा है।
1: एक हमारे एक श्रोता है जो लिखते हैं कि कितना भी आप पेंट कराएं या कुछ भी कराएं उसमें, तो जो सीलन की महक है वो आती है। तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि मैं सुबह शाम उसे कभी नीम की पत्तियां हैं जैसे, है ना, उसको जलाती हैं, तो इससे जो धुआं होता है ना उससे सीलन की बदबू तो जाती है, साथ ही जो मच्छर वगैरह होते हैं ना वो भी सब
0: वो
1: हट
0: भी चले
1: जाते हैं।
0: जाते हैं
1: तो
0: जी।
1: कपूर भी जला सकते हैं आप, तो ये सब चीजें करने से क्या होता है ना कि सारी नमी जो है वो सूख जाती है, नमी हट जाती है और बदबू भी सारी चली जाती है, और एक अच्छा सा एक अरोमा सा आ जाता है,
0: बिल्कुल सही कहा।
1: बहुत
0: और
1: जरूरी है।
0: एक और संदेश में हमारी सखी बताती हैं कि बारिश में सीलन के बदबू से बचाव के लिए घर की खिड़कियां को खुला रहने दें ताकि नमी अंदर ना आ पाए। और हर जगह को साफ सुथरा रखें, जहां मच्छर वगैरह हैं या पानी है उन सब जगह की सफाई करते रहें। इससे घर में नमी भी नहीं आएगी और बदबू भी घर में जो ये आ जाती है सीलन की वो भी नहीं बनेगी। तो ये इन दिनों में हमें बार बार और बहुत जल्दी जल्दी घर की साफ सफाई करनी पड़ती है, ये बात तो सही है सखियों। कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे अभी 2 दिन पहले ही तो कोई फला कोना हमने साफ किया था और देखो फिर से वहां पर ऐसा लग रहा है कि कुछ फफूंद सी बन गई है,
1: बिल्कुल,
0: या कहीं पे कुछ थोड़ा सा भी अगर कचरा या कहीं पानी इकट्ठा रह गया है कोई टंकी वगैरह में घर की, तो वो भी देखते रहना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से मच्छर बहुत ज्यादा मात्रा में
1: बिल्कुल।
0: फैल जाते हैं घर में।
1: एक और हमारे जो श्रोता है जो लिखते हैं कि इसको सीलन और दुर्गंध को हटाने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि शाम के समय घर में कपूर जला सकते हैं, और इससे बहुत बड़ी एक अच्छी सी खुशबू भी फैलती है, और साथ ही आप लौंग और दालचीनी, और पानी में लौंग और दालचीनी उबालकर उस भाप को घर में फैलने दीजिए, इससे सीलन की बदबू तुरंत गायब हो जाएगी। एक छोटी सी कटोरी में आप नमक रख सकते हैं, है ना, और भर के कोनों में रख दें जहां पर सीलन ज्यादा होती है, तो ये चीजें जो होती है ना वो हवा में मौजूद जो भी अतिरिक्त नमी होती है या बदबू होती है उसको सोख लेते हैं, और पानी में थोड़े से गुलाब जल में आप डाल सक भी कर उसे छिड़क सकते हैं घर में। तो ये सब चीजें आप जो बताए ना, ये सब चीजें करके, खासकर जो कपूर होता है वो तो हमने किया भी हुआ है, कपूर को और लौंग को और दालचीनी को आप एक साथ रख के अगर जलाते हैं या इसका अरोमा सा फैलाते हैं घर में थोड़ा सा, तो बहुत अच्छी खुशबू भी आती है, बहुत देर
0: बिल्कुल,
1: तक बनी रहती है वो
0: बहुत देर
1: खुशबू।
0: तक बनी रहती है और
1: हाँ
0: एक बड़ा सात्विक सा
1: हाँ
0: माहौल घर में हो जाता है ना।
1: बिल्कुल,
0: और एक संदेश में और ये टिप बताई है हमारी सखी ने कि आप बेकिंग सोडा और नींबू, ये आप दोनों को लेकर के थोड़ा सा बेकिंग सोडा, कॉफी पाउडर और नींबू के छिलके एक कटोरी में मिलाकर रख दें, तो इससे भी जो नमी है वो सोख लेती है हवा।

0: से, और नींबू, और जब भी मौसम थोड़ा साफ हो तो खिड़कियां थोड़ी देर के लिए खुली रखें। और जैसे तुमने भी बताया कि कपूर और नारियल का तेल, ये लकड़ी के फर्नीचर पर कपूर और नारियल के तेल का मिश्रण लगाने से फफूंद या बदबू की समस्या दूर हो जाती है। कपड़ों की अगर बात करें तो कपड़ों को धोने के बाद अच्छी तरह निचोड़ लें और पंखे की हवा में पूरी तरह सूखने के बाद ही अलमारी में रखें। और अगर घर के बाहर जगह है तो सबसे पहले तो घर के बाहर ही ऐसी
1: बिल्कुल।
0: जगह है कि जहां शेड वगैरह है और आप उसको रख सकते हैं, उस शेड में सुखा सकते हैं, तो पहले वहां अच्छे से सुखा लीजिए। और अलमारी में तो तभी रखिए जब बिल्कुल अच्छे से आपके कपड़े
1: हाँ,
0: सूख जाएं।
1: नहीं तो उसमें फफूंद आ जाएगी अगर
0: बिल्कुल,
1: थोड़े से भी गीले
0: काले
1: हैं
0: कलर
1: या।
0: के कपड़े होते हैं ना तो कैसे उसमें फफूंद आ
1: हाँ
0: जाती है,
1: बिल्कुल
0: और वो दिखाई देती है असल में।
1: बिल्कुल। तो जो भी गीले कपड़े, उन गीले मत रखिए, उनको बस अच्छे से सुखा लीजिए, उसके बाद ही आप उसको अंदर रखिए। साथ ही आप अगर कहीं पे भी, एक हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि दीवारों में अगर नमी दिखाई दे तो समय रहते उसकी मरम्मत करानी चाहिए। थोड़ी सी सावधानी से बारिश की नमी को घर की परेशानी बनने से रोका जा सकता है, क्योंकि
0: बिल्कुल।
1: जहां से भी टपक रहा है पानी या जहां पे सीलन आ रही, बहुत बहुत ज्यादा पानी गिर रहा है या पानी उसमें उसकी वजह से वहां सीलन आ गई है, तो उस जगह को अच्छे से आप मरम्मत करवा लीजिए ताकि वो पानी वहां पे आना रुक जाएगा, तो सीलन भी की समस्या से भी निजात मिल जाएगी।
0: और एक हमारी सखी ने एसेंशियल ऑयल्स के बारे में बताया है कि आप चाहें तो गुलाब जल में लैवेंडर ऑयल या लेमन ग्रास ऑयल की कुछ बूंदें मिलाकर स्प्रे बॉटल में भरकर इसे घर में स्प्रे कर सकते हैं, अलग अलग जगह छिड़काव कर सकते हैं, तो इससे भी ताजगी बनी रहती है।
1: बिल्कुल।
0: और अब
1: एक
0: अच्छा
1: गीत
0: मूड
1: सुनते
0: बने
1: हैं,
0: रहने के लिए,
1: एक
0: अच्छा
1: गीत
0: मूड बनने
1: सुनते
0: के लिए
1: हैं।
0: गीत,
1: हाँ
0: चलिए।

0: कब आए थे वो कब गए कुछ याद नहीं है।
1: भाई समय कहाँ चला जाता है, कुछ याद नहीं रहता है जब हम अपनी सखियों के साथ बात करते हैं, है ना आरती।
2: लेकिन धीरे धीरे अब समय आ गया है सखियों से विदा लेने का।
1: बिल्कुल, आप सभी को दीपा माहेश्वरी
2: और आरती श्रीवास्तव का
1: नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को प्रतिबद्ध। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि केंद्र सरकार ने देश में मजबूत खेल व्यवस्था और बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए 36,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। नेपाल में भीषण बाढ़ से करीब 160 लोगों की मौत, 133 भारतीयों सहित 750 से अधिक लापता। बिहार और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की दूसरी खेप भेजी। डॉ. जयशंकर ने नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के विदेश सचिव और काठमांडू और बीजिंग में भारत के राजदूतों के साथ नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर समीक्षा बैठक की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कल सन लाइफ फाइनेंशियल और कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड समेत कनाडा की विभिन्न वित्तीय कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों से वार्ता की। कर्नाटक सरकार ने विद्यार्थियों से जुड़े मुद्दों पर विचार करने और शिक्षा सुधारों को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल की उप समिति का गठन किया। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू की। मुंबई का जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह विश्व का सबसे तेजी से विकसित होने वाला कंटेनर बंदरगाह बनकर उभरा है। इस बंदरगाह ने इस वर्ष की पहली छमाही में कंटेनर परिवहन में 13.6% की वृद्धि दर्ज की। अमेरिका ने विश्व स्तर पर वीजा आवेदनों पर अस्थायी रूप से रोक लगाई। सोशल मीडिया कंपनी मेटा अपने प्लेटफॉर्म पर बच्चों को नुकसान पहुंचाने के दावों के निपटारे के लिए $18 अरब तक का भुगतान करेगी। और मौसम विभाग ने शनिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। तो ये थे अब तक के FM रेनबो पर मुख्य समाचार।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

बहुत स्वागत है आप सभी का संदेश टू सोल्जर्स में। ये एक ऐसा खास कार्यक्रम है जो वर्षों से हमारे जो जवान हैं उनकी वीरता, उनके अनुशासन, उनके समर्पण, उनके त्याग की कहानियां आपके बीच लेकर के आता रहता है। उन्हीं की जुबानी आप सुनते हैं उनकी कहानी। लेकिन आज हम आपकी आवाज, आपके दिल की आवाज उन सीधे उन सैनिकों तक पहुंचाएंगे जो इस समय शायद किसी बर्फीली चौकी पर हैं, किसी तपती सीमा पर हों, किसी जहाज पर, समुद्री जहाज पर, या किसी ऑपरेशन के बीच खड़े हैं। आज का संदेश टू सोल्जर्स पूरी तरह समर्पित है आपके संदेश, आपकी दुआओं, आपके गर्व की। और गर्व की बातें जो उनकी होती हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आज संदेश टू सोल्जर्स में। मेरा नाम है शैली भाषांजलि। इसी अभिमान की मैं बात कर रही हूँ।

और हमारे सैनिक अपने परिवार से महीनों महीनों बहुत दूर रहते हैं, लेकिन हमारी ओर से एक छोटा सा संदेश जब पहुंचता है तो शायद उनका हौसला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तभी तो एक सैनिक ने कहा था कि सरहद पर सबसे मुश्किल रातें तब आसान होती हैं जब लगता है ना कि देश

वाले हमें याद कर रहे हैं। ये बात सच है, क्योंकि देशवासियों का जो प्यार है, भरोसा है, उससे भी लड़ते हैं वो। तभी तो सियाचिन में तैनात एक जवान ने लिखा था ये संदेश कि माँ, यहाँ तापमान -30 है, लेकिन जब कोई बच्चा पत्र लिखता है, संदेश भेजता है कि भैया आप हो इसलिए हम सुरक्षित हैं, तो मेरे ना दिल का तापमान गर्म हो जाता है। बस यही भाव, यही रिश्ता हम जोड़ना चाहते हैं। 9868107070 हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है।

वेलकम बैक टू संदेश टू सोल्जर्स शो में आज आपके साथ हूं मैं शैली भाषांजलि। अमूमन हमारे साथ होते हैं देश के जाबाज, जो रूबरू हमारी बातचीत होती है उनसे आप सुनते हैं और गर्व करते हैं, लेकिन आज आपका गर्व पहुंचाने का काम मैं कर रही हूं, सूत्रधार हूं। 9868107070 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जो आपका आपके दिल का संदेश है, जो भी आप महसूस करते हैं जरूर लिखिएगा। युद्ध के मैदान में देश की रक्षा करने वाले हमारे सशस्त्र बल मुश्किल की हर घड़ी में तो साथ खड़ा ही दिखे थे, लेकिन सिर्फ सीमा पर ही नहीं, बाढ़ हो, भूकंप हो, प्राकृतिक आपदा हो, राहत, बचाव, पुनर्वास, इन सब में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। याद दिलाना आवश्यक है, महसूस करना हर पल आवश्यक है। कई बार वे वहां पहुंचते हैं जहां पहुंचना भी एक चुनौती होता है। और मीरा जी लिखती हैं, पता नहीं कहाँ से लेकिन लिखी है, बहुत पते की बात लिखी है कि इंडियन आर्म फोर्सेस, आप सरहदों की रक्षा नहीं करते, हमारे सपनों की भी रक्षा करते हैं।

संदेश टू सोल्जर्स का कार्यक्रम में हम दोहराने की ये कोशिश करते हैं, बात आप तक पहुंचाते हैं कि जब भी कोई क्षेत्र आपदा में घिर जाता है तो सशस्त्र बल केवल राहत सामग्री नहीं पहुंचाते बल्कि लोगों को कठिन समय से निकाल करके भी लाते हैं। फिलहाल का समय बहुत ही कठिन है नेपाल के लिए भीषण बाढ़ की वजह से, लेकिन भारत एक तत्पर, एक सजग, एक देश की तरह अपने सशस्त्र बल की मदद से इनका बचाव भी करते हैं, रेस्क्यू भी करते हैं, कई जिंदगियों के लिए उम्मीद भी बन जाते हैं। और हमारे सशस्त्र बल की सेवा केवल देश की सीमाओं तक सीमित नहीं है, ये हम जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो अभियान है उसमें वे हाथ बढ़ाते हैं और काम करते हैं, क्योंकि वर्दी का अर्थ केवल शक्ति नहीं, अनुशासन, साहस और मानवता सबसे बढ़कर।

बहुत स्वागत है आप सभी का संदेश टू सोल्जर्स में। मेरा नाम है शैली भाषांजलि और आज सोल्जर्स की ही बातें कर सकते हैं, बहुत गर्व के साथ बातें करते हैं। अब जो पूरा देश जो बहनें हैं अपने भाइयों की कलाई पे राखी बांधने की तैयारी में लगी हुई हैं, लेकिन कुछ भाई अपने घरों से बहुत दूर हैं, देश की सीमाओं पर हैं। किसी बहन की राखी आज पहुंचेगी शायद डाक से उनके पास, किसी की वीडियो कॉल पर बंधेगी और किसी बहन की कलाई खाली होगी, भाई की कलाई खाली होगी, क्योंकि उनका भाई देश की रक्षा में तैनात है। लेकिन सच तो यह है कि सैनिक सिर्फ अपनी बहन की रक्षा नहीं करता, पूरे देश की रक्षा करता है। आज संदेश टू सोल्जर्स में देश के हर वीर जवान को एक राखी, एक अनदेखी राखी, वो धागा आपकी कलाई तक पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन देश की हर बहन की दुआ आपके साथ है।

वेलकम बैक टू संदेश टू सोल्जर्स. और ये कार्यक्रम तभी पूरा होता है जब आप जुड़ते हैं अपने मैसेजेस के साथ, अपने भाव के साथ. शांताचारा बाडिगर को कोनूर कोकानूरू कोकानूर एम आई राइट ओके. भाव की तरफ ध्यान दीजिएगा. शब्दों पे क्षमा चाहूंगी, लेकिन दावा नागरे से लिखते हैं कि कार्यक्रम इसलिए वंडरफुल होता है ना शांताचारा जी, बिकॉज सैनिकों के बारे में होता है. आप जुड़े हैं इस शो के साथ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और हमारे साथ शंकर जी जुड़े हुए हैं ककरोला द्वारका से, एंड ही सेंडिंग हिज हार्टिएस्ट लव टू द इंडियन आर्मी फॉर देयर सेल्फलेस सर्विस टुवर्ड्स द नेशन. एंड बहुत सारी प्यारी बातें, डिवोशन, डेडिकेशन की उनको उनके बारे में लिखी है, एक्सप्रेस की है अपनी फीलिंग्स, और सल्यूट करते हैं उनको. यशवंत जी लिखते हैं अपने अपने भाव के साथ, और मंजू भाटिया जी कहती हैं कि हमारी सीमा पर तैनात सभी सैनिकों को राखी की हार्दिक शुभकामनाएं, अपने हर मिशन में आप कामयाब हो, यही हम चाहते हैं. जी हाँ, रक्षाबंधन एक ऐसा धागा जिसमें विश्वास बंधा है, सुरक्षा का वादा है, वो ये करते हैं. इसलिए आज आपकी आवाज़ उन तक पहुंचे, आपकी दुआ, आपका गर्व, आपका सम्मान, आपके भाव, आपके शब्द, इसी उद्देश्य से तो ये शो बना है. मेरा नाम है शैली भाषांजलि. सिर्फ और सिर्फ यही काम है कि आपकी बात को उन तक जोड़ूं और पहुंचाऊं.

आकाशवाणी के इस चैनल में आप जुड़ रहे हैं संदेश टू सोल्जर से। बहुत ही खास दिल के करीब यह कार्यक्रम होता है। हम जानते हैं कि सब लोग अपने अपने हिस्से का काम करते हैं, कोई धूप में तपकर, कोई छांव में रहकर अपने हिस्से की जमीन कमा रहा है, रोटी कमा रहा है, थकता है, मुस्कुराता है, चलता है, फिर लग जाता है। लेकिन स्पेशली उनकी बात करना चाहूंगी, उन माताओं को नमन करना चाहूंगी जिन्होंने देश को अपने बेटे दिए हैं, उन बहनों को सलाम करना चाहूंगी जो भाई के लौटने का इंतजार करती है। स्पेशली जब राखी आती है तो उनके इंतजार में बहुत ही एक तत्परता बन जाती है। उन सैनिकों को प्रणाम करूंगी जिनकी वजह से हम त्योहार मना पाते हैं। और यही बात कहते हैं अनिल जी, अनिल कुमार, गेंडा खाली, चिलिया घोल, टनकपुर जिला, चंपावत, उत्तराखंड से। इन्होंने लिखा है और यही कहा है कि रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं तो दी है, पर ये भी कहा है कि सुरक्षा के साथ हम कोई भी फेस्टिवल मना सकते हैं उनकी वजह से। हैप्पी राखी, हैप्पी हैप्पी लॉट ऑफ विशेज ही इज रिटन। दिस इज श्री रंगम राजेश फ्रॉम तमिलनाडु। आप सुनिए ये गीत, हम फिर आते हैं। मैसेजेस का सिलसिला यहाँ बन चुका है 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। संदेश टू सोल्जर्स में आप अपने संदेश भेज दीजिए। दिस इज द प्रोग्राम विच रीचेज स्ट्रेट टू द सोल्जर्स एंड द हार्ट्स।

चूंकि ये कार्यक्रम प्राइमरली आपके संदेश, आपके दिल की भावना और आवाज से जुड़ा हुआ है, इसीलिए जो सिलसिला मैसेजेस का यहाँ है वो आप तक जरूर पहुंचाती हूँ। यहाँ पर आनंद मोक्षी ने मुंबई से लिखा है, बहुत शुभकामनाएं दी है रक्षाबंधन की। और ये इन्होंने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं, कि इन्होंने, यश सिंध ने लिखी है। इन्होंने लिखा है कि सरहद पर जो खड़े हैं सीना ताने, वही तो इस पावन राखी का असली मान है। जो घर नहीं आ सकते वतन के खातिर, उन भाइयों के लिए दिल से

वो आती है, बिल्कुल आती है दिल से। रेशम का धागा भले सरहद तक ना पहुंचे, पर हर बहन की दुआ आपको महफूज रखती है। बिल्कुल सही बात है, न जाने कैसे आपके दिल तक पहुंच जाती है। और यही बात यश शिंदे जी ने लिखी है। और हमारे पास मैसेज आया विपिन नेहरा का देहरादून से, एंड ही इज ऑल्सो विशिंग यू नो वॉर्म विशेज ही इज सेंडिंग टू ऑल द सोल्जर्स। और ये शो अच्छा, बहुत धन्यवाद अनिल कुमार जी, इसी तरह से प्यार से आप जुड़े रहिए हमारे शो से, संदेश टू सोल्जर्स। ये हमारा शो है, सोल्जर्स की ईशान में हमेशा जी करता है कि कुछ ना कुछ बोले। बहुत सारी बातें उन पर लिखी गई हैं, लेकिन ये बात बहुत प्यारी लगती है मुझे। शायद आपने पढ़ा होगा स्कूल में, जानते होंगे इसके बारे में कि देवों के सिर पे चढ़ जाऊं, भाग्य पे इठलाऊं। ये चाह नहीं है, बस तोड़ लेना वनमाली मुझे, उस पथ पर फेंक देना, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावे वीर अनेक।

और इसी के साथ ही हम रसराज जी, प्रीतम जी और राजकुमार संतोषी जी का जी के मैसेज का बहुत बहुत स्वागत करते हैं संदेश टू सोल्जर्स में। और साथ ही बहुत सारे भाव प्रकट होते हैं ना संदेश टू सोल्जर्स के कार्यक्रम में, जब हम आते हैं सूत्रधार के रूप में, आपकी भावनाओं को सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं और फिर माइक के माध्यम से उन तक पहुंचाते हैं, तो एक अलग भावना में परिपूर्ण हो जाते हैं। वो बर्फीली हवाओं में जो डटे सैनिक हैं, कभी समुद्र की अनदेखी गहराइयों में तिरंगे की शान उसकी रक्षा करने जो जो नेवी के जाबाज हैं, जो आसमान में सरहदों की जो चौकसी कर रहे हैं, एयरफोर्स के जो शूरवीर, जो पायलट्स हैं, ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, इन सभी की अनगिनत कहानियां आप तक आती

रहेंगे संदेश टू सोल्जर्स के माध्यम से। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, जिस तरह से दिल से आप जुड़ते हैं उस तरह से दिल से, प्यार से, मन से, भाव से, आदर से हम अपने सैनिकों के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे।

अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

संदेश टू सोल्जर्स हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित कर रहे थे। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 5 बजे हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। इसके प्रायोजक हैं CF वन विभाग सरगुजा।

0: ಶಿವನೇ ಗಜಿರಾಜ್
1: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये बूंगा, रमकोला, भेलकक्ष, बड़वारी, धुरिया, अरचोका, बरपटिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये टुकुडाण, सिलफिली, कनकनगर, करसी, बूढ़ाडाण, गणेशपुर, गुड़गवा, मदन नगर, सिंघरा, दलदली, भरदा, गौरा, धर्मपुर, सरहरी, केवरा, करंजवार, सेमई, दरहोरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के राजपुर, धमनी, वाड्रफ नगर और रामानुजगंज में हाथियों की कुल संख्या 19 है। ये दुप्पी, चौरा, मरकाडाण, लोधीडाण, आबादी, बिशुनपुर, सिलाजू, पेंडारी, कोटराही, पोखरा, गुरमुटी, चिनिया, महावीरगंज, कनकपुर, रामपुर, बगरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के लुंड्रा, उदयपुर और सीतापुर में हाथियों की कुल संख्या 3 है। ये उदारी, असकला, दोरना, जरहाडी, चकेरी, बासेन, परोगिया, घाटबर्रा, घासीडी, सरगा, बोड़ाझरिया, सिहारजोर, शिवनाथपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 31 है। ये मयूरचुंदी, कुंजारा, पाकरटोली, श्रीटोली, उपका पानी, बंदरचुआ, लोढ़ा आंबा, डोडा पानी, साहीडाण, बजरा, नंदो ओली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारुमा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 109 है। ये आमगांव, गेरसा, उदउदा, पोटिया, आमापाली, नागदरहा, कुड़ेकेला, छाल के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के करतला में हाथियों की कुल संख्या 15 है। ये कांसी पानी, जाम पानी, साजा पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वन मंडल के पसान, जडगा, एतमानगर और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 52 है। ये बंजारी, मड़ई, लोधीबहरा, मतीन, आमाटिकरा, नवापारा, सिटी पखना, फुलसर, कोरबी, झुनकीडी, जुनवानी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 57 है। ये बंगूरसिया, बरकछार, चक्रधरपुर, धुमा बहाल,

0: नागदरहा गया कमतरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानक मार टाइगर रिजर्व के अचानक मार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी देवपुर और बार में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये हरदी गुड़ागढ़ अचानकपुर तेंदुचुआ पकरीद के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये कावारामा नारी पानी कोनारी बुड़ार जिडार पायलीखंड बेसराझर कोदोमाली तौरेंगा कुकरार ताराझर खोलापारा छिंदौला लूठापारा फरसरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ, जिसके प्रायोजक थे CF वन विभाग सरगुजा। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। संध्या के 5:05 हुए हैं। पेश है चित्रपट संगीत।

कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल थे, अनु मलिक का संगीत था और फिल्म का नाम था यादें। आइए सुनते हैं समीर की रचना को नदीम श्रवण की तर्ज पर। आवाजें उदित नारायण और श्रेया घोषाल की है, फिल्म है तुमसा नहीं देखा।

चित्रपट संगीत का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। आइए सुनते हैं अगला गीत, कसूर फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक के युगल स्वर में। समीर के बोल है और नदीम श्रवण का संगीत।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: लीजिए पेश है हिमेश रेशमिया की धुन पर समीर के लिखे बोल, आवाज के की है, फिल्म का नाम है आशिक बनाया आपने।

चित्रपट संगीत में अभी आप सुन रहे थे आशिक बनाया आपने फिल्म का ये गीत के की आवाज़ में एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 5:35 हुए हैं। आइए बढ़ते हैं महिला सभा की ओर।

बहनों रिश्ते वो नहीं जिन्हें दुनिया के सामने निभाया जाए, रिश्ते तो वो हैं जिन्हें दिल से महसूस किया जाए। एक धागा जब कलाई पर बंधता है तो उसमें सिर्फ प्यार नहीं पूरे परिवार की दुआएं बन जाती हैं। नमस्कार सखियों, आप सुन रही हैं महिला सभा और मैं हूं आपकी रेडियो सखी गीता होता। आज बात उस पर्व की जिसमें मिठास है, अपनापन है, बचपन की शरारतें हैं, भाई की नोकझोंक है, बहन की शिकायतें हैं और इन सबसे बढ़कर है स्नेह का अटूट बंधन। जी हाँ बहनों, आज हम बात कर रहे हैं रक्षाबंधन की और रक्षाबंधन को अक्सर हम भाई बहन के प्रेम और रक्षा के संकल्प से जोड़कर देखते हैं। लेकिन जरा ठहर कर सोचिए, क्या यह पर्व केवल एक भाई की कलाई पर बंधी राखी तक सीमित है? नहीं ना, रक्षाबंधन तो पूरे परिवार को जोड़ने वाला पर्व है, जहाँ माँ की ममता, पिता का विश्वास, बहन का स्नेह, भाई का अपनापन और परिवार के हर सदस्य की भावनाएं एक साथ आकर रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर बनाती हैं। बहनों याद कीजिए अपना बचपन। राखी के दिन सुबह सुबह घर में एक अलग ही रौनक हुआ करती थी। बहन राखी की थाली सजाती थी, भाई थोड़ा कर कर बैठता था और राखी बांधते ही नेंग की मांग शुरू हो जाती थी। कभी बहन कहती इस बार नेक बड़ा चाहिए और भाई कहता पहले राखी तो बांधो फिर देखते हैं। इन छोटी छोटी नोकझोंक में ही तो बचपन की सबसे खूबसूरत यादें छिपी होती हैं। लेकिन इस पूरे दृश्य में माँ कहाँ होती हैं? माँ तो पहले से ही रसोई में मिठाई बना रही होती है। कभी भाई को डांटती बहन को परेशान मत करो और अगले ही पल बहन से कहती अरे अपने भाई को थोड़ा और मिठाई दे दो। और पिता शायद जहाँ कुछ नहीं कहते, लेकिन जब बेटी अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो उनके चेहरे की मुस्कान बहुत कुछ कह जाती है, क्योंकि उनके लिए वह राखी सिर्फ एक धागा नहीं होती, वह उनकी बेटी की स्नेह की निशानी और उनकी बेटी की जिम्मेदारी का एहसास होती है। बहनों रक्षाबंधन हमें यह सिखाता है कि परिवार केवल साथ रहने का नाम नहीं है, परिवार वह एक एहसास है जहाँ कोई आपकी चिंता करता है, आपकी खुशी में खुश होता है और आपके दुख में बिना कहे आपके साथ खड़ा रहता है। और आज के समय में जब जीवन की भागदौड़ बढ़ गई, परिवार के सदस्य अलग अलग शहरों में रहने लगे, मुलाकातें कम हो गई, तब रक्षाबंधन हमें फिर से उन रिश्तों की ओर लौटने का अवसर देता है जिन्हें समय की दूरी कभी कमजोर नहीं कर सकती। बहनों कभी राखी डाक से पहुंचती है, कभी कुरियर से और कभी वीडियो कॉल की स्क्रीन पर बहन भाई की कलाई पर राखी बांधने का एहसास कराती हैं। दूरी चाहे कितनी भी हो, सच्चे रिश्तों में दूरी नहीं होती है, क्योंकि कलाई पर बंधा धागा तो कुछ पल का होता है पर दिल से जुड़ा रिश्ता उम्र भर का होता है। राखी की डोर छोटी जरूर होती है मगर इसमें पूरा परिवार समाया होता है। तो आइए इस रक्षाबंधन केवल राखी ना बांधे, एक दूसरे के दिलों पर प्यार की गांठ बांधे, पुरानी शिकायतों को खोलकर छोड़ दे, माता पिता के चेहरे पर मुस्कान लाए, भाई बहन के रिश्तों को फिर से बचपन वाली गर्माहट दे। बहनों क्योंकि जिंदगी में बहुत कुछ दोबारा पाया जा सकता है, लेकिन बचपन, परिवार के साथ बिताए पल और अपनों का स्नेह, इनका कोई दूसरा संस्करण नहीं होता है। तो इस रक्षाबंधन एक वादा कीजिए, रिश्ते सिर्फ त्योहारों पर नहीं हर दिन निभाएं, अपनों से सिर्फ बातें नहीं करेंगे, उन्हें समय भी देंगे और अपने परिवार को सिर्फ अपना घर नहीं अपना सबसे खूबसूरत संसार मानेंगे। और यही है रक्षाबंधन, सिर्फ राखी का पर्व नहीं, सिर्फ भाई बहन का पर्व नहीं, बल्कि पूरे परिवार को स्नेह की एक डोर में बांधने वाला पर्व है रक्षाबंधन।

0: बहनों, अभी आप जिस फिल्म के गीत का आनंद ले रहे थे उस फिल्म का नाम है छोटी बहन और इस गीत को स्वर दिया है लता मंगेशकर ने। अब आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
1: हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
2: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
1: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
3: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
4: कुछ रिश्तों को शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस एक राखी, एक मुस्कान और न्यू दिल्ली स्वीट्स की मिठाइयाँ। जब दीदी अपने हाथों से न्यू दिल्ली स्वीट्स की मिठाई खिलाती है तो लगता है जैसे पूरा बचपन जुबान पर रख दिया हो। इस रक्षाबंधन रिश्तों की सबसे मीठी याद घर ले जाइए।
5: न्यू दिल्ली स्वीट्स, हाउस ऑफ प्योरिटी, लिंक रोड, बिलासपुर।
6: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
7: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: बहनों, भोजली के पात पात में हरियाली मुस्काए, माटी की इस आंचल में छत्तीसगढ़ गुनगुनाए। बहनों की स्नेह से सजे लोकगीत के बोल, भोजली के संग महके अपनी संस्कृति अनमोल। बहनों, आज का हमारा क्रम लोक संस्कृति में आप सुन रहे हैं छत्तीसगढ़ की मिठास और हमारी सदियों पुरानी परंपराओं से जुड़ा एक बेहद ही खूबसूरत लोक पर्व भोजली। तो आइए आज इसी मधुर सुरों के साथ चलते हैं स्टूडियो में और सुनते हैं रश्मि रामेश्वर गुप्ता। बहनों, संस्कृति केवल किताबों में लिखी हुई कोई परिभाषा नहीं है। संस्कृति तो वह एहसास है जो दादी नानी की कहानियों में मिलता है, लोकगीतों की धुन में सुनाई देता है और

0: बहारों की रौनक में दिखाई देता है और गांव की मिट्टी की खुशबू में महसूस होता है। जब खेतों में हरियाली आती है और लोकगीतों की स्वर लहरियां गूंजती हैं, तो छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति तो अपने आप में रंगों, सुरों और भावनाओं की एक खूबसूरत दुनिया है। यहाँ भोजली, हरेली, तीजा, पोला जैसे पर्व केवल त्योहार नहीं बल्कि हमारी सामाजिक एकता, प्रकृति प्रेम और पारिवारिक रिश्तों की जीवंत अभिव्यक्ति है। तो आइए आज इसी सवाल के साथ अपनी जड़ों की ओर लौटते हैं और आज हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमती रश्मि रामेश्वर गुप्ता, जो कि एक साहित्यकार, कवित्री, लोक गायिका, शिक्षिका और साथ ही एक समाज सेविका भी हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने स्टूडियो में आपका स्वागत करते हैं रश्मि रामेश्वर गुप्ता जी। नमस्कार।
1: गीता जी नमस्कार, हमारे सभी श्रोता साथियों को मेरा नमस्कार।
0: रश्मि जी, आज हम बात करने के लिए यहाँ मौजूद है कि लोक संस्कृति में हम भोजली गीत की चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि लोक संस्कृति क्या है, क्या कहना चाहेंगे आप?
1: जी गीता जी, लोक संस्कृति की अगर हम बात करते हैं तो लोक संस्कृति जन साधारण की वह पारंपरिक जीवन पद्धति है जो किसी क्षेत्र विशेष के रीति रिवाजों, लोक गीतों, नृत्यों, कलाओं और विश्वासों से मिलकर बनती है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी बिना किसी औपचारिक शिक्षा के मौखिक रूप से आगे बढ़ती है और समाज की मूल पहचान को दर्शाती है। यह सदियों पुराने नियमों और रीति रिवाजों पर आधारित होती है। हर क्षेत्र जैसे राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति अलग और अनूठी होती है। यह किताबों से नहीं बल्कि बोलचाल, मेल मिलाप और अनुभवों से सीखकर अगली पीढ़ी तक पहुंचती है। लोक संस्कृति में आम इंसान के सुख दुख, प्रेम और प्रकृति से जुड़ाव का सीधा रूप दिखता है।
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है रश्मि जी। और अगर हम छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति की झलक अगर देखें तो हम बस्तर से शुरुआत करें तो वहाँ की जो लोक कला है अपने आप में एक अनूठा है और छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है काफी समृद्ध है।
1: बिल्कुल
0: जी रश्मि जी, मैं ये जानना चाह रही थी कि जो अभी हम बात कर रहे हैं लोक संस्कृति की, उसके अंतर्गत हम आज चर्चा करने का विषय है भोजली गीत पे। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आखिर ये भोजली त्योहार क्या है और इसे कैसे मनाया जाता है, इसके जो परंपराएं हैं उसे मैं जानना चाहूंगी।
1: जी गीता जी, बहुत ही सुंदर आपका प्रश्न है।
0: जी
1: सावन के महीने में हमारी प्रकृति सुंदर धानी चुनर ओढ़कर अपना श्रृंगार कर लेती है। प्रकृति का रूप पवित्र श्रावण मास में देखते ही बनता है। धरती की हरियाली हर जीव के मन को एक नई खुशी और उमंग से भर देती है।
0: क्या बात है,
1: ऐसे सुंदर मौसम में हम मनाते हैं श्रावण मास के अमावस्या को हरेली का त्योहार, जिसे छत्तीसगढ़ का प्रथम त्योहार भी कहा जाता है, जिसमें हम हल और समस्त कृषि औजारों की पूजा करते हैं और गेड़ी का भी आनंद लेते हैं।
0: जी
1: फिर आता है नागपंचमी, जिसमें हम नाग देवता की पूजा करते हैं क्योंकि नागदेव चूहों से हमारे फसलों की रक्षा करते हैं, अन्नागार की सुरक्षा करते हैं। आपको पता होगा कि पहले घर घर में कोठी हुआ करती थी, तो वहाँ जो नागदेव रहते थे उनकी पूजा की जाती थी। तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में कभी अन्न, जन और धन की कमी ना हो। फिर श्रावण मास की पूर्णिमा को हम भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। भादो मास के प्रथम दिन हम मनाते हैं भोजली का त्योहार। वैसे तो इसकी शुरुआत नागपंचमी के दिन से ही हो जाती है। नागपंचमी के दिन अखाड़े में जब मल्ल युद्ध का आयोजन होता है तब उसी भूमि से मिट्टी को लाकर या कुम्हार के घर की मिट्टी को बांस से बने हुए टोकरी में लेकर उसमें गोबर खाद मिलाकर घर की बेटियां धान, गेहूं, उड़द, जौ और तिल को बोकर एक अंधेरी कोठरी जहाँ सूर्य का प्रकाश ना जाए ऐसे जगह में रखकर उसकी पूजा अर्चना करती हैं। भोजली को माँ मानकर उनकी सेवा करती हैं। रोज भोजली में हल्दी का पानी छिड़क कर समूह में बैठकर बाजे गाजे के साथ जो गीत गाती हैं उसे भोजली गीत कहते हैं।
0: क्या बात है, वाकई में रश्मि जी, जब सावन का महीना आता है तो प्रकृति जैसे हरे रंग की चुनरी ओढ़ लेती है और आसमान में जो उमड़ते घुमड़ते काले बादल हैं, रिमझिम की बरसाती फुहारे हैं और मिट्टी से जो उठती सौंधी खुशबू है, वाकई मन को अनोखी शांति से भर देती है सच में। और जैसे अभी आपने भोजली की जो विस्तृत वर्णन किया है कि कैसे त्योहार मनाया जाता है, तो अभी आपने कहा कि हम भोजली जब लगाते हैं तो अखाड़े के मल्ल युद्ध से मिट्टी लाते हैं या फिर कुम्हार के घर से मिट्टी लाके उसे हम बोते हैं, तो क्या ये परंपराएं शुरू से चली आ रही हैं?
1: जी हाँ, ये हमारे बुजुर्गों की ही देन है, हमारी जितनी रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, वो उन्हीं के कारण आगे

0: बढ़ती हैं। और चूंकि इस त्योहार का वैज्ञानिक महत्व भी है, तो हम ऐसी जगह की मिट्टी चुनते हैं जो या तो अखाड़े की है या कुम्हार की है।
1: जी, लेकिन रश्मि जी एक बात और मैं जानना चाह रही थी। अभी आपने
0: हाँ।
1: कहा कि जब जो अन्न को हम लगाते हैं तो उसमें हल्दी का पानी का छिड़काव किया जाता है, इसकी क्या वजह हो सकती है?
0: क्योंकि हम अन्न को ऐसी जगह में रख कर उगा रहे हैं जहाँ सूर्य की रोशनी बिल्कुल नहीं जा रही है,
1: जी
0: तो कीड़े मकोड़े ना उसमें आए, इसलिए हम हल्दी के पानी का हल्का सा
1: जी
0: छिड़काव करते हैं।
1: जी तो रश्मि जी मैं जानना चाह रही थी कि अभी आपने कहा कि हम नाग पंचमी से शुरू करते हैं और रक्षाबंधन में विसर्जन करते हैं, तो उस बीच आप क्या क्या करते हैं, इसका प्रोसेस क्या है, ये मैं जानना चाहूंगी।
0: हम भोजली बोने की शुरुआत नागपंचमी से करते हैं और
1: जी
0: रक्षाबंधन के दूसरे दिन बाजे गाजे के साथ बड़े उमंग और उत्साह से किसी नदी या तालाब में भोजली का विसर्जन किया जाता है। साथ ही विसर्जन के बाद नदी में तैरती हुई कुछ भोजली को एक दूसरे के कान में लगाकर मितान और गिया बदने की प्रथा भी हमारे यहाँ है।
1: क्या बात है। तो रश्मि जी एक तरह से कहा जाए तो जो अब पाश्चात्य जिंदगी में हम फ्रेंडशिप डे मनाते हैं,
0: हाँ
1: तो उसका
0: हाँ
1: ये हमारी लोक संस्कृति में एक प्राचीन से प्रथा ये चली आ रही है कि भोजली के माध्यम से हम मितान बनाएं। तो क्या ऐसा कोई आपकी जो दोस्त है या सखी है जिसके बारे में आप हम श्रोता सखियों को बताना चाहेंगी?
0: जी बिल्कुल गीता जी, जब मैं छोटी थी मायके में थी तो मेरे दादाजी जब भी भोजली विसर्जन होता था तो भोजली घर लेके आया
1: जी
0: करते थे और सबको थोड़ा थोड़ा दिया करते थे। शादी के बाद हमारे श्रीमान जी जरूर भोजली विसर्जन पर्व में देखने जाते हैं और भोजली लेकर आते हैं और मेरे
1: जी
0: हाथों में देते हैं। पहले हम लोग उसको भगवान में चढ़ाते हैं, फिर अपने घर में रख लेते हैं। बड़ी खुशी होती है। और आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो घिया बदने की प्रथा है वो कई प्रकार से है। तो जब आम का मौसम आता है, आम के पेड़ में बौर आते हैं,
1: जी
0: तो बौर से भी घिया बदते हैं।
1: क्या बात है।
0: तो जब मैं प्राइमरी स्कूल में थी तो आम के बौर को एक दूसरे के कान में लगाकर हम लोग गिया बदे थे। तो मेरी जो गिया है वो अभी भी हमसे जुड़ी हुई है और बिल्कुल हम लोग सब सुख दुख एक दूसरे से बांटते हैं और कहते हैं कि मितान या गिया वो जन्म जन्मांतर तक साथ निभाते हैं। तो
1: जी
0: बड़ी खुशी होती है उनसे बात
1: जी
0: करके।
1: वाकई में रश्मि जी आपको देख के हमें भी ऐसा ही लग रहा है कि आप कितने खुश हैं, और कितना अच्छा लगता है जब हम एक सखियां एक हो जाती हैं,
0: बिल्कुल
1: और हमें श्रोता सखियां भी हमारी काफी अच्छी सखियां हैं और पत्रों के माध्यम से अपनी दिल की बात हम तक पहुंचाती हैं, और हम
0: जी
1: भी अपने रेडियो के माध्यम से हमारे दिल की बात उन तक पहुंचाती हैं। रेडियो के माध्यम से हम एक अच्छी सखियां हैं। कि ये तो रही कि भोजली का त्योहार कैसे हम मनाते हैं, कैसे हम सखियों को अपना बनाते हैं, और सच में अगर इसको गहराई से सोचा जाए तो एक रिश्ता बन जाता है। जैसे अभी आपने कहा कि मैं जन्म जन्मांतर तक वो मेरी सखी रहेगी,
0: हाँ
1: मतलब एक बॉन्डिंग बन जाता है, एक
0: हाँ
1: दिल से दिल का रिश्ता, भले ही हम खून का रिश्ता ना हो पर दिल से दिल का जुड़ जाना एक
0: बिल्कुल
1: बहुत बड़ी बात है, वो भी त्योहार के माध्यम से। तो रश्मि जी ये तो रही कि हम भोजली का त्योहार कैसे मनाते हैं और कैसे हम सखियों से जन्म जन्मांतर तक हमारा एक रिश्ता प्यारा सा बन जाता है, पर इसके साथ क्या वैज्ञानिक महत्व है, ये मैं जानना चाहूंगी।
0: जी, हमारे जितने भी रीति रिवाज पर्व और त्योहार हैं गीता जी, सभी के पीछे वैज्ञानिक कारण हैं। और आप भी समझते हैं इस चीज को कि जब हम किसी चीज का वैज्ञानिक कारण महत्व समझ लेते हैं तो हमारी खुशी जो है वो कई गुना बढ़
1: जी
0: जाती है कि हम जो कर रहे हैं उसका इतना बड़ा इतना अच्छा कारण है, तो मन उत्साह से भर जाता है। मैं आपको बताती हूँ कि सावन के महीने में जहाँ पुरुष वर्ग खेती किसानी के काम से फुर्सत पाकर चबूतरे में बैठकर समूह में आला गाते हैं, वहीं घर की महिलाएं घर के भीतर भोजली गीत गाकर हमारे घर की बेटियों को बहुओं को एक संदेश एक बहुत अच्छी सीख देती हैं। तो हमारे जो त्योहार हैं वो सामाजिक समरसता का भी प्रतीक हैं। और अगर मैं बात करूं कि भोजली वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो भोजली का सीधा संबंध भूजल के स्तर से है। भोजली भूजल को मापने की बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। आपको बताऊं कि जब भोजली का विसर्जन होता है, सभी घरों से बेटियां जो है टोकनी में भोजली सर में उठाकर बाजे गाजे के साथ बढ़िया निकलती हैं, तो भोजली के आकार प्रकार और रंग रूप को देखकर ये अंदाजा लगाया जाता है कि इस वर्ष खेतों में फसलें लहलाएंगी या अकाल पड़ेगा।
1: जी,
0: अगर भोजली बहुत सुंदर हरी

0: दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये है कि इस वर्ष अच्छी फसल होगी। और अगर अधिकांश घरों की भोजली मुरझाई हुई है तो माना जाता है कि फसल की स्थिति इस वर्ष चिंताजनक होगी। तो भोजली के माध्यम से हम कैसे अपने दिनचर्या को, अपने वर्ष को बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हैं?
1: जी बिल्कुल रश्मि जी, मतलब देखा जाए तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो बिना ही कोई तकनीकी माध्यम से भोजली की फसल को देख के बता दिया करते थे कि अकाल पड़ेगा या फिर फसल अच्छी होगी, और ये
0: जी,
1: काफी बड़ी बात
0: वे
1: है।
0: लोग जमीन से कितने जुड़े हुए
1: जी
0: थे, इसका अंदाजा आप लगा सकती हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: जी
1: तो रश्मि जी, ये तो रही कि वैज्ञानिक कारण क्या है, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जो आज की युवा पीढ़ी है उसको जागरूकता के लिए आप क्या सोच रही हैं।
0: जी गीता जी, हमारी जो युवा पीढ़ी है वो हमारा वर्तमान भी है और भविष्य भी है।
1: जी
0: हम किसी भी अच्छे काम की शुरुआत खुद से करते हैं, अपने घर से करते हैं। तो मैं यही समझती हूँ कि हम जब भी ऐसे पर्व मनाएं, त्योहार मनाएं, ऐसे रीति रिवाजों का पालन करें, तो अपने बच्चे हमारे साथ जरूर होने चाहिए, ताकि वो अच्छे से देखे, सुने, सीखे, समझे। और साथ ही जब वो वैज्ञानिक महत्व को समझेंगे ना, तो उनको इस रीति रिवाज और परंपरा को अपनाने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। और साथ ही साथ हम डबल उत्साह से, दुगुने उत्साह से सब एक साथ मिलजुल कर त्योहार को मना पाएंगे। और जाहिर सी बात है, जब इतनी सारी अच्छाइयाँ हमारी युवा पीढ़ी देखेगी अपने रीति रिवाजों में, तभी वो इस परंपरा को आगे बढ़ा पाएंगी।
1: जी बिल्कुल रश्मि जी, और जो श्रोता संख्या सुन रही है उन्हें मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हमारी लोक संस्कृति है उसको आप घर से शुरुआत करें, और आप प्रयास करें कि अगर बच्चे बाहर हैं तो आप उन्हें हर त्योहार में अपने पास बुलाएं या आप
0: जी
1: उनके पास चले जाएं, और
0: जी
1: अपनी जो लोक संस्कृति है, उन लोक पर्व है, उनको आप उनके साथ में आप उसे समय बिताएं या मनाएं, और हो सके तो आप घर में जो भी सदस्य हैं, चाहे दादा दादी हो या नाना नानी हो या आप मम्मी पापा स्वयं क्यों ना हो, कि आप अपनी जो लोक संस्कृति के बारे में अपने बच्चों से बीच बीच में आप उन्हें बात करते रहें, उन्हें समझाते रहें, ताकि जो हमारी लोक संस्कृति है वो संरक्षित रह सके और आने वाली पीढ़ी तक पहुंचा जा सके।
0: बिल्कुल
1: जी तो रश्मि जी, ये तो रही कि हम भोजली का त्यौहार कैसे मनाते हैं, और ये काफी अच्छा त्यौहार है खासकर सखियों के माध्यम से, और सखियाँ ये शब्द सुनते ही मन में बचपन की वो खूबसूरत गलियां याद आने लगती हैं, जहाँ हंसी बेफिक्र थी, बातें अनगिनत थी और रिश्तों में किसी स्वार्थ की जगह नहीं थी, और
0: जी
1: यही भोजली जो त्योहार है वो दर्शाता है, और मैं समझ सकती हूँ कि ये कितना ही अच्छा त्योहार है जिसमें कोई बाधा ना हो। साथ में मैं भोजली गीत सुनना चाहूंगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमारी श्रोता सखियां सुन रही हैं आपको, वो भी चाहेंगे कि आप भोजली गीत अपनी मीठी वाणी से उन्हें
0: हाँ
1: आनंदित करें।
0: जी, गीता जी, हमारे जितने भी लोकगीत हैं वो हमारे मन के उद्गारों को व्यक्त करते हैं, और वो जनमानस की भाषा होती है। तो आप सोचिए कि कोई किताब नहीं, कोई कुछ भी गाइडलाइन नहीं, अपने मन के उद्गारों को लोकगीत में ऐसे सहज और सरल भाव से व्यक्त करते हैं लोग। हमारे छत्तीसगढ़ में नवधा रामायण की परंपरा है, उसमें दोहे तर्ज लगाती हैं महिलाएं, तो वो कहाँ से अपने आप ही गढ़ लेती हैं उस, तो असली गीतकार तो वही हैं। तो मैंने भी अपने मन के उद्गारों को भोजली गीत से व्यक्त करने का प्रयास किया है। मैं आपको सुनाती हूँ,
1: जी बिल्कुल।
0: चूंकि मैं बिलासपुर में रहती हूँ तो अरपा मैया को मैंने ये गीत समर्पित किया
1: क्या
0: है।
1: बात।
0: दी

0: क्या बात है रश्मि जी, वाकई में आपकी ये मीठी आवाज़ और भोजली की गीत दिल तक छू लेती है, और जो हमारे श्रोता सखियाँ हैं वो भी काफ़ी आनंदित हुई होंगी। और हरी हरी भोजली में हरियाली का मान, हरी हरी भोजली में हरियाली का मान, लोकगीतों में बसता छत्तीसगढ़ का गान, माटी की खुशबू से लेकर रिश्तों का प्यार, भोजली सजाती है संस्कृति का संसार। रश्मि जी, अंत में आप हमें श्रोता सखियों को क्या संदेश देना चाहती हैं?
1: श्रोता सखियों, मैं चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को हर रीति रिवाज और परंपराओं से जोड़ें और उनको इसके वैज्ञानिक महत्व की भी जानकारी दें, सामाजिक समरसता की भी जानकारी दें, आपसी प्रेम व्यवहार और भाईचारे की भी जानकारी दें।
0: जी बिल्कुल रश्मि जी। तो सखियों, आज की इस खूबसूरत यात्रा में हमने जाना कि भोजली केवल हरी हरी बालियों का नाम नहीं है, बल्कि हमारी मिट्टी, हमारी भावनाओं और हमारी लोक परंपरा का एक जीवंत स्वरूप है। तो रश्मि जी, आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो में, इसके लिए धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद गीता जी, और साथ ही आपको और हमारे सभी श्रोता साथियों को रक्षाबंधन और भोजली के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई और असीम शुभकामनाएं।
2: हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
3: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
2: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
4: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
5: कुछ रिश्तों को शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस एक राखी, एक मुस्कान और न्यू दिल्ली स्वीट्स की मिठाइयाँ। जब दीदी अपने हाथों से न्यू दिल्ली स्वीट्स की मिठाई खिलाती है तो लगता है जैसे पूरा बचपन जुबान पर रख दिया हो। इस रक्षाबंधन रिश्तों की सबसे मीठी याद घर ले जाइए।
6: न्यू दिल्ली स्वीट्स, हाउस ऑफ प्योरिटी, लिंक रोड, बिलासपुर।
0: बहनों, अभी आप सुन रहे थे क्रमलोक संस्कृति, जिसमें चर्चा का विषय था लोक संस्कृति पर आधारित लोकगीत, जिसमें हम भोजली पर्व की बात कर रहे थे, और वार्ताकार थी रश्मि रामेश्वर गुप्ता। बहनों, भारतीय संस्कृतियों को सहज कर उसे संपूर्ण आस्था के साथ मनाने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। जब बात हम रक्षाबंधन पावन पर्व की कर रहे हैं, तो क्यों ना आज हम नए रेसिपी की बात करें, और ये रेसिपी हमसे साझा करने आ रही है मुस्कान यादव।
7: सभी साथियों को, मैं मुस्कान यादव आज रक्षाबंधन के अवसर पर आपको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि रक्षाबंधन भाई और बहन के पवित्र प्यार और रक्षा के वादे का त्योहार है। इस दिन भाई बहन की कलाई पर सिर्फ राखी नहीं बांधती, अपना प्यार बांध भाई उसकी रक्षा करने का वचन देता है। यह हर साल सावन के महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो आइए बनाते हैं मजेदार नाश्ता, जो कि आपके भाई को बहुत पसंद आएगा। इस रक्षाबंधन के अवसर पर मैं अपने घर पे बना रही हूँ मकई का मालपुआ। मकई के मालपुआ को बनाने के लिए सबसे पहले हमें मकई को छीन लेना है और साफ करके उसके दाने अलग कर लेने हैं। उसके बाद उसको मिक्सर में पीस कर उसको अलग कर लेना है। साथ में हमको मिलाना है काजू, किशमिश, और आपको अगर सौंफ पसंद हो तो आप सौंफ मिला लें।

0: स्वाद अनुसार आप चीनी डालेंगे और साथ में आटा। जब चीनी पूरी घुल जाए तो मकई के आटे को भी आटे में मिला देना है। साथ में मिला करके अब आपको मिलेगा एक बहुत अच्छा बैटर। अब उसमें से छोटे छोटे गुलगुले के आकार के मालपुए तल लेने हैं। जब तक कि वो भूरे ना हो जाएं, हल्के गोल्डन ना हो जाएं, तब तक आप उसको वो फ्राई करें और उसके बाद उसको निकाल लें। आपके सामने बहुत स्वादिष्ट मालपुआ बनकर तैयार हो जाएगा। धन्यवाद, आपको फिर से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन।
1: बहनों, अभी आप सुन रहे थे मुस्कान यादव को, जो हमसे मक्के की मालपुआ रेसिपी हमसे साझा कर रही थी। तो बहनों, आज का हमारा कार्यक्रम आप सभी को कैसा लगा, हमें पत्रों के माध्यम से जरूर लिख भेजिएगा। हमारा पता है, कार्यक्रम महिला सभा द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 49, आकाशवाणी बिलासपुर, पिन कोड है 495006। बहनों, आप सभी अपनी पसंद पर गीत सुनना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है पत्र ईमेल bsp@gmail.com। तो बहनों, आप सभी को रक्षाबंधन की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहिए। तो बहनों, वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, तो दीजिए अनुमति गीता होता को नमस्कार। महिला सभा, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी हम देंगे कार्यक्रम विवरण के माध्यम से। ईमेल करें, गीत सुने, कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा शाम 6:20 पर और शाम 7:00। किसान वाणी हम रिले करेंगे शाम 7:30 पर। श्रोताओं के पत्रों के जवाब हम पेश करेंगे रात्रि 8:00 कार्यक्रम चिट्ठी मिली में। रात्रि 8:20 पर आनंद लीजिएगा शास्त्रीय संगीत का। आइए अब एक नज़र डालते हैं कल के मुख्य कार्यक्रमों पर। सुबह 8:30 पर आकाशवाणी रायपुर से सुनिएगा कार्यक्रम इनसे मिलिए। प्रातः 6:30 पर खेती की बात का विषय होगा बैंगन के फल भेदक कीट और नियंत्रण। वाचक होंगे अभिनव गौरहा। प्रातः 6:45 पर नव विहान में चर्चा का विषय होगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर। सुबह 7:05 पर हम पेश करेंगे कार्यक्रम आज सुबह गांधी चर्चा। आप सुनेंगे सुबह 7:20 पर विषय होगा कर्म का महत्व। वाचक होंगे हरीश चंद्र वाद्यकार। सुबह 10:00 हम लेकर आएंगे कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के। पारंपरिक भोजली गीत को स्वर दिया है सुशील ध्रुव, गायत्री निषाद और साथियों ने। श्रावण कुमार चरित्र सुनिएगा बाल मुकुंद पटेल और साथी के स्वरों में। कार्यक्रम आपकी पसंद का समय होगा सुबह 10:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT सुनिएगा सुबह 11:00। CF वन विभाग सरगुजा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट का समय होगा संध्या 5:00। युवा जगत कार्यक्रम हम लेकर आएंगे संध्या 5:35 पर। आज की बात में चर्चा का विषय होगा संस्कृत एक प्रवाहमय भाषा, पाणिनी शोध संस्थान। क्रम मेरा शहर में सुनिएगा बिलासपुर के पुस्तकालय। ग्राम सभा की ओर हम बढ़ेंगे शाम 7:30 पर। बेरा के गोठ में चर्चा का विषय होगा रिश्तों का जीवन में महत्व का पर्व रक्षाबंधन और कृषि प्रबंधन में महिला समूह की भूमिका। फोन इन कार्यक्रम में खरीफ फसलों में समन्वित कीट प्रबंधन विषय पर श्रोताओं द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देंगे डॉक्टर दुष्यंत कौशिक। कार्यक्रम का संचालन करेंगे पंचू भैया। रात्रि 8:00 संजय वत्सल के गायन नगमों को हम पेश करेंगे सुगम संगीत में। कार्यक्रम रजनीगंधा की महक हम बिखेरेंगे रात्रि 8:15 पर। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:10 होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

ये छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग मीनल तिवारी के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ले आज राष्ट्रीय खेल दिवस के मौका मा राखे गए खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम ला करिन संबोधित। प्रदेश के आने आने शिक्षण संस्थान मन मा युवा मन है प्रधानमंत्री

इंडिया संवाद कार्यक्रम ला करीन संबोधित प्रदेश के आने आने शिक्षण संस्थान मन मा युवा मन ह प्रधानमंत्री के भाषण ला सुनिन। नेपाल मा बाढ़ और भूस्खलन के सेती फंसे छत्तीसगढ़ के नागरिक मन के मदद बर राज्य सरकार ह हेल्पलाइन नंबर करे हे जारी। और भाई बहनी के माया प्रेम के तिहार रक्षाबंधन काली मनाए जाही। रेलवे ह दुर्ग रायगढ़ दुर्ग के बीच आज ले 29 अगस्त तक रक्षाबंधन पैसेंजर स्पेशल ट्रेन चलावत है। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है कहे हैं कि सरकार 21वीं सदी के भारत पर आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करे बर संकल्पित है। श्री मोदी है वीडियो कॉन्फ्रेंस ले आज राष्ट्रीय खेल दिवस के मौका में रखे गए खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम ला संबोधित करीन। उमन कहन की खेल विश्वविद्यालय ले लेके आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र तक देश भर में ऐसा खेल ढांचा बनाए जाते जेमा खिलाड़ी मन के प्रतिभा ला हर स्तर में निखारे जा सकी। प्रधानमंत्री है कहन की खेल जीवन बदलते और देश के गौरव बढ़ते। प्रधानमंत्री है यहू कहिन कि उमन लाल किला के प्राचीर ले 5 से 15 बच्चर तक के आयु वर्ग के लेका मा खेल प्रतिभा खोजे खातिर बड़े प्रतिभा खोज अभियान के घोषणा करे रहीन। ये बेरा मा केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया कहिन कि केंद्र सरकार देश ला मजबूत खेल व्यवस्था बुनियादी ढांचा विकसित करे बर करीबन 36,000 करोड़ रूपया मंजूर करे है। खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के आने आने शिक्षण संस्थान मन में युवा मन है प्रधानमंत्री के भाषण ला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ले सुनिन। प्रधानमंत्री के भाषण सुने बर रायपुर के एम्स प्रधानमंत्री के भाषण ला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ले सुनिन। प्रधानमंत्री के भाषण सुने बर रायपुर के एम्स NIT MIT विश्वविद्यालय के संगे संग भिलाई IIT और BIT दुर्ग में विशेष रूप ले व्यवस्था करेगी रहीस। रायपुर एम्स में स्थानीय सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल और NIT रायपुर में उप मुख्यमंत्री और खेल मंत्री अरुण सावहा युवा मन संग प्रधानमंत्री के भाषण ला सुनिन। ये बेरमा श्री सावहा युवा मन ले कहिन कि तुहा सामर्थ और दम में ही ये देश विकसित भारत बनी। NIT में राखे गए कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी तिलक वर्मा और डॉक्टर प्रियंका बिस्सा मौजूद रहीन। कार्यक्रम के दौरान श्री सावहा युवा मल्ला नशा मुक्ति के शपथ देवाइन। उन्हें प्रदेश के आने जिला के शिक्षण संस्थान मन में वहाँ के पढ़ैया लयिका प्रधानमंत्री के भाषण सुने खातिर मौजूद रहीन है। कतकुन विद्यार्थी मना कहिन कि देश में खेल बर अनुकूल वातावरण बनाए बर प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम एक सार्थक पहल हवै। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करे बर शासन कोती ले गठित उच्च स्तरीय समिति के मौजूदगी में आज रायपुर में राज्य स्तरीय बैठक हुई। बैठक में समिति के सदस्य IAS शत्रुघ्न सिंह और MK राउत वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार के संगे संग धार्मिक और सामाजिक संगठन और आयोग निगम मंडल के पदाधिकारी संगरीन। ये दौरान छत्तीसगढ़ में सबो नागरिक मन के बिहाव तलाक भरण पोषण उत्तराधिकार और लिव इन संबंध जैसन व्यक्तिगत मामला एक असन और न्याय संगत अधिकार दे के दिशा में बड़े कदम उठाए जाए के सुझाव देगी। नेपाल में काली आए भीषण बाढ़ में करीबन 160 लोगन मन के मौत हो गए है और 133 भारतीय नागरिक समेत 750 ले ज्यादा लोगन लापता हवें। तिब्बत ले आए ये बाढ़ में कतकुन कस्बा और गांव ला तबाह कर दे है, पुल बोहागे है और दर्जनों जल विद्युत परियोजना ठप हो गए है। यही बीच भारत है बाढ़ ले जूझत नेपाल के मदद पर 10 टन आपदा राहत सामग्री और जरूरी दवाई भेजे है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है नेपाल में बाढ़ हुए तबाही मा वहाँ के लोगन पर अपन संवेदना जताई है। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाहले गोट बात करत हर संभव मदद दे के भरोसा देवन है। यही बीच नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन के सेती फंसे छत्तीसगढ़ के नागरिक मन के मदद पर राज्य सरकार हेल्पलाइन नंबर जारी करे है। प्रदेश के नागरिक उखर परिजन सहायता और जरूरी जानकारी खातिर हेल्पलाइन नंबर 1070 और दूर भास नंबर 9177122234 मा संपर्क कर सकत हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहिन कि संकट के घड़ी में राज्य सरकार अपन हर एक नागरिक संग खड़े है। उमन यहू कहिन कि नेपाल में फंसे नागरिक मन के सुरक्षित वापसी और जरूरी मदद खातिर सरकार मुस्तैदी ले काम करत है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जसपुर जिला के बगिया में अंतरिक्ष संगवारी अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण पहल के शुभारंभ करीन। ये कार्यक्रम भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला कोतिले समर्थित है। ये बेरमा मुख्यमंत्री

0: है कि हिंद की ये कार्यक्रम ले जसपुर के विद्यार्थी मल्ला विज्ञान के क्षेत्र में प्रेरित करे खातिर नवाचार करे जाते उन्हें मुख्यमंत्री है बगिया में राखे गए एक आने कार्यक्रम में साइंस ऑन व्हील्स गाड़ी ला झंडी दिखा के रवाना करीन ये गाड़ी ला एक चलित प्रयोगशाला के रूप में तैयार करे गए है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रेपू ले सुना था और अब आगू बढ़बो बाची समाचार कोती। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में तिसरगांव पेपर लीक के मामला आगू आए है। बीएससी पहली बच्चर के दूसरा सेमेस्टर के तहत फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स के परीक्षा 19 अगस्त के बिहनिया 10 बजे हुआ रहीस फिर परीक्षा ले 5 घंटा पहले पेपर के पीडीएफ फाइल पढ़ैया लयिका मन के बीच वायरल हो गयी। विश्वविद्यालय है तेलीबांधा पुलिस ला मामला के जाँच पर चिट्ठी लिखे है। राज्य शासन है खेल अलंकरण पर चुने गए खिलाड़ी प्रशिक्षक और निर्णायक मन के सूची जारी कर दे है। पाछू 3 बच्चर पर कुल 82 उम्मीदवार मल्ला पुरस्कार और सम्मान दे जाही। मुख्यमंत्री ट्रॉफी पर 5 दल के 43 खिलाड़ी और प्रशिक्षक मल्ला चुने गए है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राष्ट्रीय खेल दिवस के मौका में 29 अगस्त के खिलाड़ी प्रशिक्षक और निर्णायक मल्ला राज्य अलंकरण दी। राजधानी रायपुर के पंडित दीन दयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में हो समारोह में आने आने खेल पुरस्कार के संग मुख्यमंत्री ट्रॉफी पर चुने गए प्रतिभागी मल्ला सम्मानित करे जाही। प्रदेश के सरकारी स्कूल मन में ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करे में आवत तकनीकी दिक्कत के बीच स्कूल शिक्षा विभाग विद्या समीक्षा केंद्र ऐप में सुधार करे है। एमा ऑफलाइन मोड और उपस्थिति के बायोमेट्रिक पुष्टि के सुविधा घलो जोड़े गए है। अब शिक्षक बिना इंटरनेट के घलो स्कूल परिसर में अपन मौजूदगी दर्ज करा सकी। एखर ले प्रदेश के प्राथमिक ले हायर सेकेंडरी स्कूल और कार्यालय में पदस्थ करीबन 2.25 लाख शिक्षक और कर्मचारी मल्ला राहत मिली। भाई बहनी के मया परेम के तिहार रक्षाबंधन काली मनाए जाही। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के सबो जिला के हाट बाजार मा सुग्घर राखी से ले सजे है। पाछू बछर असन एसो घलो स्व सहायता समूह के माइलोगिन मन कोती ले बनाए गए रिकम रिकम के राखी लोगन के मन भावत है। राज्यपाल रमन डेका मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह प्रदेशवासी मल्ला रक्षाबंधन पर्व के बधाई और शुभकामना दिन है। ये मौका मां रायपुर के केंद्रीय जेल मां कैदी मल्ला राखी बांधे पर विशेष व्यवस्था करे गए है। जेल प्रशासन कोती ले जारी निर्देश के मुताबिक बिहनिया 8 बजे ले मंझनिया 3 बजे तक सिर्फ बहनी मल्ला ही कैदी मल्ले मिले और राखी बांधे पर जेल भीतरी जाए के मंजूरी होगी। इस बीच राखी पर्व के दौरान यात्री मन के सुविधा खातिर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल कोती ले दुर्ग रायगढ़ दुर्ग के बीच आज ले 29 अगस्त तक रक्षाबंधन पैसेंजर स्पेशल ट्रेन चलाए जाते। एक ठहराव दुर्ग और रायगढ़ के बीच सबो स्टेशन में देगे है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश इकाई है अवैया महीना में 15 नागरिक निकाय पर चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी मन के नियुक्ति कर दे है। इमा संगठन ले जुड़े नेता विधायक पूर्व विधायक महापौर और पार्षद शामिल है। हर एक निकाय में एक प्रभारी और 2 सह प्रभारी मिला के कुल 45 पदाधिकारी मन ला जिम्मेवारी दे गए है। ये 15 निकाय मन में 4 नगर निगम 5 नगर पालिका और 6 नगर पंचायत शामिल है। कांकेर जिला के भुरसा तरहुल गांव में पुलिस दबिश दे के एक एकड़ खेती में अरहर और चेज भाजी के बीच उगाए जात गांजा के 844 पौधा जब्त करे है। ये पौधा की कीमत बाजार में करीबन 4.25 लाख रुपया आके गए है। ये मामला में आरोपी किसान सुभाष कोरेटीला नशा उन्मूलन कानून के तहत गिरफ्तार करे गए है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। प्रधानमंत्री है वीडियो कॉन्फ्रेंस ले आज राष्ट्रीय खेल दिवस के मौका में रखे गए खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम ला करीन संबोधित। प्रदेश के आने आने शिक्षण संस्थान मन मा युवा मन है प्रधानमंत्री के भाषण ला सुनीन। नेपाल मा बाढ़ और भूस्खलन के सेती फंसे छत्तीसगढ़ के नागरिक मन के मदद पर राज्य सरकार हेल्पलाइन नंबर करे है जारी। और भाई बहनी के मया प्रेम के तिहार रक्षाबंधन काली मनाए जाही। रेलवे है दुर्ग रायगढ़ दुर्ग के बीच आज ले 29 अगस्त तक रक्षाबंधन पैसेंजर स्पेशल ट्रेन चलावत है। इकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़।

पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:20 हुए हैं। लीजिए पेश है ईमेल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। ईमेल करें, गीत सुनें। आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन है कार्यक्रम में। फिल्म गुरु का गीत हमारे श्रोताओं ने सुनना चाहा है, हरिहरन और अलका याग्निक के युगल स्वर में। गुलजार की रचना है, AR रहमान की तर्ज है और पसंद आप सभी की। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से हमारे साथी हैं अभिजीत गवहाड़कर, सरिता प्रिंस, एकांश गवहाड़कर। मोहाली चंडीगढ़ से टीम मल्होत्रा, डी ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। अम्बागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा सबिया, अनस और रेहान। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप, राशि, शीतल, राजेश। पोटिया कला दुर्ग से हमें फरमाइश भेजी है संजय साहू, सुजाता, शशांक, सीमा साहू ने। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्नी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार। डुमराओं से वली उल्लाह अंसारी, महेंद्र मोदी, विक्रांत मोदी और इफ्साल ताज। कोटवा, नारायणपुर, बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित राय, हैप्पी राय। नरवेल महाराष्ट्र से PS नवहाड़कर, निर्मला विशाल नहावकर। सोंगा मगरलोड से फनीश कुमार, चंदन, सावित्री देवी, मोहित, देविका रानी, चंदन, गजेंद्र कुमार, हेयांश कुमार, चंदन। श्रीरामपुर से हमें फरमाइश भेजी है अशोक दले, सविता, अनिकेत दले, रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका दले ने। कर्मा चौक, लोहारेडी, कवर्धा से अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी, खुशांत, निशांत साहू। रोहासी से मुकेश साहू, नंदनी, मनीष, मयंक, जानकी साहू। नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। चिरमिरी, कुरासिया, कालरी से इंद्रवान सिंह, अनुभव, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे, कालिंद्री लहरे। मजनू का टीला से कमला बालूजा, मधु, सागर बालूजा। सरगांव से राजेश वर्मा, हिरोमन, पल्लवी, राजेश्वरी वर्मा। पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता। यवतमाल से राहुल मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी, प्रियांशी, मनवर। दिल्ली से इस गीत को सुनना चाहा है बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका भानु ने। झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसु, तासु, अर्णव आनंद, सत्यन आनंद। कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सर्वद देशमुख। और दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना, चैतन्य मस्किन और मेघा मस्किन। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का पहला गीत।

0: कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना गुरु फिल्म से, हरिहरन और अलका याग्निक के युगल स्वरों में।
1: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रमाणिकता जाँचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
2: कुछ रिश्तों को शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस एक राखी, एक मुस्कान और न्यू दिल्ली स्वीट्स की मिठाइयाँ। जब दीदी अपने हाथों से न्यू दिल्ली स्वीट्स की मिठाई खिलाती है तो लगता है जैसे पूरा बचपन जुबान पर रख दिया हो। इस रक्षाबंधन रिश्तों की सबसे मीठी याद घर ले जाइए।

0: New Delhi Sweets, House of Purity, Link Road, Bilaspur.
1: लीजिए पेश है गुलजार की रचना आर डी बर्मन की धुन पर। आशा भोसले की आवाज है, फिल्म का नाम है इजाजत। इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है नानघाट कातलबोर से भाग सिंह राजपूत भाग्यश्री टिकेश्वर ऋतु राजपूत ने। डोंगरगांव से राजपाल गजभिये राधिका अनिष्का और तन्मय गजभिये ने। कुरावली से अनिल कुमार वर्मा माया देवी राहुल विनित सोनम वर्मा। बक्सर बिहार से हमारे साथी हैं शरफुद्दीन अंसारी फातिमा खातून सुरित रमेश साहू। कैदी मुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह उषा ऋषभ सिंह। पूना जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत अरुणा सुलोचना भगत चेतन भगत। सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रिवाड़ चंद्रकला रिवाड़। दिल्ली शहर से हमें फरमाइश भेजी है आसमा परवीन आमना परवीन और वली अंसारी ने। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव ज्योति ओजस्वी यादव। बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निघत परवीन शाहनवाज सरफराज फरदीन सुहान अरजान अब्बासी अबान अब्बासी। गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान साइमा नवाज हसन नवाज अहद मिफ्रा नवाज चाहत। बिलासपुर से हमारे साथी हैं चन्नूलाल श्रीवास अनीता पुष्पा अंजू योगिता श्रीवास रज्जन साहू हेमंत नामदेव धर्मदास वाधवानी। देवरी भाटापारा से के आर साहू आकाश कमलेश गन्नूलाल रजक मुरली क्षत्रिय। सावतपुरा से ऋषि सेन रितेश कंचन माही सेन। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया एंजल सोनू पप्पी भाटिया। मुंबई से आदिबानाज फातिमा नासरीन अंसारी आलिया और सबा अंसारी। जालंधर से संदीप चटोलिया। तेलंगाना भोंगिर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन। बेगलूर नांदेड़ से संतोष भाकरे सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे। बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गम्हाड़कर टुकटुक प्रिंस एकांश सुमित गम्हाड़कर ध्वनि गम्हाड़कर। जालंधर से मीना कौर मन्नत नूर। यवतमाल से पंजाब रामटेके यशोधरा श्राव्या रामटेके। भाटापारा से हमारे साथी हैं बचकामल मोतीलाल यादव सियाराम चुवाराम वर्मा सूरज बारेकर नारायण यदू भुवन कामरी। ओवरेठीपारा भाटापारा से अनीता साहू वीणा नेहा मोनिशा साहू। खंडवा से अब्दुल गफ्फार डाबर खुशनसीब अब्दुल हक जियाउलक डाबर मोहम्मद उमर डाबर और राजेंद्र कटारे। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये गीत।

0: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जांचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
1: कुछ रिश्तों को शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस एक राखी, एक मुस्कान और न्यू दिल्ली स्वीट्स की मिठाइयाँ। जब दीदी अपने हाथों से न्यू दिल्ली स्वीट्स की मिठाई खिलाती है तो लगता है जैसे पूरा बचपन जुबान पर रख दिया हो। इस रक्षाबंधन रिश्तों की सबसे मीठी याद घर ले जाइए।
2: न्यू दिल्ली स्वीट्स, हाउस ऑफ प्योरिटी, लिंक रोड, बिलासपुर।
3: श्रोताओं, आपकी फरमाइश पर हम लेकर आए हैं वारिस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह के युगल स्वर में। गीतकार वर्मा मलिक हैं, संगीतकार उत्तम जगदीश हैं। पसंद आप सभी की। गांव जाखोद से शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश

रमेश दीपक पूजा खटक की, लगान पंडरिया से, उत्तम कुमार बघेल रुक्मणी बघेल साहिल भारती बघेल, जमानिया गाजीपुर से, सुरेश जायसवाल उर्मिला दीपक स्वाति जायसवाल, पंजाब से सुभाष गोदारा विमला इंदु पार्वती हिमांशु गोदारा की, जोधपुर राजस्थान से हमारे साथी हैं रमेश चंद्र चौहान मोहिनी कल्पित गर्वी हिमाक्ष, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, डबवाली से राजेंद्र नारंग अंजू मोहित तानिया नारंग, बुल्ढाना वड़शिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर शोभाताई मानकर दीपाली और श्लोक कुमार, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो रोजी पर्ल विलिस डिकैस्ट्रो, बठैना से परमेश्वर साहू राजबत्ती टोप सिंह काजल पूर्वी हेजल राजेश रेशमा साहू, हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा अलका मिड्ढा, बोरसरा नैला से प्रमोद कुमार साहू बीमा वैभवी विनोद विभूति अंशु बबली और प्रियांशु साहू, राजकोट से जूली जगदीश गुजराती प्राची और प्रवीण पुजारी, गुमला झारखंड से नजमूल होदा एसएम जावेद और शगुफ्ता अंजुम, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श राबिया शेख शेख रहीम मुन्ना, तखतपुर से हमारे साथी हैं मिश्रीलाल विश्वकर्मा मीरा देवी विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा, पानीपत से नरेश मल्होत्रा लक्ष्य कोयल नानक मल्होत्रा, लोरमी चचेड़ी से कमलकांत मरावी प्रमीला नेहा पुष्पराज ऋषभ मरावी, सोंगा जिला धमतरी से कोमल सेन तोषण सेन विनायक सेन, कुंभार गली कोलगांव से पांडु चंदन उषा प्रतीक्षा प्रथमेश चंदन पांडुरंग कुंभार, रायगढ़ से शिव कुमार चौहान संक्रांति रितेश राजेश्वरी उत्कर्ष चौहान, आदर्श नगर मलौट पंजाब से राज शर्मा मीना योगेश निवान सौरभ शैना शर्मा और मेहंदी शर्मा, पटियाला से सोमदत्त कैरव ज्योति रानी गुरमंत कौर मनु, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा पूनम गगनेजा विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा, धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी नौशाद सलमानी आलिया और आयान।

0: ईमेल करें गीत सुने। कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे वायरस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह की आवाजों में। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। शाम के 6:45 होने वाले हैं। विज्ञापन और प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मेरा नाम मुनिया भाई राठिया है, मैं ग्राम केरा कछार से हूँ। 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 93,000 का वित्तीय राशि मिला खरीफ फसल में, कि फसल बीमा जरूर कराएं ताकि फसल में जो नुकसान होता है उसके लिए सहायता मिल सके। फसल बीमा कराना बहुत जरूरी है।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
6: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
5: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
6: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं, उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
5: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
6: क्यों?
5: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
7: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
8: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
9: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
8: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
9: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
8: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
9: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
7: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
10: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है, 6:48 होने को हैं। अब सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
11: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को संकल्पित। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने शासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की उपस्थिति में आज रायपुर में हुई राज्य स्तरीय बैठक। मुख्यमंत्री ने आज जशपुर जिले के बगिया में अंतरिक्ष संगवादी अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण पहल का शुभारंभ किया और भाई बहन के पवित्र स्नेह का त्यौहार रक्षाबंधन कल मनाया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को संकल्पित है। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में ऐसा खेल ढांचा विकसित किया जा रहा है जिसमें खिलाड़ियों की प्रतिभा को हर स्तर पर निखारा जा सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलों से जीवन बदलता है और देश का गौरव बढ़ता है।
12: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है, ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीत

0: इतना नहीं है, खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने लाल किले की प्राचीर से 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों में खेल प्रतिभा खोजने के लिए बड़े प्रतिभा खोज अभियान की घोषणा की थी।
0: लाल किले से मैंने 5 साल की उम्र से 15 साल की उम्र के खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए एक बड़े टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है और इसमें भी हमें केवल ये नहीं देखना है कि किस बच्चे की किस खेल में रुचि है, बल्कि ये भी देखना है कि कौन सा बच्चा किस खेल के लिए फिट है। हमें उस हिसाब से ही उस बच्चे को ट्रेनिंग देनी होगी।
1: इस अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश में मजबूत खेल व्यवस्था और बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए 36,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में भी युवाओं ने प्रधानमंत्री के भाषण को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुना। प्रधानमंत्री का भाषण सुनने के लिए रायपुर के एम्स, एनआईटी और एमिटी विश्वविद्यालय के अलावा भिलाई आईआईटी और बीआईटी दुर्ग में भी विशेष इंतजाम किए गए थे। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने शासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की उपस्थिति में आज रायपुर में राज्य स्तरीय बैठक हुई। बैठक में समिति के सदस्य आईएएस शत्रुघ्न सिंह और एम के राउत, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार के साथ ही धार्मिक और सामाजिक संगठनों के अलावा आयोग, निगम और मंडल के पदाधिकारी शामिल हुए। नेपाल में कलाई भीषण बाढ़ में 160 लोगों की मौत हो गई और 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से अधिक लोग लापता हैं। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। महत्वपूर्ण पुलों को बहा ली गई और 1 दर्जन जल विद्युत परियोजनाओं को ठप कर दिया। इस बीच भारत ने बाढ़ से जूझ रहे नेपाल की सहायता के लिए 10 टन आपदा राहत सामग्री और आवश्यक दवाइयां भेजी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल में बाढ़ से हुई तबाही पर वहां के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस बीच नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन के कारण फंसे छत्तीसगढ़ के नागरिकों की सहायता के लिए राज्य सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। प्रदेश के नागरिक या उनके परिजन सहायता और आवश्यक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1070 या दूरभाष नंबर 9177122347 पर संपर्क कर सकते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार अपने प्रत्येक नागरिक के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि नेपाल में फंसे नागरिकों की सुरक्षित वापसी और आवश्यक सहायता के लिए सरकार पूरी तत्परता से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज जशपुर जिले के बगिया में अंतरिक्ष संगवारी अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण पहल का शुभारंभ किया। ये कार्यक्रम भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला द्वारा समर्थित है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जशपुर के विद्यार्थियों को विज्ञान के क्षेत्र में प्रेरित करने के लिए नवाचार किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने बगिया में ही आयोजित अन्य कार्यक्रम में साइंस ऑन व्हील्स वाहन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस वाहन को एक चलित प्रयोगशाला के रूप में तैयार किया गया है। इसमें मौजूद वैज्ञानिक संसाधनों और उपकरणों को देखकर विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति और गहरी रुचि पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य के दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से आवश्यकता के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू कर दी है। सरकार ने कहा है कि प्याज को 35 रुपए प्रति किलो की दर से बेचा जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 6 अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किया है। ऋतु वर्मा को छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक के पद से मुक्त कर दीप्ति गौते को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। वहीं विनय अग्रवाल सरगुजा के निगम कमिश्नर बनाए गए हैं। इसी तरह देवनारायण कश्यप को नगरीय प्रशासन का उप सचिव, चित्रकांत चाली ठाकुर को नारायणपुर जिला पंचायत का सीईओ और गुड्डूलाल जगत को श्रम विभाग का उप सचिव बनाया गया है। राज्य शासन ने खेल अलंकरणों के लिए चयनित खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और निर्णायकों की सूची जारी कर दी है। पिछले 3 वर्षों के लिए कुल 82 अभ्यर्थियों को पुरस्कार और सम्मान दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ट्रॉफी के लिए 5 दलों के 43 खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को चुना गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त को खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और निर्णायकों को राज्य अलंकरण प्रदान करेंगे। राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाले

समारोह में विभिन्न खेल पुरस्कारों के साथ ही मुख्यमंत्री ट्रॉफी के लिए चयनित प्रतिभागियों को भी सम्मानित किया जाएगा। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में तीसरी बार पेपर लीक का मामला सामने आया है। बीएससी प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर के तहत फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स की परीक्षा 19 अगस्त को सुबह 10 बजे होनी थी, लेकिन परीक्षा से 5 घंटे पहले ही पेपर की पीडीएफ फाइल विद्यार्थियों के बीच वायरल हो गई। विश्वविद्यालय ने तेलीबांधा पुलिस को मामले की जांच करने के लिए पत्र लिखा है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने में आ रही तकनीकी दिक्कतों के बीच स्कूल शिक्षा विभाग ने विद्या समीक्षा केंद्र ऐप में सुधार किया है। इस ऐप में ऑफलाइन मोड और उपस्थिति के बायोमेट्रिक पुष्टि की सुविधा भी अब जोड़ दी गई है। अब शिक्षक बिना इंटरनेट के भी स्कूल परिसर में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकेंगे। इससे प्रदेश के प्राथमिक और हायर सेकेंडरी स्कूलों और कार्यालयों में पदस्थ करीब 2.25 लाख शिक्षकों और कर्मचारियों को राहत मिलेगी। भाई बहन के पवित्र स्नेह का त्यौहार रक्षाबंधन कल मनाया जाएगा। इस त्यौहार को लेकर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों के बाजारों में काफी रौनक देखी जा रही है। पिछले वर्षों की तरह इस बार भी स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाई गई तरह तरह की राखियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। राज्यपाल रमन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। रक्षाबंधन के मौके पर रायपुर के केंद्रीय जेल में बंदियों को राखी बांधने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। जेल प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक कल केवल बहनों को ही बंदियों से मिलने और उन्हें राखी बांधने के लिए जेल के भीतर प्रवेश की अनुमति होगी। इस बीच रक्षाबंधन पर्व के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल द्वारा दुर्ग रायगढ़ दुर्ग के बीच आज से 29 अगस्त तक रक्षाबंधन पैसेंजर स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। इस ट्रेन का ठहराव दुर्ग और रायगढ़ के बीच सभी स्टेशनों पर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने आगामी महीनों में 15 नगरीय निकायों के लिए चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। इनमें संगठन से जुड़े नेता, विधायक, पूर्व विधायक, महापौर और पार्षद शामिल हैं। निकायों में एक प्रभारी और 2 सह प्रभारी मिलाकर कुल 45 पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। इन 15 निकायों में 4 नगर निगम, 5 नगर पालिका और 6 नगर पंचायत शामिल हैं। कांकेर जिले के भूसा तरहुल गांव में पुलिस ने दबिश देकर 1 एकड़ खेत में अरहर और चेंच भाजी के बीच उगाए जा रहे गांजे के 844 पौधे जब्त किए हैं। इन पौधों का बाजार मूल्य करीब 4.25 लाख रुपए आंका गया है। इस मामले में आरोपी किसान सुभाष कोरेटी को नशा उन्मूलन कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को संकल्पित। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने शासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की उपस्थिति में आज रायपुर में हुई राज्य स्तरीय बैठक। मुख्यमंत्री ने आज जशपुर जिले के बगिया में अंतरिक्ष संगवारी अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण पहल का शुभारंभ किया और भाई बहन के पवित्र स्नेह का त्यौहार रक्षाबंधन कल मनाया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: UPI ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% UPI पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे और हर दो में से एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: UPI के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र।
2: प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। FM बैंड 103.2 MHz पर आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। शाम के 7 बजे हैं। आइए एक बार फिर शुरू करते हैं सफर ईमेल्स का। कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने में।

सुनने की फरमाइश हमें भेजी है। वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा ने। नरगोड़ा से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल, डिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी ने। फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार डूडी ने। महसौल सीतामढ़ी बिहार से हमारे साथी हैं मुसर्रत जहानाज, तलअत फरहत रिफत, नुजहत शाजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज ने। हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान उत्तम जमदाड़े। पंजाब से प्रेम सिंह जौड़ा, मनजीत कौर जौड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप, सिम्मू एकम, दमन अभिजोत ने। गुजरात से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जोहारी। राजकोट से रुचि गुप्ता, ट्विंकल, उमा गुप्ता। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परिहार। रायगढ़ बिहार से उमा राज, पवन, संजय, दीपक और कमल उमा। लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर, राही मोहराज जहां, अराड़। नानघाट से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल गोपी वर्मा। पिपरिया से हमें फरमाइश भेजी है कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता ने। समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा, अदिति, राधे, दीपक, अंकुर, राघव गुप्ता। राजकोट से राजेश, कृष्णा, स्वाति और ख्याति कुमारी। सरगुजा मेनपाट से अजीता पॉल, प्रभा रानी, प्रियांशी शर्मा। मुंबई से अब्दुल कलाम राइन, अब्दुल सलाम राइन। पीपरलोड सरगांव से दीपेश वर्मा, पूनम, ज्योति और शिवांश वर्मा। पलारी से नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत, लखनलाल, सावित्रीबाई देवांगन। खमहरिया से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार। बलौदा से दिलहरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल, समृद्धि पटेल। नेपा नगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन, राजेंद्र शाह। ततरेंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि, नोखेलाल वर्मा। नांदूरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप, अमूल्य बाठे। पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस, निखिल, यशस्वी वर्मा। देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश राम। पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता, प्रियंका, प्रशांत, प्रियम थांदी, वामिका और वाणी थांदी। इस गीत को गाया है सुमन कल्याणपुर ने। फिल्म का नाम है रेशम की डोरी। बोल लिखे हैं इंदिवर ने और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

0: कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना रेशम की डोरी फिल्म से सुमन कल्याणपुर की आवाज में।
1: कुछ रिश्तों को शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस एक राखी, एक मुस्कान और न्यू दिल्ली स्वीट्स की मिठाइयाँ। जब दीदी अपने हाथों से न्यू दिल्ली स्वीट्स की मिठाई खिलाती है तो लगता है जैसे पूरा बचपन जुबान पर रख दिया हो। इस रक्षाबंधन रिश्तों की सबसे मीठी याद घर ले जाइए।
2: न्यू दिल्ली स्वीट्स, हाउस ऑफ प्योरिटी, लिंक रोड, बिलासपुर।
0: लीजिए, पेश है मासूम फिल्म का गीत अभिजीत और साधना सरगम के स्वरों में। गीतकार और संगीतकार आनंदराज आनंद है। इस गीत के लिए हमें ईमेल्स मिले हैं करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, माया कुमार के। निम्नाबाद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, करमजीत कौर की। गंडई पंडरिया से हमारे साथी हैं पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंद्र रौनक सेन की। रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, संध्या, कीर्ति, डिकेश, वासु, डॉली, पूर्वेश साहू। इंदौर से नारायण खर्चे, ललिता, गणेश, कार्तिक, परी खर्चे, स्वाति, प्रयाग चौधरी। बाग बहरा भदरसी से पन्नालाल सेन, खुशबू, तारा, कौशल सेन। फजिलका पंजाब से भूषण खेरा, विशाल, विशु, लेडी, शालिनी, तिवांशी,

वाणी आरबी खेरा, पाढ़र कवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा अनुश्री धनश्री बुरांडे, कुंडला उदयपुर सरगुजा से जीवन धन सिंह पैकरा, घुरनी करिश्मा सोमार साय, कलेश्वर सिंह सुखराम हीरामणि ऐश्वर्य पैकरा, भाडापारा से प्रेमलाल साहू भूपेंद्र साहू दुष्यंत राघवेंद्र साहू, दिल्ली से लाल बाबू दीवाना उमा राज और दिव्या भारती, छत्तीसगढ़ से प्रजा जाटव डॉली कबीर जाटव देवशंकर जमा, भूतकचार लोरमी से दुर्गेश मरकाम निर्मला दीपक प्रीतम धनराज मरकाम, बुंदेलखंड से उदयभान पाल जय हिंद दीक्षा प्रतीक्षा विमलेश पाल दिव्यांश बघेल, अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर सदानंद गौरव मंदूरकर आरव और अर्पिता, पैठन से सुरेश जाधव अनीता आरती पूजा प्रसाद सोनल सिया जाधव, पोड़ी भाटा अकलतरा से दिलीप चंदन चोआराम यदु निखिल चंदन।

शीला देवी मंदूरकर, सदानंद गौरव मंदूरकर, आरव और अर्पिता, पैठन से सुरेश जाधव, अनीता, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल, सिया जाधव, पोड़ीभाटा अकलतरा से दिलीप चंदन, चुवाराम यदु, निखिल चंदन, वसुंधरा, प्रांजल चंदन, जालंधर से संदीप मक्कार, ज्योति, मन्नत, भरत, कमल साहनी, मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून, मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह, सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु नारंग, सोनाली नारंग, बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशबद सिंह राहुल, भिलाई चरौदा से नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीदुन, जीशान अहमद सिद्दीकी, शाहनवाज अहमद सिद्दीकी, पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश नेहा, वान्या सिंगरौल, दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा और सीटी दीवाना। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

0: कुछ रिश्तों को शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस एक राखी, एक मुस्कान और न्यू दिल्ली स्वीट्स की मिठाइयाँ। जब दीदी अपने हाथों से न्यू दिल्ली स्वीट्स की मिठाई खिलाती है तो लगता है जैसे पूरा बचपन जुबान पर रख दिया हो। इस रक्षाबंधन रिश्तों की सबसे मीठी याद घर ले जाइए।
1: न्यू दिल्ली स्वीट्स, हाउस ऑफ प्योरिटी, लिंक रोड, बिलासपुर।
2: अगला गीत हम सुनवा रहे हैं आपको लता मंगेशकर, किशोर कुमार के युगल स्वर में। आनंद बख्शी के बोल हैं, आरडी बर्मन की तर्ज है और फिल्म का नाम है हरे राम हरे कृष्णा। इस गीत को पसंद किया है जनकपुरी से पिंटू दीवाना राजेंद्र सिंह ओबेरॉय ने, लेवाई से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी ने, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, जमशेदपुर से अपूर्व सिंह, अनुपम राकेश कुमार, नागरकोरा राजनांदगांव से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा आराध्या साहू। महाराष्ट्र से हमारे साथी हैं रुपेश संघई, महेश प्रज्ञेश और प्रीतेश संघई। भागलपुर से कमल किशोर साह, अश्विनी अमरदीप, पशुपति साह, टींको मुस्कान। तत्रेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा। कतियापारा जोना बिलासपुर से इस गीत को सुनना चाहा है सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, शनि, रेयांश, कान्हा, आदित्य देवांगन ने। मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश, राहुल साहू। जलगांव से दिनेश काले, वंदना, आदेश कुमार काले, वसुधा वज्रसेन। ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण, लव्या, आरव खुराना, एस के पप्पी। सहारनपुर से आशु। कस्बा गुनौर से नसीमुल इस्लाम गुनौरी, फरहीन अब्बासी, दानिश गन्नौरी। रायपुर से विनोद वंडलकर, वीना वंडलकर, विविधा वंडलकर, मोताला। महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला, ओम कुमार सुरलकर। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये गीत।

आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में अनामिका फिल्म का ये तराना। रचनाकार मजरू सुल्तानपुरी हैं, संगीतकार आरडी बर्मन है और पसंद आप सभी की। पजौनिया जालौन से सतीम कुमार चंदसौलिया, आदर्श सार्थक आलोकिक चंदसौलिया, राजकोट से जूली जगदीश गुजराती, प्राची और प्रवीण पुजारी, रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू, हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डप्पू, जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, धुर्राबांदा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव नवीन, युवराज साहू, हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा, अलका मिड्ढा, बठेना पाटन दुर्ग से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, निधि, निखिल, यश, प्रयाण, शिवम, रेखा, धनेश्वरी वर्मा, राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, भिलाई से अशोक, श्याम कुंवर, प्रमीला, आसमा, श्याम कुंवर, गंडई टिकरीपारा से जागेश्वर देवांगन, कचरीबाई, दीपक, जयश्री, ऋषभ, रिचा देवांगन, सहारनपुर से हमारे साथी हैं सैयद मसरूर शाइना, हसन नाजिया इब्राहिम, सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अल्तमश खत्री, मोहम्मद अलकमा, रमेश गौर, मोहम्मद शादाब खत्री, लुथरा खमरिया से अकरम, अमीन, अर्श, आतिका, लोहगढ़ से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन अपार ढिंगिया, लुथरा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज, तेवरता डबरीपारा से महेंद्र प्रताप मरकाम, जया जागेंद्र, गजेंद्र जयंती, ममता, मनीषा, मंजू, मानसी, सुरेंद्र।

मोहन सिंह, सहोद्रीबाई मनमोहन सिंह, गिरिजाबाई मरकाम, चंद्रपाल मरावी, लक्ष्मी थगवानी, बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक समर्थ, शौर्य नामदेव, बुरगहन से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार चंद्रकला, शशिकांता प्रजापति, पुतकी कला कवर्धा से राधेश्याम पांडे, वीणा विनय शंकर पांडे, महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर और साजिद शाहिद। आप सभी की फरमाइश पर पेश है कार्यक्रम का ये आखिरी फरमाइशी गीत।

अनामिका फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:30 होने वाले हैं। किसान वाणी सुनेगा आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से।

0: राम राम रुक्मणी,
1: राम राम समित संगे संग हमार कार्यक्रम सुनिए जम्मो संगी मल्ला हमार दोनों के
0: राम
1: राम राम।
0: राम। बेरा है किसान वाणी के, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। हमला आज घलो पानी के मोल्ला समझना चाहिए और कथे ना कि जल है तो कल है।
1: सिरतोन बात है समित, और देख जल है तो कल है, जरा ध्यान में रखते हुए जल के संरक्षण हमन लग करना चाहिए। जल के संरक्षण मतलब पानी के हर बूंद के चतुराई के साथ उपयोग करना और ओला बर्बाद होले बचावन। एक अनुमान के मुताबिक हमार

0: पृथ्वीमा 1% पानी ही पिए बर उपयुक्त हवे, जेकर खातिर हमन ला हमर मन के ये जिम्मेदारी ओ बढ़ जाते कि हमन एकर संरक्षित करन और सुरक्षित रूप ले एकर उपयोग करन।
1: हाँ रुक्मणी, पर आज के बेरा में हमन देखथन कि लोग मन जागरूक नहीं आवे, जबकि हमन अगर चाहन तो दिन के अपन जीवन शैली में छोट छोट बदलाव करके जल संरक्षण में बड़ योगदान दे सकत हन। जैसे कि हमन देखथन कि हमार मनखे मन है कि घर में ब्रश करत है और शेविंग करत है, बर्तन धोवत है, ओमे पानी ला खुला छोड़ देते, नल ला छोड़ दे हवे तो पानी बहावत है। संगे संग अक्सर ये देखे में आते कि हमार घर में जो पाइप मन लगे रहते वो पानी रिसत रहते, ओकर मरम्मत नहीं करा पाए, जेकर कारण का है ये सारा जम्मो बात ला देखथन तो इकर ले हमला बचना चाहिए और मरम्मत करवात रहना चाहिए।
0: और हाँ समित, संगे संग हमन ला चाहिए कि बारिश के मौसम में अब जैसे देखा भी बरसात होवत है तो पानी की कोनो कमी तो अभी के बेरा में नहीं है, तो ये पानी ला हम संरक्षित करके कतकोन उपाय है जेखर ले पानी ला संरक्षित कर सकथन, उमा एक ठन आथे वाटर हार्वेस्टिंग। तो पानी ला वाटर हार्वेस्टिंग अपना के इकट्ठा करन जेखर ले हमार भुइया के पानी के स्तर में सुधार हो सके।
1: हाँ रुक्मणी, एकर अलावा खेती किसानी में या बगीचा में पानी दे बर हमला फव्वारा टपक सिंचाई के प्रयोग करना चाहिए, जेकर ले पानी बच सके। माटी के जांच करात रहना चाहिए, जेकर ले हमला ये पता चल सके कि हमला कतका पानी के आवश्यकता हवे, है ना, कौन सा फसल में हमला कतिक पानी लगत है, ओकर अनुसार ही हमला सिंचाई करना चाहिए। ज्यादा ले ज्यादा जैविक खेती ला अपनाना चाहिए, जेकर ले माटी के धारण करे के क्षमता बढ़ जाते। एकर अलावा हमला मौसम के अनुसार पानी के खपत ला नियंत्रित करने वाला सेंसर के उपयोग घलो करना चाहिए। संगे संग घर के वाश बेसिन और एसी ले निकलने वाला पानी ला साफ करके बगीचा में उपयोग कर सकथन हमन।
0: समित, संगे संग हमन घर में जोन भी सब्जी भाजी फल ला धोथन वो पानी के उपयोग का करथन कि ओला घलो अपन पेड़ पौधा में डाल सकथन। हालांकि ये बेरा में ये सब करे की जरूरत नहीं है, ये बात होते गर्मी के। और अभी का हमन पानी जल संरक्षण के बात करें तो जो डबरी बना सकथन खेत मा और एक सुरक्षित सुरक्षित तरीका ले हम डबरी बना के उमा पानी ला सकेल सकथन।
1: हाँ रुक्मणि, हमला एक बात तो नहीं भूलना चाहिए कि आज जो जल के संकट पैदा हुआ जाते एकर समाधान जल के संरक्षण ले ही आवे, है ना। हमन हमेशा एक बात ला सुनतन कि जल ही जीवन है, जल के बिना हमन अपन सुनहरा कल के कल्पना नहीं कर सकन। हमला जीवन के जम्मो काम ला करे बर जल के जरूरत होते, ये हमार पृथ्वी के बहुमूल्य संसाधन हवे जो कि जम्मो सजीव मन के जिए के आधार हवे।
0: समित, और जैसे कि हमन हा बात करत रहन कि सही मायने में 1% पानी ही पिए भर सही हवे, तो वैसे तो हमार धरती के लगभग 3/4 भाग जल घिरे हवे, 97% पानी खारा हवे, पिए योग्य नहीं है।
1: हाँ रुक्मणी, और देख आज जो शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के तेज गति है ना, संगे संग बढ़त हुए प्रदूषण ले जनसंख्या में लगातार वृद्धि के साथ हर मन के बर पानी उपलब्ध कराना एक बड़ चुनौती हवे। हर साल गर्मी बढ़त जाते, कई हिस्सा में तो विकराल रूप ले ले आते, तो एकर पर हमन ये सोचतन कि बस जैसे तैसे ये सीजन निकल जाए फिर बारिश आते ये समस्या दूर हो जाए, ये सोचकर हमन जल के संरक्षण को सही रूप ले ध्यान नहीं दे पावन।
0: और समित, जबकि देखे जाए तो हमार आबादी के एक बहुत बड़े भाग ही पिए योग्य पानी पर वर्षा के जल में आश्रित हवे, जेकर कारण हमला एक एकर महत्ता ल समझना चाहिए और एकर उपयोग प्रकृति के अमूल्य धरोहर समझ के सावधानी ले करना चाहिए। आने वाला बेरा में जम्मो झनला पर्याप्त पानी मिल सके एकर पर आज ही ले जल संरक्षण के उद्यम हमला अपनाना चाहिए।
1: हाँ रुक्मणी, अगर हमन आज जागरूक नहीं होबो तो अवैया बेरा में एक महासंकट बन जाही। आज के बेरा में हमन ला ये दो पंक्ति ध्यान में रखना चाहिए कि जल के महत्ता ला समझो, जल बिन सब जग सुन, जल ना रही त जीवन ना रही, जेकर ले धरती बन जाही शून्य, धरती बन जाही शून्य।

0: हम है भारत के किसान हम
1: किसान हम
2: किसान हम।
3: संगवारियों, आप मन के जो शंका रही थे ओला हमन अपन कार्यक्रम के माध्यम ले दूर करे के प्रयास करथन। क्रम होते आज की सलाह, आज इमे आप मन पर लेकर आए हन खेती मा आधुनिक कृषि यंत्र के उपयोग, ये विषय मा जानकारी। जानकारी देवत है हितेंद्र कुमार पनगनिया, कृषि अभियंता रायपुर, और आपसन गोड बात करे आवे रुक्मणी शुक्ला।
4: संगी हो, बदलत बेरा के हिसाब ले जम्मो जिनिस में बदलाव होते और बदलाव प्रकृति के नियम हरे। हमन ला आगु बढ़ना है तो समय के साथ चलना चाहिए। पुराना अनुभव संग नवा सोच विचार ला अपनाबो तो जम्मो क्षेत्र में सफलता पावो। बात करें खेती किसानी के काम होता के तो धीरे धीरे ये क्षेत्र में हमन आगु बढ़े हैं। इमें सबले ज्यादा योगदान है ता वो हरे खेती किसानी के काम बूता में नवा नवा आधुनिक यंत्र के उपयोग। नवा नवा यंत्र के उपयोग करके हम कमती बेरा में ज्यादा ले ज्यादा काम सकेल सकते हैं, जेकर ले समय और श्रम दोनों के बचत होते। यही मन यही विषय में गोड बात करबो हमारे बीच उपस्थित कृषि अभियंता रायपुर हितेंद्र कुमार परगनिया जी से। परगनिया जी, आपके हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। राम राम।
5: राम राम मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद मोला कार्यक्रम में बुलाया।
4: परगनिया जी, आधुनिक कृषि यंत्र का होते?
5: आधुनिक कृषि यंत्र के बारे में बताना चाहूँ कि वो उन्नत मशीन और तकनीकी यंत्र
4: जी,
5: जेकर उपयोग से किसानी के काम ला आसान कर सकन, सरल कर सकन, थोड़ा जल्दी कर सकन और किसानी के पूरा कार्य ला ज्यादा उपजाऊ बना सकन
4: जी,
5: ये ही मनला हमन कृषि उन्नत कृषि यंत्र के थन।
4: खेती किसानी के काम बूता में उपयोग हुई प्रमुख कृषि यंत्र कौन कौन से हवे?
5: खेती के कार्यशाला के हिसाब से प्रत्येक कार्य पर अलग अलग कृषि यंत्र हमन उपयोग कर थन। आज के डेट आज के तारीख में जिन सबसे ज्यादा उपयोग में आते तेमे ट्रैक्टर हेबे, रोटावेटर हे, नांगर हेबे, बोआई बर सीड ड्रिल हेबे, कटाई बर रीपर हेबे, कंबाइन हार्वेस्टर हे, मुख्य कृषि उपकरण है जिन प्राय सभी जगह देखेल जाते
4: जी। सर, ये कृषि यंत्र मन के का उपयोगिता होते?
5: ते कृषि यंत्र के अलग अलग उपयोगिता है। तो अगर यंत्र ला एज अ जनरल प्रत्येक कृषि यंत्र के अलग अलग अपन अपन उपयोगिता रही थे। तो जैसे हम अगर बात करन यंत्र के तो एक ही काम रही थे कि निर्धारित जिन हम ओला सेट कर देन उही निर्धारित तरीका से वो काम करते। तो जैसे उमें हमन हो गए सीट के बोआई तो मात्रल हमन उमें नियंत्रण कर सकथन। खाद के छिड़काव है तो खाद के छिड़काव में जतका क्वांटिटी जाना चाहिए, जतका मात्रा जाना चाहिए वो नियंत्रण कर सकथन। एकर से उत्पादन और उत्पादकता दोनों भरते किसानी कार्य।
4: फसल में कीड़ा बीमारी के संगे संग एक ठन और समस्या देखे माथे वो है खरपतवार। तो खरपतवार नियंत्रण में कौन से कृषि यंत्र के उपयोग होते?
5: खेती किसानी में जिन आवंछित घास जिन हमन खरपतवार की थन ओला हटाए बर मुख्य जिन कृषि यंत्र है तेनला वीडर की थन। तो वीडर हा मशीन अगर पेट्रोल से चलते तो वाला पावर वीडर की थन, हाथ से चलते थे दो तीन और अलग अलग नाम है बे, कोनो वीडर, पैडी वीडर। एकर काम है बे कि मिट्टी के गुड़ाई करते और वाला जिन खरपतवार है तेला जड़ से उखाड़ के मिट्टी में पलटा के खत्म करते।
4: सर, ये फसल की कौन अवस्था में ये कृषि यंत्र के उपयोग करना चाहिए?
5: जैसे मैं पहली कह रहे हूँ कि प्रत्येक अवस्था पर अलग अलग कृषि यंत्र है। तो कृषि यंत्र के उपयोग खेती किसानी में खेत की तैयारी से लेकर बोआई देखभाल और भंडारण तक है। तो हर चरण के अलग अलग कृषि यंत्र है, मैं बता देता हूँ। जैसे खेत की तैयारी बर जोताई बर हमन नांगर के उपयोग करथन, तहाल रोटावेटर चलाथन। अब बोआई बारी आते वो खेत तैयार हो एक बाद बोआई बर हमन हा सिड्रिल से बोआई करथन। कोनो में रोपा लगते तो आजकल पेडी ट्रांसप्लांटर आ गए है जिन सीधा थरहाला खेत में रोप देते। ओकर बाद अब फसल लग गए ओकर बाद ओकर देखभाल करना है। तो देखभाल करे बर का हो गए हमार मन करा स्प्रेयर है बे जेमे हमन निंदा नाशक औ का की थे पेस्टिसाइड एकर स्प्रे करथन। अब ओकर बाद हो गए सिंचाई के अंतिम चरण में तब पंप्स आ गए है बे, अलग अलग तरीका के सबमर्सिबल है बे और ये हवे। ओकर बाद कटाई में हमन रीपर के उपयोग करथन, मिंजाइम थ्रेशर के उपयोग करते हैं। आजकल सब जन सबसे ज्यादा जिन चलत है तेन हो गए कंबाइन हार्वेस्टर जिनमें सीधा काट के मींज के घर में पहुंचा देते हैं।
4: सर, कहो हमारे किसान भाई मन कृषि यंत्र बिसाना चाहते खरीदना चाहते तो सरकार डहले कोनो प्रकार के आर्थिक मदद करे जाते?
5: हाँ बिल्कुल मैडम, एकर बर केंद्र सरकार हा एक ठन योजना चलाए हबे। वो बहुत पहली से चला थे 2014-15 से, सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन नाम है बे एकर। एकर अलग अलग घटक

0: में अलग अलग है बैल।
1: जी।
0: तो जिन किसान अगर एक एक थन कृषि यंत्र लेना चाहते हैं तो इन घटक क्रमांक एक के माध्यम से वो रोटावेटर, कल्टीवेटर, नांगर, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर इला क्रय कर सकते हैं। इमें का है, आप मतलब एक यंत्र लेना है, इमें जिन शासन के द्वारा मदद की जाते हैं अनुदान के रूप में करे जाते, अनुदान 40% रीते सामान्य वर्ग पर, महिला एससी एसटी वर्ग पर 50% के
1: जी
0: अनुदान मिलते हैं जी।
1: बोल दीजिए
0: और
1: पूरा।
0: एकर जिन घटक क्रमांक दो है ते में का होते पूरा पैकेज किसान लेना चाहते, जिन कृषि उद्यमी है, हमर जिन कृषि स्नातक हावे किसान, जिन मन कृषि से पढ़े हावे, तेकर मन भर सरकार हा कंप्लीट पैकेज में, मतलब आप 15 लाख के मशीन खरीदो जिनमें खेत के तैयारी से लेके कटाई गहाई तक के यंत्र थे, तो उनमें 40% अनुदान मिली, अधिकतम 6 लाख।
1: जी।
0: इमें और एक ठन है जिनमें 35 लाख के अगर आप मशीन खरीदता हो तो उनमें 14 लाख या 40% जिन भी कम हुई तेन ला शासन हा अनुदान के रूप में देते। एक ठन ऊ है का तीसरा जिनमें हमन हा शासन हा समूह ल प्रोत्साहित करते कि वो समूह सामने आवे और खेती किसानी के काम में यांत्रिकीकरण ला बढ़ावा देवे। ये तीसरा जिन घटक क्रमांक है तेमें 80% अनुदान भी थे, उनमें दो ठन है 15 लाख में 12 लाख के छूट मिलते बता दे रहा हूँ। तो कंपोनेंट घटक क्रमांक तीन में जिन समूह हा 15 लाख के मशीन लेते ओला हमन की थन फार्म मशीनरी बैंक, वो मशीन जत का लेते तो उनमें 12 लाख अनुदान राशि के रूप में शासन ओला देते, तो 12 लाख ओकर ब्याज ओला नहीं पटाए लगे, खाली ओला 15 12 लाख के ऊपर जतका भी होते तेकर पैसा ओला पटाए लगते बैंक। मशीनरी बैंक है बे ते में आप एक मशीन नहीं लो, वो मशीन के खेत के जोताई से लेके कटाई गहाई तक के आप यंत्र लो तो कम
1: जी।
0: से कम 5 समान कृषि उपकरण आप ले लगते, ताकि जिन समूह है तेनो पूरा साल भर कुछ ना कुछ काम करत रहा है।
1: जी।
0: तो वो 15 लाख के जैसे वो सामान खरीदते 15 लाख के, तो अगर 80% कतका हो गए 12 लाख, तो 12 लाख के अनुदान शासन हवाला देते। अब ये जो कंपोनेंट दो है और कंपोनेंट तीन है, ये बैंक कैंडिडेट बैंक क्रेडिट लिंक सब्सिडी के माध्यम से अनुदान होते। इनमें बैंक से आप मतलब लोन लेके 15 लाख के लोन लेके आप लग क्रय करे लगी तो बैंक मतलब शासन हा ओकर बाद 12 लाख के अनुदान बैंक ला दी, तो 12 लाख जिन हो गए ओला ना आपला पटाना है ना ओकर ब्याज ला आपला पटाना है। 12 लाख के ऊपर जत का पैसा आपके पास बच गए ओला ओकर ब्याज ला आपला 4 साल।
1: हाँ, और अच्छा, ये सबके जानकारी हमारे किसान भाई मन तो ऐसे नहीं हुए, तो उमन ले जानकारी कैसे मिलते कि या कहाँ से मिली कि हमला ये सुविधा दिवाए जाते, उमन कहाँ जाके सब जानकारी ले सकते हैं।
0: मैम प्रत्येक जिला में हमार उप संचालक कृषि कार्यालय है, वहाँ आपला फार्म मिल जाही। रायपुर संभाग पर रायपुर और दुर्ग संभाग के फार्म हाँ हमार कृषि यंत्री कार्यालय मिलते, और कृषि यंत्री कार्यालय आज के तारीख में कृषि विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के परिसर में हब है,
1: जी।
0: वहाँ आके आप फार्म ले सकता हो भर सकता हो। फार्म भरे के बाद जैसे आपके लक्ष्य प्राप्त होते हैं मल्ला शासन के ओकर हिसाब से आप मल्ला अनुदान के भुगतान के मतलब अनुदान पर स्वीकृत किए जाके।
1: हाँ सर, खेत मनला आधुनिक और लाभदायक बनाए में आधुनिक कृषि यंत्र मन के का भूमिका होती।
0: अब एकर बारे में थोड़ा एग्जाम्पल देख बोलूं। पहली एक आदमी एक ठन नांगर ल लेके एक दिन में एक एकड़ ला बोअत रही से, आज के डेट में आज के दिनांक में एक किसान एक ठन ट्रैक्टर लेके 15 20 25 एकड़ ला बो डलते।
1: जी।
0: तो आप ये देखो कि समय के साथ कृषि यंत्र में भी परिवर्तन होत जाते, ओकर दक्षता बढ़ाते, कृषि यंत्र के दक्षता बढ़ाते तो हमारे किसान मन के दक्षता बढ़ाते।
1: जी।
0: तो अगर दक्षता बढ़ी मैडम तो उत्पादन उत्पादकता बढ़ी और किसान प्रगतिशील।
1: सर, आधुनिक कृषि यंत्र कोनो खरीदना चाहते, फिर मन में एक ठन शंका बने रही थे कि जोन भी हम कृषि यंत्र खरीदत हन बिसावत हन, ता ये का हमार रवि फसल बर और खरीफ फसल बर दोनों बर उपयोगी हो ही का, ता इसने कोनो बात तो नहीं है कि रवि बर अलग या खरीफ फसल बर अलग होते।
0: मैम बहुत अच्छा प्रश्न करे हो, आपके माध्यम से ये भ्रांति में दूर करना चाहूँ किसान भाई मन के, कि उमन जैसे अगर समझाते कि मैं खरीफ में धान बोआ था और रबी में चना बोहूं तो मोला दोनों बार अलग अलग कृषि यंत्र ले लगी, तो ऐसे कुछ नहीं है। एक छोटे से एडजस्टमेंट रहते जिन एडजस्टमेंट ला आप निकालू खरीफ में जिनमें उपयोग कर रहा था, जैसे थ्रेसर हेबे त धान के जाली अलग हो जाते, गेहूं के जाली अलग हो जाते, चना के जाली अलग हो जाते।

0: थे, छोटे सेटलमेंट एडजस्टमेंट रही थे, वो जालिल निकालना रही थे नट बोल के माध्यम से, वो तो थ्रेशर हा सब फसल पर काम आते। वो इसने ही आपके सीड ड्रिल हावे, सीड ड्रिल में बोनी पर आपला जैसे आप धान बोआ था तो धान के छेदा छोटी रहते थे जिसमें से धान गिरते बीज गिरते, वही चना पर थोड़े बड़े हो जाते, तो वो एडजस्टमेंट रहते माइनर मशीन वही रहते ओकर, जिन जहाँ से बीज निकलते गिरते ओला चेंज करे लगते, तो वही मशीन हाँ खरीफ बर भी काम करते और रबी बर भी काम करते।
1: छोटे किसान के बात करबो तो जेकर पास 1 ले 2 एकड़ जमीन है, वो मन कौन कौन से कृषि यंत्र के उपयोग कर सकते हैं?
0: अब जिन छोटे किसान है बे जिन 1 और 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ में खेती करते तेलना ट्रैक्टर लेके सलाह तो नहीं दे सकन, काबर कि वो महंगा रही थे और आप उतका कन के खेत नहीं है, तो पावर टिलर होकर मैं बर बहुत उपयोगी कृषि यंत्र है, उसमें अटैचमेंट आते जिन काम ट्रैक्टर करते वही काम पावर टिलर करते सेम काम, तो पावर टिलर होकर मन पर बहुत उपयुक्त कृषि उपकरण हर है।
1: सर, आजकल खेती किसानी में ड्रोन के उपयोगिता के बहुत बात सुने में आते हैं, तो एकर बारे में कुछ जानकारी देते हो?
0: मैडम ये है ड्रोन है आज के तारीख में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नमो ड्रोन दीदी योजना चलत है वह जिला पंचायत के माध्यम से लागू करे गए है पंचायत विभाग के द्वारा, हमारे विभाग में भी कृषि यंत्र कृषि ड्रोन सेवा केंद्र के योजना हमारे शासन द्वारा चलाए जाते हैं हमारे विभाग द्वारा। ये तो ड्रोन के बारे में बताऊं मैडम, ये में जिन स्प्रे होते छिड़काव होते, अब छिड़काव हमन हा आज के डेट में नैनो यूरिया नैनो डीएपी की बात करथन तो एकर छिड़काव हो गए, हमन हा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के बात करथन जिन कीटाणु एहे मन ला मारे के, तो एकरो छिड़काव हमन ड्रोन के माध्यम से कर सकथन।
1: जी
0: ड्रोन के अब आपला दक्षता में बताता हूँ, जेन स्प्रे ला हमार एक आदमी पावर स्प्रेयर
1: जी
0: लेके 20 से 25 मिनट में करते, ओला ड्रोन हा 5 मिनट में कर देते,
1: जी
0: तो आप ये समझ लीजिए कि एक ड्रोन के आए से दक्षता जिन छिड़काव में 4 गुना हो गए हाँ बे।
1: जी
0: तो शासन द्वारा हमर जिन कृषि ड्रोन सेवा केंद्र में है 40% के अनुदान किसान ला प्रदाय करता हमर।
1: असर एक ठन आखिरी सवाल है, कृषि यंत्र मन के रख रखाव के बात करन ता का सावधानी रखना चाहिए जेखर ले हमारे कृषि यंत्र लंबे समय तक में रहे?
0: एकदम बढ़िया प्रश्न मैडम, मैं कृषि यंत्र की बात करन तो सबले पहली ट्रैक्टर के बात करथन। जब कोई किसान हाँ ट्रैक्टर खरीदते तो वो शोरूम ले खरीदते तो वाला एक ठन पूरा शेड्यूल मिलते कि पहला सर्विसिंग कतका घंटम करना है, दूसरा कतका घंटम करना है, तीसरा कतका घंटम करना है, ये तो हो गए शोरूम के बाद। ओकर अतिरिक्त किसान भाई मल्ला एक सावधानी और बरतना है, जब भी वो ट्रैक्टर ला चालू करते खेत में ले जाते ओकर पहली ओला प्री स्टार्टिंग चेकअप्स की थन हमन ओला थोड़ा इंग्लिश टर्म हो गए प्री स्टार्ट चेकअप में ओला काला काला देखना है चालू करे पहली, ओला देखना है कि गेज है जिन हाइड्रोलिक गेज है ते में ऑयल पूरा है कि नहीं है, इंजन ऑयल के जिन गेज रही थे ते में नाप के देखना है कि ऑयल सही लेवल में है कि नहीं है, रेडिएटर में जिन कूलेंट है बे या पानी है बे तेन हाबे कि नहीं है सही लेवल में, ओकर बाद टायर में हवा है कि नहीं है, ये बेसिक चीजें अगर ये वो ध्यान देते तो ओकर ट्रैक्टर के जिन उपयोगिता है उपयोगी जीवन है तेन डेफिनेटली 10 से 20% बढ़ते हैं मैडम।
1: जी
0: ये ट्रैक्टर की बात हो गए, अब ये तो प्री स्टार्टअप चेकअप हो गए, अब जब ते ट्रैक्टर ला चला काबे तब फिर तो ला ये देखना है कि फिल्टर में कुछ गंदगी है तेन ला साफ करना है, एयर फिल्टर में डीजल फिल्टर में, ओकर बाद फिर तोला एक बार गेज चेक करना है, ओकर बाद गाड़ी खड़ा करना है,
1: जी
0: तो ये बेसिक मतलब ये बुनियादी चीज ओला करना है। ओकर बाद अलग रोटावेटर हो गए, तो रोटावेटर हमारे छत्तीसगढ़ में आज खरीफ सीजन में मतई काम आते, तो एक बार अगर रोटावेटर से आप मतई कर डले हो मतई काम खत्म हो गए तो ओला बकायदा धो के ऑयल और ग्रीसिंग करके अपन जिन सेड वेड बना है या जिन जगह उमल्ला रखना है छायादार में उनमें
1: जी
0: रखना है। सीड ड्रिल के उपयोग करता है हमन सीड ड्रिल सीड बोए बर, आजकल सीड कम फर्टी ड्रिल आते जिनमें बीज के साथ साथ खाद भी जाते, तो खाद जिन काम करते मैडम वो सबसे चीज का है वे वो हद जंग बहुत जल्दी पकड़ते, तो जब आप सीड ड्रिल के उपयोग कर डले ओकर बाद ओला बकायदा अच्छा से धो के ऑयल लगा के ओला रखना है तो ओकर लाइफ उबड़ते। तो ये सावधानी किसान भाई मन अगर बरत थे तो ओकर जिन कृषि यंत्र उपकरण है तेकर उपयोगी लाइफ कम से कम 10% बढ़ता।
1: सर हमारे बीच आके जम्मू सवाल के बने फरियाद

0: के जवाब दे खातिर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद
1: मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मोला यहाँ बुलाए बर,
0: जी
1: बहुत बहुत
0: सर।
1: धन्यवाद।
0: अभी सुने न, आज की सलाहक्रम में खेती में आधुनिक कृषि यंत्र के उपयोग ये विषय में जानकारी देवत रहिन हितेंद्र कुमार परगनिया कृषि अभियंता रायपुर ऐखर ले गोट बात करत रहिन।
2: रुक्मणी शुक्ला है, बेरा है कृषक प्रश्न मंच के। हमार आज के प्रश्न है, खरपतवार नियंत्रण बर कौन से यंत्र के उपयोग करे जाते। प्रश्न एक बार फिर सुन लो, खरपतवार नियंत्रण बर कौन से यंत्र के उपयोग करे जाते।
0: संगवारी मन अब बता देते हैं पाछू हफ्ता पूछे प्रश्न ओखर सही जवाब। पाछू हफ्ता हमन प्रश्न पूछ रहे हैं उद्यान की फसल पर स्थान चयन करत बेरा का क्या ध्यान देना चाहिए। एकर सही जवाब है समतल जगह होना चाहिए, पर्याप्त धूप और कीट प्रकोप ले बचाव। सही जवाब भेजिए कौन है समित।
2: सही जवाब देवैया हमार संगवारी मन के नाम है देवरी भाटापारा ले मुकेश कुमार रजक, युवान रजक, हाव्या रजक, तन्नू रजक, ग्राम नागर कोहरा ले झग्गा राम साहू, जामुन देवी साहू, राजू लल्ला, प्रांजल समीक्षा बेबी आराध्या साहू, गांव परसाटोला जिला अंबागढ़ चौकी ले ओम प्रकाश मसिया, सुलोचनी मसिया, खुमेंद्र मसिया, ग्राम बठेना ले बलकरण वर्मा, अंजनी वर्मा, ज्योति वर्मा, पार्थ कश्यप, राजेंद्र मनहरण वर्मा, गर्रापार बांदा बाजार ले गंगाराम साहू, सुलोचना साहू, मानवेंद्र साहू, राकेश साहू, संबलपुर जिला कांकेर ले फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, मदनपुर कवर्धा ले श्रवण कुमार साहू, योगेश्वर साहू, राहुल साहू, नवागढ़ कटाई ले नारायण प्रसाद वर्मा, सीमा वर्मा, शारदा वर्मा, डोंगरगांव ले राष्ट्रपाल गजबीए, तन्मय गजबीए, राधिका गजबीए। सही जवाब देवाई जम्मो संगवारी मल्ला गाढ़ा गाढ़ा बधाई। रुक्मणी गोड बात तो हो गए, और बेरा है गीत संगीत के, तो सुनथन एक सुग्गर गीत जे में स्वर है पंचराम मिर्झा और साथी मन।

0: अभी सुने ने सुघर गीज लगाए रहन पंचरा मिर्जाओ साथी मन।
1: ये री से आज की किसान वाणी प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। अब हे जाए के बेरा तब बता दे थन काली के कार्यक्रम, तब रुकमणी बता दे काली के कार्यक्रम।
0: जाले पहले बता दे थन काली।
1: देख भाई रुकमणी, ऐसे है कि आज माटी के उर्वरक शक्ति ला बचाए खातिर हमन ला कोनो कसर नहीं छोड़ना चाहिए। आज के बेरा में हमन देखथन कि जैसे कि प्रदूषण के बात करत रहन, तो उनमें एक नाम आते प्लास्टिक के, है ना। प्लास्टिक जो एक ऐसे चीज है जो कि हमर मन के खेत ला धीरे धीरे मारत जावत है ना। अब देख ऐसे है कि प्लास्टिक अगर एक बार खेत में आ जाते तो वो 500 साल तक नहीं गले। प्लास्टिक प्रदूषण के प्रभाव ले माटी खराब होना, एकर ले हमार माटी मा पानी और हवा नीचे कोती जाए ले रोकते, जेकर ले जड़ सड़े बर लग जाते और जो केचुआ रहते ना वह मर जाते।
0: और समित देख, जोन प्लास्टिक है ना, एकर ले पर्यावरण तो प्रदूषित होवे करते, ये हमारे पशुधन भर तको बहुत नुकसान के होते हैं। कहूँ हमारे पशुधन खा लेते तो ओकर मन के स्वास्थ्य में एकर बहुत दुष्प्रभाव पड़ते, तो जरूरी है कि ये सब के उपयोग हम कमती से कमती करें। समित, अब देख, जब पर्यावरण के बात करते ना, तो पर्यावरण के स्वस्थ रहे में सबसे ज्यादा महत्व रखते था जब हम खेती किसानी के काम उतमा जैविक खाद के उपयोग करते हैं, एकर ले तको हमारे पर्यावरण सुरक्षित रहते। अब पेड़ पौधा ज्यादा से ज्यादा लगाए के विशेषज्ञ मन सलाह देते, तो संगवारी हो, ज्यादा ले ज्यादा पेड़ पौधा लगावन। खेती किसानी के काम बूता में जब खाद के बाद आते तो हम जैविक खाद के उपयोग करने में, वर्मी कंपोस्ट खाद होते, गोबर के खाद हो गए, ये सब के ज्यादा ले ज्यादा उपयोग करन और अपन पर्यावरण ला प्रदूषित होले बचावन।
1: तो रुक्मणी अब वह थे जाए के बेरा, तो जम्मो संगवारी मल्ला समीत
0: और रुक्मणी के
1: राम
0: राम राम।
1: राम।

0: किसान साथियों का।
1: आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से हम रिले कर रहे थे किसान वाणी एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। श्रोताओं के पत्रों के जवाब आइए सुनते हैं कार्यक्रम चिट्ठी मिली में। प्रस्तुत करता है नीमी चंद साहू और महावीर बरगाह।

0: पत्रोत्तर के साप्ताहिक कार्यक्रम चिट्ठी मिली में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन। स्वीकार कीजिए महावीर वर्गा
1: और नेमीचंद का नमस्कार।
0: नेमीचंद जी, कागज पर लिखे कुछ शब्द दिल की गहराइयों पर उतर आते हैं, दूर बैठे अपने एक चिट्ठी के बहाने पास आ जाते हैं।
1: बिल्कुल जी।
0: और देखिए, हमारे श्रोताओं के पत्र हम तक पहुंच चुके हैं। कुछ बारिश से भीगे हुए हैं, कुछ चाशनी में डूबे हुए हैं, त्योहार से पगे हुए हैं, शुभकामनाओं से सराबोर हैं।
1: जी जी, महावीर जी, एक पत्र हमें रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छा रंगीन राखी बना करके भेजा है।
0: बहुत ही सुंदर।
1: जी जी, बहुत सुंदर राखी बना के भेजे हैं। फूल की पंखुड़ी को सजाए हैं कोरे कागज पर और उसमें लाल रंग, नीले रंग और चमकीले रंगों से सजा करके राखी बना के भेजे हैं और लिखे हैं, रक्षाबंधन के पावन पर्व पर समस्त श्रोता भाई बहनों, आकाशवाणी परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमें भेजे हैं तेलीपारा बिलासपुर से रज्जन साहू, छन्नूलाल श्रीवास, सुशील देवांगन और एस एन प्रजापति जी ने। आपको भी रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और पत्र के लिए या कहें राखी भेजने के लिए धन्यवाद।
0: बिल्कुल, ये स्नेह का बंधन श्रोताओं का और आकाशवाणी बिलासपुर का हमेशा बना रहता है
1: जी।
0: और मैं अगला मेल पढ़ रहा हूँ
1: जी।
0: और ये भेजने वाले हमारे साथी हैं बनिया पारा थमतरी से
1: जी,
0: रामचंद माखीजा काफिर भाई, सविता माखीजा, बेबी स्वाति, हीरा लाल, दीपक, सुंदर, घनशानी, माही, पूजा, छुटकी, शरद कुमार डोडवानी और उनका परिवार
1: जी।
0: ये हमारे सभी कार्यक्रमों की तारीफ में पत्र भेजे हैं और इसी क्रम में लिखते हैं कि 2 अगस्त को गूंजे स्वर गांव में अच्छा लगा
1: जी।
0: और इसके लिए मदन पांडे जी को बधाई भेज रहे हैं
1: जी।
0: 23 अगस्त रविवार को रजनीगंधा पेश किया ऐश्वर्या ने, इसके लिए उन्होंने बधाई भेजी है
1: जी।
0: आगे लिखते हैं कि 24 अगस्त सोमवार को तुहर गोठ हमर गीत पेश किया महावीर वर्गा ने, खान पान पर चर्चा हुई, इसके लिए बधाई भेज रहे हैं
1: जी।
0: उसी दिन के रजनीगंधा के लिए श्वेता पांडे को बधाई भेज रहे हैं
1: जी।
0: और ये आगे लिखते हैं, साइबर अपराध रोकने के लिए हम लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, उसे भी इन्होंने सराहा है
1: जी।
0: हमारे धमतरी के श्रोता लिखते हैं कि 26 अगस्त ईद ए मिलाद पर्व की बधाई भेज रहे हैं और आगामी पर्व राखी त्योहार के लिए भी बधाई भेज रहे हैं। और साथ ही हेलो आपकी पसंद 26 अगस्त को हमने प्रसारित किया, प्रस्तुत किया पद्मा मणि ने, उसके लिए बधाइयां भेजी हैं
1: जी। महावीर जी, ये हमारे नियमित श्रोता हैं, हमें नियमित पत्रों के माध्यम से हमारे कार्यक्रमों की समीक्षा भेजते रहते हैं। आपने हमें पत्र भेजा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अगला मेल कौन सा है?
1: अगला मेल है महावीर जी, सहसपुर से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुलीचंद साहू, सतीबाई साहू, सत्यम साहू लिखते हैं, आकाशवाणी बिलासपुर के जम्मू कार्यक्रम हा मोला बने लाग थे, छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम के गीत हा बहुत सुहा थे और चिंतन कार्यक्रम में जो ज्ञान वर्धक बात बताते बोला मैं यहाँ जीवन में उतारता हूँ, ऐसे लिखे है। तो आप मन पत्र भेजे हो तेकर खातिर आपला बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और अगला मेल मेरे पास है
1: जी।
0: हम स्वास्थ्य वार्ता रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं
1: जी।
0: और इसी क्रम में 22 अगस्त को हमने डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम अनुप्रसारित किया था, जिसमें बच्चों में होने वाली बीमारियों के कारण, लक्षण और उपचार विषय पर डॉक्टर तन्मय मोतीवाला से श्री रमाशंकर जी की बातचीत हुई थी
1: जी।
0: इसे सराहा है भेजने वाले श्रोता है कुटिया कलादुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, सफल प्रस्तुति के लिए बधाई प्रेषित कर रहे हैं
1: जी।
0: तो इन्हें हम धन्यवाद देते हैं इतने ध्यान से कार्यक्रम सुनने के लिए और सराहने के लिए
1: जी। सिंगारबाड़ी घुटकू से भगत राम पटेल, किशन सोनम, मानवी पटेल लिखते हैं, आकाशवाणी बिलासपुर से प्रसारित सभी कार्यक्रम का अपना एक विशेष स्थान है, लेकिन चिट्ठी मिले एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से सप्ताह भर की समीक्षा हम तक बहुत ही विस्तार में पहुंचाया जाता है। और लिखते हैं, आजकल हमारे पत्र को कार्यक्रम में स्थान नहीं मिल रहा है, आप मन हमन ला रक्षाबंधन के और भोजली विसर्जन पर्व के घलो बधाई भेजे हो, आप मन ला घलो पत्र खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
0: साथ ही साथ इनकी शिकायत भी दूर हो गई है कि इन्होंने लिखा है कि पत्र शामिल नहीं हो पाते हैं, तो
1: जी
0: शामिल भी हो गया है
1: जी।
0: अगला
1: जी
0: मेल कौन सा है?
1: अगला मेल है महावीर जी, 19 और 20 अगस्त को इस्पात नगरी भिलाई में अखिल भारतीय रेडियो श्रोता सम्मेलन का भव्य आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य स्तर पर किया गया। यह आयोजन रेडियो से जुड़े श्रोताओं, प्रस्तुत एवं रेडियो प्रेमियों ने उत्साह पूर्वक अपनी भागीदारी सुनिश्चित की और इस आयोजन में देश भर के कुल 18 राज्यों से रेडियो श्रोता शामिल हुए। वाकई महावीर जी, ये एक अनूठा आयोजन, हर साल हमारे छत्तीसगढ़ के श्रोता और देश भर में फैले श्रोता एक मंच प्रदान करते हैं जिसके माध्यम से आकाशवाणी परिवार एक मंच पर शामिल होते हैं, ऐसा संयोग हमारे इस्पात नगरी भिलाई में आयोजन हुआ।
0: बिल्कुल सही लिखा है हमारे सिंह रोल जी ने, नारायणी सिंह रोल जी।

0: जी
1: और बगैर श्रोताओं के रेडियो अधूरा है।
0: जी जी
1: हमारे यही श्रोता आगे लिखते हैं
0: जी
1: कि 27 अगस्त गुरुवार को
0: जी
1: माटी के स्वर अंतरा चक्रवर्ती ने प्रस्तुत किया
0: जी,
1: इसके लिए बहुत बधाई प्रेषित कर रहे हैं
0: जी।
1: और साथ ही इनकी एक शिकायत भी है कि सिर्फ 5 पत्रों को स्थान दिया गया, ऐसा क्यों है
0: जी,
1: ये क्या है, हम थोड़े से नाराज हैं, ऐसा लिखते हैं।
0: सिंगरौल जी, आज प्रसारण में कुछ तकनीकी समस्याएं थी, इस कारण 5 पत्र ही शामिल किया जा सका, इसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। अगले कार्यक्रम में जरूर हम अधिक से अधिक श्रोताओं के नाम को शामिल करेंगे।
1: तो इसी तरह प्यार बनाए रहिए, पत्र भेजते रहिए, कार्यक्रम सुनते रहिए। और अगला मेल कौन सा है नवीचंद जी?
0: जी अगला मेल हमें मिला है गांव अलगी डांड जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से जोहित यादव, विपिन, आयुष, अतुल, विभा और फूल जी यादव का। आप लिखते हैं, आकाशवाणी रायपुर के सभी कार्यक्रम हमें बहुत अच्छे लगते हैं। 22 अगस्त का रजनीगंधा कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, जो बंधन शीर्षक पर केंद्रित था। बेहतरीन प्रस्तुति के लिए रत्ना जी को बधाई प्रेषित किए हैं। 24 अगस्त का अमराई कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, जिसे अपेक्षा जी ने प्रस्तुत किया। और 24 अगस्त का रजनीगंधा कार्यक्रम भी अच्छा लगा, श्वेता जी ने प्रस्तुत किया था, बेहतरीन प्रस्तुत था। साथ ही रक्षाबंधन पर्व की पूरे श्रोताओं और आकाशवाणी परिवार को ढेर सारी बधाइयां प्रेषित कर रहे हैं। आपने हमें पत्र प्रेषित किया, कार्यक्रमों को ध्यान से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगला मेल आया है महावीर जी, 20 अगस्त के चिट्ठी मिली कार्यक्रम और 23 अगस्त के आप मन के गीत प्रस्तुति जीवन भैया और 25 अगस्त के ईमेल करे गीत सुने प्रस्तुति खुशबू दीदी के साथ साथ रक्षाबंधन और कृष्ण जन्माष्टमी के संग प्रस्तुतकर्ता आकाशवाणी परिवार को कोटि कोटि बधाई प्रेषित कर रहे हैं। रोहासी पलारी से डगेश्वर राम साहू, श्याम लाल साहू और साथ ही नेहरू वार्ड भाटापारा से प्रेम लाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत साहू, राघवेंद्र साहू, आकाशवाणी बिलासपुर परिवार को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। आपको भी पत्र के लिए और बधाई प्रेषित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला मेल है महावीर जी, कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश देवांगन, लोकेश देवांगन, आशीष देवांगन, रवि, सनी, रेयांश, कान्हा, आदित्य देवांगन लिखते हैं, 20 अगस्त को ईमेल करे गीत सुने प्रस्तुत किया सुनील चिपड़े जी ने, 20 अगस्त का चिट्ठी मिली कार्यक्रम, 21 अगस्त को सुबह की सभा में आपकी पसंद पेश किया मदन पांडे जी ने, 23 अगस्त को आओ बच्चों को प्रस्तुत किया लिम्टा मनोज जी ने, काफी मधुर प्रस्तुति रहा, हम सब बच्चों को और लिम्टा मनोज जी को लाख लाख बधाई देते हैं, 24 अगस्त को सुबह 10 बजे तुम्हार गोठ अमर गीत प्रस्तुत किया महावीर जी ने, श्रोताओं से खेती किसानी पानी और त्योहारों की बातें हुई, मधुर प्रस्तुति के लिए महावीर जी को बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। महावीर जी मेरे साथ ही हैं, आपका शुभकामना संदेश हम महावीर तक प्रेषित कर रहे हैं। 25 अगस्त का ईमेल प्रस्तुत किया खुशबू जी ने, आज के कार्यक्रम में काफी श्रोताओं के ईमेल शामिल किए गए थे और लिखते हैं महावीर जी, आकाशवाणी बिलासपुर को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सभी अधिकारी, उद्घोषक एवं हमारे इंजीनियर साथी को हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं।
1: तो इन्हें हम बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं कतियापारा के हमारे इन श्रोताओं साथियों का
0: जी। और साथ ही लिखते हैं महावीर जी ये कि मैं मंगलवार को हेलो आपकी पसंद पर 10:50 पर फोन लगा रहा था, पूरा घंटी बजने के बावजूद मेरा फोन नहीं उठाया गया, ऐसा क्यों होता है, फोन एक तो काफी प्रयास के बाद लगता है हमारा फोन नहीं उठाया गया, ये सोचने वाली बात है, अधिकारी गण इस पर अवश्य ध्यान दे। कई बार क्या होता है कि किसी एक श्रोता से जब फोन में बात हो रही होती है तो हम आपका फोन नहीं उठा पाते हैं, या आपका फोन उठाए होंगे और हो सकता है आपका फोन कट गया होगा या आवाज नहीं आई होगी, कई तरह की तकनीकी समस्याएं आती है, तो आप हमसे जुड़े रहिए, हमें अच्छा लगता है जब आप श्रोताओं का फोन आता है, और कभी फोन ना लगे तो इस तरह से आप नाराजगी भी व्यक्त कीजिए, मगर नाराज मत होइए। आपको पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। बिल्कुल, हमारे श्रोताओं की ये हमारे घर की बात जैसे लगता है, उनकी शिकायत भी बहुत अच्छा लगता है। और अगला मेल मैं पढ़ रहा हूँ, और भेजने वाले हमारे साथी हैं मेघापारा चिल्फी से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल, टेकलाल पटेल। ये देखिए तकनीक इतना आगे बढ़ गया है कि हैदराबाद से ये कार्यक्रम हमारे सुनते हैं आकाशवाणी बिलासपुर के
0: जी जी,
1: और वहां से रक्षाबंधन की बधाइयां प्रेषित की हैं। साथ ही 24 अगस्त सोमवार को तुम्हार गोठ हमारे गीत कार्यक्रम में बेहद रोचक बातें और गीत सुनने के लिए बधाई प्रेषित करते
0: हैं जी जी,
1: तो इनको हम धन्यवाद प्रेषित करते हैं। और इसी दीप के कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम में हमारा मेल बहुत कम शामिल होता है, क्या कारण है
0: जी?
1: ये शिकायत है हमारे नांदेड़ इताला महाराष्ट्र के श्रोता की। भेजने वाले साथी हैं

0: शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद, अर्णव जायसवाल, दुर्गेश्वरी जायसवाल, राखी जायसवाल और तृप्ति जायसवाल। तो बताएं कि भाई ईमेल क्यों कम?
1: वैसे हम ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं का नाम शामिल करने की कोशिश करते हैं, कोशिश करेंगे आपका नाम भी अगली बार कार्यक्रम में शामिल हो। और साथ ही महावीर जी, आपने रक्षाबंधन की भी हमें शुभकामनाएं प्रेषित किए हैं, तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और आपने पत्र प्रेषित किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अल्लाह मेल है गुड़गहन के हमारे श्रोता है राम दुलारी प्रजापति, राम शरण प्रजापति, चंद्रेश

0: और आपने पत्र प्रेषित किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अल्लामेल है गुड़धन के हमारे श्रोता है राम दुलारी प्रजापति, रामचरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार, चंद्रकांता और शशिकांता प्रजापति
0: जी।
1: 28 अगस्त रक्षाबंधन पर्व के लिए बधाई प्रेषित कर रहे हैं। 24 अगस्त के लिए तुहर गोट हमर गीत के लिए महावीर वर्गा को बधाई प्रेषित कर रहे हैं। 26 अगस्त के कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद हमेशा की तरह मनमोहक अंदाज में प्रस्तुत किया पद्मामणि ने, उसके लिए बधाई प्रेषित किए हैं
0: जी।
1: और इसी तरह से 27 अगस्त को प्रसारित कार्यक्रम माटी के स्वर अंतरा चक्रवर्ती ने प्रस्तुत किया, इसके लिए बधाई प्रेषित कर रहे हैं। और 20 अगस्त को साप्ताहिक कार्यक्रम चिट्ठी मिली सुनने को मिला, अधिक से अधिक श्रोताओं के पत्रों के लाजवाब उत्तर प्रस्तुत किए, इसके लिए सफल प्रस्तुति के लिए भी बधाई प्रेषित कर रहे हैं
0: जी, जी।
1: तो हम बहुत धन्यवाद प्रेषित कर रहे हैं कि ये चिट्ठी लिखते हैं और कार्यक्रम की समीक्षा भी लिखते हैं।
0: लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी, भाई बहन की प्रेम का पर्व रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित किए हैं। आपको भी पत्र के लिए धन्यवाद और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: ये मेल है चिरमेरी कुरासिया कॉलोनी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे, कालेन्द्री लहरे का
0: जी।
1: ये लिखते हैं कि 17 अगस्त, 18 अगस्त, 20 अगस्त, 23 अगस्त इन सभी दिनों के कार्यक्रम बेहद सुनने लायक और प्रेरणादायक पत्र है
0: जी।
1: और आगे लिखते हैं कि नागपंचमी, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर चर्चा और सावन सोमवार पर चर्चा, मिलाद उन्नवी पर चर्चा, सभी कार्यक्रम को समेटता है आकाशवाणी बिलासपुर। साथ ही सेहत की बात कार्यक्रम को भी सराहा है, महिला सभा की जानकारी, हेलो किसान वाणी और बेरा के गोट, साथ ही युवा जगत, माटी के स्वर और रजनीगंधा, इन सभी कार्यक्रमों को बड़े ध्यान से सुनते हैं, लिखते हैं कि सुनने में बड़ा मजा आता है।
0: महावीर जी, अगला मेल मिला है हमें चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभावती सेन, लक्की विक्की, नानू, रविंद्र, रौनक सेन। सबसे पहले आकाशवाणी बिलासपुर परिवार को रक्षाबंधन पर्व पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। वो लिखते हैं, आकाशवाणी बिलासपुर के कार्यक्रम और यहाँ के सभी उद्घोषक भाई बहनों में हमारे प्राण बसते हैं। हमने पूरे सप्ताह में आपकी पसंद कार्यक्रम, ईमेल करे गीत सुने कार्यक्रम और माटी के स्वर कार्यक्रम को सुने हैं। और साथ ही लिख रहे हैं, महावीर जी के मुखारविंद से तुहर गोट हमर गीत कार्यक्रम और जीवन भाई के सुंदर प्रस्तुति में रविवार को आप मन के गीत कार्यक्रम को सुनकर दिल आनंदित हो गया। अंतरा चक्रवर्ती के रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में शानदार बेहतरीन प्रस्तुति में राखी गीतों पर सजग माटी के स्वर कार्यक्रम को 27 अगस्त के दिन गुरुवार को सुबह सुनकर दिल गदगद हो गया।
1: आज के कार्यक्रम की चर्चा कर रहे
0: जी, जी।
1: इन्हें हम धन्यवाद दे दें।
0: बिल्कुल जी।
1: और रक्षाबंधन की बधाई भेजे हैं हमारे साथी सावनपुर से हैं ऋषि सेन, रितेश सेन
0: जी।
1: ये अगला मेल है
0: जी।
1: रतनपुर सिल्ली निर्धि से नरेंद्र कश्यप, गणेशिया कश्यप, आयुष कश्यप, दीना कश्यप, करण कश्यप, भाटापारा से बचकामल, मोतीलाल यादव, बसंत त्रिगु, विनय ठाकुर, चुआ राम, सूरज वारेकर, नारायण यदु
0: जी।
1: ये लिखते हैं कि 20 अगस्त को चिट्ठी मिली कार्यक्रम बेहद पसंद आया, सुंदर पेशकश के हेतु बधाई। 22 अगस्त के लिए रत्ना जी को बधाई प्रस्तुत कर रहे हैं रजनीगंधा कार्यक्रम के लिए। 24 अगस्त के लिए श्वेता पांडे को बधाई प्रस्तुत कर रहे हैं। साथ ही 25 अगस्त के लिए खुशबू जी को रजनीगंधा की प्रस्तुति के लिए बधाई प्रस्तुत किए हैं
0: जी।
1: और आगे लिखते हैं कि 26 अगस्त को महावीर वर्गा की रजनीगंधा प्रस्तुति अच्छी लगी, 27 अगस्त को अंतरा चक्रवर्ती द्वारा पेश किया गया सदाबहार नगमे अच्छा लगा
0: जी।
1: और रक्षाबंधन पर्व की बधाई का एक और पत्र है भेजने वाले साथी है कोरबी बेलतरा से मोहन सिंह राज, अनीता राज, सुमित राज, सोमो मानस राज। तो हम सभी श्रोताओं को बहुत हृदय से बधाई प्रेषित कर दें, धन्यवाद दे दें कि इन्होंने कार्यक्रम सुना।
0: अगला मेल है रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या, कीर्ति कुमार, डीकेश साहू लिखते हैं, रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हम आकाशवाणी बिलासपुर परिवार और सभी श्रोता भाई बहनों को शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करते हैं। आपको भी रक्षाबंधन पर्व की और हमें पत्र प्रेषित किए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और ये मेल आया है
0: जी,
1: भेजने वाले हमारे साथी हैं तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी विश्वकर्मा, विशाल, मानस, चेतन और गंगा देवी विश्वकर्मा
0: जी।
1: ये भी सप्ताह भर के कार्यक्रम की समीक्षा लिख भेजे हैं और सभी कार्यक्रम को सराहते हुए रक्षाबंधन के पावन पर्व की शुभकामनाएं भी प्रेषित किए हैं। 20 अगस्त के लिए प्रिय मोनाली ठाकरे दीदी और हमारे प्रिय नेमी चंद साहू सर द्वारा प्रस्तुत चिट्ठी मिली कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, लाजवाब प्रस्तुति के लिए बधाइयां प्रेषित किए हैं
0: जी। जी, आपने हमें पत्र भेजा, कार्यक्रमों को बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद।
1: और अब घड़ी की सुई इशारा कर रही है कि आज की मुलाकात बस इतनी
0: जी, जी।
1: तो जाने से पहले हम श्रोताओं को बता दें कि हम सभी पत्रों को शामिल करने का प्रयास जरूर करते हैं, तो कोई भी श्रोता हमारे नाराज न रहे, पत्र भेजते रहें, ईमेल भेजते रहें। और ईमेल भेजने के लिए मैं मेल का पता बता देता हूँ,

0: हमारा ईमेल पता है पत्र ईमेल bsp@gmail.com। और यदि हमारे श्रोता साथी पोस्ट कार्ड पर चिट्ठी भेजते हैं तो उसका भी स्वागत है, और उसके लिए हमारा पता है कार्यक्रम चिट्ठी मिली द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर है 49, आकाशवाणी केंद्र नूतन कॉलोनी बिलासपुर छत्तीसगढ़, पिन कोड है 495006।
1: और हमारे श्रोता यदि हमें पोस्ट कार्ड में या लिफाफा में पत्र प्रेषित करें तो हमें बहुत खुशी होगी। अभी डाक विभाग द्वारा पत्र लिखने को प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है, तो हमें आपके पत्रों का इंतजार रहेगा।
0: तो कार्यक्रम चिट्ठी मिली सुनने वाले सभी श्रोताओं को महावीर बरगाह का
1: और नेमीचंद का नमस्कार।

0: कार्यक्रम चिट्ठी मिली अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुतकर्ता थे निमी चंद साहू और महावीर बरगाह। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
3: मुझे याद सब है जरा।
5: हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:20 हुए हैं। पेश है शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं साइबर क्राइम से जुड़े साइबर जागृति अभियान के इस संदेश को और उसके बाद कुछ अन्य संदेशों को भी।
6: नमस्कार मित्रों, प्रस्तुत है साइबर जागृति अभियान अंतर्गत बिलासपुर पुलिस के आवश्यक सुझाव। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अर्जित आय अर्थात धन में से आवश्यक खर्च के बाद बचत धन को ऐसे स्थान में रखना चाहता है जहां अधिक से अधिक लाभ हो, ब्याज दर अधिक हो। यह स्थान बैंक या पोस्ट ऑफिस अथवा इसी प्रकार की कोई अन्य संस्थाएं हो सकती हैं। इस दिशा में पोस्ट ऑफिस या कोई राष्ट्रीयकृत बैंक सुरक्षित स्थान है, किंतु इसी से मिलती जुलती बहुत सी फर्जी कंपनी या अन्य संस्थाएं भी हैं जो बहुत अधिक ब्याज या बहुत कम समय में जमा धन को 2 गुना या 3 गुना वापस देने या अन्य आवकर्ष

0: प्रलोभन देकर भोले भाले लोगों से अधिक से अधिक धन ऑनलाइन जमा करवाकर रातों रात गायब हो जाते हैं। ऐसे ठगों का कोई स्थायी कार्यालय या पता ठिकाना भी नहीं होता है। आम व्यक्ति अपनी जीवन भर की कमाई गंवा बैठता है। अतः आमजनों से अनुरोध है, किसी भी लालच में आकर ऐसी भूल कभी न करें, क्योंकि इतनी जल्दी कोई भी बैंक 2-3 गुना धन वापस नहीं कर सकता। जनित ने सदैव, बिलासपुर पुलिस, छत्तीसगढ़।
1: कुछ रिश्तों को शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस एक राखी, एक मुस्कान और न्यू दिल्ली स्वीट्स की मिठाइयाँ। जब दीदी अपने हाथों से न्यू दिल्ली स्वीट्स की मिठाई खिलाती है तो लगता है जैसे पूरा बचपन जुबान पर रख दिया हो। इस रक्षाबंधन रिश्तों की सबसे मीठी याद घर ले जाइए।
2: न्यू दिल्ली स्वीट्स, हाउस ऑफ प्योरिटी, लिंक रोड, बिलासपुर।
1: कुछ रिश्तों को शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस एक राखी, एक मुस्कान और न्यू दिल्ली स्वीट्स की मिठाइयाँ। जब दीदी अपने हाथों से न्यू दिल्ली स्वीट्स की मिठाई खिलाती है तो लगता है जैसे पूरा बचपन जुबान पर रख दिया हो। इस रक्षाबंधन रिश्तों की सबसे मीठी याद घर ले जाइए।
2: न्यू दिल्ली स्वीट्स, हाउस ऑफ प्योरिटी, लिंक रोड, बिलासपुर।
3: श्रोताओं, लीजिए पेश है राग श्याम कल्याण, विलंबित लय, झपताल में और तीन ताल में द्रुत लय।

शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे राग श्याम कल्याण, विलंबित लय झपताल में और द्रुत लय तीन ताल में। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। समाचार संध्या और अंग्रेजी समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से कुछ ही देर में अनुप्रसारित करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। नेपाल बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और बचाने के प्रयास तेज। लगभग 1300 लापता लोगों में 290 भारतीय, मृतकों की संख्या 359 हुई। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत परियोजना की आधारशिला रखी। इसे राष्ट्र की आत्मनिर्भरता की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री शुरू की। और भारत तथा मेजबान श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ, भारत ने श्रृंखला 1-0 से जीती। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और सुरक्षा

0: निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली एक जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष से 9-1-1-1-2-3-0-8-8-7-1-8 और 9-1-1-1-2-3-0-8-8-7-1-9 पर संपर्क किया जा सकता है। व्हाट्सएप कॉल और संदेश के लिए 9-1-9-9-6-8-2-9-1-9-8-8 नंबर जारी किया गया है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए 9-7-7-9-8-5-1-3-1-6-8-0-7-9-7-7-9-7-9-8-1-0-7-5-0-0 और 9-7-7-9-8-1-0-3-2-6-1-1-7 नंबर जारी किए हैं। इस बीच नेपाल में कल आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार आज 93 और शव बरामद किए गए। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों के अनुसार 30 देशों के 1300 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक प्रभावित क्षेत्रों से 800 से अधिक लोगों को बचाया गया है। नेपाल में छोछेन खोला और पुरेपु सांगपो नदियों के संगम के पास बनी झील के टूटने का खतरा बढ़ गया है। चीन के जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार झील में अगले 3 दिन में 30 लाख घन मीटर अतिरिक्त पानी पहुंच सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज का सर्वेक्षण किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने नेपाल में आई बाढ़ के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा की।
2: बिहार जल संसाधन विभाग के अनुसार गंडक बैराज पर जलस्तर में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। हालांकि नेपाल के देवघाट क्षेत्र में बारिश के कारण नदी के जलस्तर में मामूली बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि
3: नेपाल में एक तरह से आपदा आया, ये चिंता का विषय है, सबको चिंता भी करनी पड़ेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी लगातार बिहार की स्थिति को भी देख रहे हैं। अब धीरे धीरे चीजें समान हो रही है।
2: किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए बिहार में NDRF की 9 टीमें तैनात की गई हैं, जबकि अतिरिक्त बचाव दल की 4 टीमें तैयार रखी गई हैं। इधर पड़ोसी देश में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने समस्तीपुर रेल मंडल में अलर्ट जारी किया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नेपाल में फंसे उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित निकालने और तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। नेपाल के सांसद और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता विदुषी राणा ने आपदा के समय नेपाल के साथ खड़े रहने और हर संभव मदद का भरोसा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बड़ी मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 20 लाख अमरीकी डॉलर की शुरुआती सहायता दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी

0: राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
1: डिस्कशन आर एक्सपेक्टेड
2: दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। इसपे व्यापार और निवेश, महत्वपूर्ण खनिज, स्वास्थ्य, व्यापार, शिक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क शामिल है। ये बातचीत भारत और उज्बेकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे सांस्कृतिक संबंधों को उजागर करेगी।
0: ताशकंद से प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति सादो जापारोव के निमंत्रण पर 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत विनिर्माण, नवाचार और निर्यात के लिए वैश्विक मंच के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कनाडा के निवेशकों से भारत की बढ़ती क्षमता का लाभ उठाकर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों की जरूरतें पूरी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सुधारों के जरिए हो रहे बदलाव और मजबूत आर्थिक वृद्धि से भारत कनाडा के बीच अधिक मजबूत और निवेश आधारित आर्थिक साझेदारी के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है और रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। रक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत के लिए 472 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना की आधारशिला रखने के बाद ये बात कही। रक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार का वर्ष 2028-29 तक 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य है।
3: आज का यह प्रोजेक्ट आत्मनिर्भरता की एक मजबूत कड़ी है और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया के लीडिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स हब में अपनी मजबूत पहचान बनाए और इस नेशनल मिशन में जबलपुर जैसी फैसिलिटीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी एफिशिएंसी के साथ और सिंसियरिटी के साथ निर्वाह करेंगे।
0: रक्षा मंत्री ने टैंक मरम्मत परियोजना को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि महात्मा गांधी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और मानव कल्याण की प्रेरणा देते हैं। अहमदाबाद में आज गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षा, बहुविषयक अध्ययन और कौशल आधारित विकास को प्राथमिकता दी गई है, जो महात्मा गांधी के विचारों के अनुरूप हैं।
4: पूज्य बापू का विचार था कि स्वाधीनता तब तक अधूरी रहेगी जब तक हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा श्रम और हमारा उद्देश्य राष्ट्रीय न हो, अपना न हो। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति से हम बंधे हुए नहीं हैं तो स्वतंत्रता का कोई मतलब ही नहीं। और मन में स्वराज की ये परिकल्पना को अनेक प्रयोगों से जमीन पर उतारने का काम किया।
0: श्री शाह ने वर्ष 2047 तक सभी क्षेत्रों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर बल दिया। अहमदाबाद में फार्मा इनोवा अवार्ड्स 2026 में श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।
5: रजनी भाई ने शुरुआत की और आज ये परंपरा ढेर सारे लोगों में रिसर्च के फील्ड में काम करने के लिए न केवल अनुकूलता बनी, आर्थिक मदद भी हुई। एक प्रकार से ये अवार्ड उनको एक्नोलेज करता है सोसाइटी में और इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश होने में। ये बहुत बड़ी बात है जो रजनी भाई ने उस जमाने में सोची।
0: गृह मंत्री ने अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल और ओलंपिक खेलों पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
6: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@AIRnewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत की आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने आज खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में खिलाड़ियों को हर स्तर पर सहयोग प्रदान करने के लिए खेल तंत्र विकसित किया जा रहा है।
7: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज पौष

0: यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
1: केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने खेलों को विकसित भारत का हिस्सा बनाने के लिए सभी से सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। खेल दिवस के अवसर पर आज IFLU विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने की पहल से देश अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अधिक पदक जीत रहा है। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने आज नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। श्रीमती निधि खरे ने कहा कि सरकार हर वर्ष ये सुनिश्चित करती है कि कीमतों में बढ़ोतरी होने पर रियायती दर पर प्याज उपलब्ध हो।
2: हर वर्ष हम लोग कोशिश करते हैं कि प्याज में अगर कोई कीमतों की बढ़ोतरी होती है तो उसमें रिटेल इंटरवेंशन के माध्यम से सब्सिडाइज दर पर प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। प्याज की जो प्रोडक्शन है या अवेलेबिलिटी है उसमें किसी प्रकार की कोई किल्लत नहीं है। एक्सपोर्ट को भी देखें तो वो पिछले वर्ष के मुकाबले भी सामान्य है।
1: मौसम विभाग ने कल उड़ीसा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार कल छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज वर्षा होने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। श्रीलंका ने आज मैच के अंतिम दिन फॉलो ऑन खेलते हुए दूसरी पारी में खेल समाप्ति तक 9 विकेट पर 429 रन बनाए। इससे पहले श्रीलंका की पहली पारी 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने 5वां स्थान हासिल कर लिया है। आज खेले गए मुकाबले में भारत ने जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम में भारत के लिए इश्का ने 1 और नवनीत कौर ने 2 गोल किए। जर्मनी के लिए एकमात्र गोल लिन क्रिंग्स ने किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और बचाने के प्रयास तेज। लगभग 1300 लापता लोगों में 290 भारतीय। मृतकों की संख्या 359 हुई। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत परियोजना की आधारशिला रखी। इसे राष्ट्र की आत्मनिर्भरता की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री शुरू की। और भारत तथा मेजबान श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ। भारत ने श्रृंखला 1-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. India steps up efforts to trace and rescue Indian nationals stranded in Nepal due to flash flood tragedy. 290 Indians among nearly 1300 missing people. Death toll rises to 359. Heavy rain likely over Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand and northeastern states till Saturday. Prime Minister Narendra Modi to embark on a 4-day visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan from Saturday. Defence Minister Rajnath Singh lays foundation stone for T-series tank overhauling project at Jabalpur in Madhya Pradesh, terms it another milestone in nation's journey towards self-reliance. Government begins targeted release of onions from buffer stock to ensure adequate availability and moderate seasonal price pressures in coming months. And in men's cricket, second test between India and hosts Sri Lanka ends in a draw. Visitors clinch the series 1-0.

0: country where talent receives support at every stage. Addressing the Khelo India dialogue through video conferencing today, Mr. Modi said that sports is not limited merely to winning medals. Rather, it is a mission to unite India's sporting prowess and youth power in the building of a developed India.
1: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है मैं हमेशा कहता आया हूं जो खेले वो खिले और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना
0: Home and Cooperation Minister Amit Shah emphasized that Mahatma Gandhi's philosophy remains timeless, relevant, and dedicated to human welfare. Addressing students during the 70th

0: लोगों ने कहा शैलेंद्र मौसकार, सचिन देवबर्मन, मोहम्मद रफी की आवाज फिल्म काला बाजार का ये गीत आपने सुना।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किस्से होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: शैलेंद्र का लिखा गीत था मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म जानवर से दर्ज थी शंकर जयकिशन की।
1: गुड नाइट।
2: हाँ गुड नाइट।
1: हाँ गुड नाइट।
2: अच्छा गुड नाइट।

चरस। इस फिल्म में आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। आपके लिए ये कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। श्रोताओं, दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको एक दिलचस्प घटना बताते हैं। एक लड़का था जिसकी बहन की शादी हो रही थी और अभिनेता मोतीलाल चूंकि उसके रिश्तेदार थे इसलिए वो इस शादी में शामिल होने के लिए आए थे। चूंकि माहौल शादी के जश्न का था तो उस लड़के से कहा गया कि तुम गाना गाओ क्योंकि परिवार में सब जानते थे कि इसे गाने का शौक है। उस लड़के ने गाना गाया और सब लोग मुग्ध होकर सुनते रहे। मोतीलाल जी को लगा कि इस लड़के में प्रतिभा है। उन्होंने उसे मुंबई बुला लिया और बस यहां से फिल्म संगीत का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया क्योंकि ये नौजवान था मुकेश चंद्र माथुर।

0: सारे रहेंगे।
1: हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास को खंगालें तो जो सबसे रोशन सितारे हमें नजर आते हैं पुरुष गायकों में, वो हैं मोहम्मद रफी, मुकेश और किशोर कुमार। जाहिर है कि इन तीन मुख्य सितारों को अलग कर दें तो फिल्म संगीत के न जाने कितने अनमोल गाने फिल्म संगीत के इतिहास से हट जाएंगे। मुकेश चंद्र माथुर के अपने फैन रहे हैं और दुनिया के कोने कोने में रहे हैं। सबसे बढ़िया बात तो यह है कि मुकेश की गायकी में ऐसी सादगी, ऐसी सरलता है कि यूं लगता है जैसे वो हमारे लिए गा रहे हैं और हम उनके साथ गा रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि आपके परिवार में अंत्याक्षरी हो रही हो, कोई पिकनिक हो, कोई अन्य उत्सव हो, गाने का माहौल हो, तो कोई ना कोई मुकेश का फैन आपको जरूर मिल जाएगा। यूं लगेगा जैसे मुकेश उसकी आवाज में गा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मुकेश जी की जीवन यात्रा।
2: मैंने

मुकेश चंद्र माथुर का जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में हुआ था। पिता लाला जोरावर चंद इंजीनियर थे और मां थी चांद रानी। दरअसल पुरानी दिल्ली में पैदा हुए इस लड़के के जहन में संगीत की महक बहुत पहले से थी। बहुत बचपन से इस लड़के ने गुनगुनाना शुरू कर दिया था। ये वो दौर था जब सबसे बड़े गायक थे कुंदन लाल सहगल और सभी उनके दीवाने हुआ करते थे। जाहिर है कि यंग मुकेश भी कुंदन लाल सहगल के फैन थे। दसवीं पास की उस जमाने में इतनी पढ़ाई बहुत मानी जाती थी। इसके बाद लोक निर्माण विभाग में काम करना शुरू कर दिया। तकरीबन यही दिन थे जब उनकी बहन की शादी हुई और वही घटना हुई जो हमने आपको इस कार्यक्रम की शुरुआत में सुनवाई थी, और इस तरह से मुकेश का मुंबई जाने का रास्ता खुल गया। हुआ यूं कि रंजीत मूवी टोन की ओर से एक विज्ञापन जारी किया गया जिसमें ये कहा गया कि एक नए गायक की तलाश जारी है। और फिर क्या हुआ कि चंदूलाल शाह के जारी किए गए इस विज्ञापन को देखकर मुकेश मोतीलाल जी के पास मुंबई आ गए। यहां आने के बाद उन्होंने पंडित जगन्नाथ प्रसाद से संगीत की तालीम लेनी भी शुरू कर दी और उन्होंने बड़ी शिद्दत से ये सपना देखा कि वो गायक अभिनेता बनेंगे। और ऐसा हुआ भी। सन 1941 आया, मुकेश ने अपनी पहली फिल्म साइन की निर्दोष। इस फिल्म में उन्होंने अभिनय भी किया और

गाया भी। यानी ये वो पहला गाना है जो मुकेश जी ने गाया, पर इस गाने में मुकेश जी ने प्लेबैक नहीं किया, यानी किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए गाया। ये गाना था दिल ही बुझा हुआ है तो फसले बहार क्या।

मुकेश जी का पहला प्लेबैक गाना कौन सा था ये भी आपको बता देते हैं। सन 1945 में फिल्म पहली नजर बन रही थी। संगीतकार अनिल बिस्वास से मोतीलाल ने ये कहा कि आप मेरे लिए एक युवा गायक से प्लेबैक करवाएं। मुकेश की आवाज जब अनिल बिस्वास ने सुनी तो उन्हें ये आवाज जम गई और फिर मुकेश ने गाया अपना पहला प्लेबैक सॉन्ग पहली नजर फिल्म में।

जब कुंदनलाल सहगल तक इस गाने की ख्याति पहुंची और उन्होंने इस गाने का रिकॉर्ड सुना तो वो चकित रह गए। उन्होंने तपाक से ये सवाल पूछा, ये गाना मैंने कब गाया? इसके बाद उन्होंने मुकेश को अपने घर बुलवाया और कहा कि तुम गाने गाते जाओ। मुकेश एक के बाद एक कई गाने गाते चले गए और कुंदनलाल सहगल उस जमाने के सुपरस्टार, उस जमाने के लाजवाब गायक और अभिनेता मुकेश को मुग्ध भाव से सुनते चले गए। उन्हें लगा कि यही है मेरा उत्तराधिकारी और उन्होंने अपना रियाज वाला हारमोनियम मुकेश को भेंट कर दिया। ये कुंदनलाल सहगल का मुकेश के लिए आशीर्वाद था। सन 1941 में निर्दोष में अभिनय करने के बाद सन 1943 में मुकेश ने एक और फिल्म में अभिनय किया जिसका नाम था आदाब अर्ज। सन 1953 में उन्होंने फिल्म माशूका में अभिनय किया जहां उनकी हीरोइन थी सुरैया और सन 1951 में मल्हार फिल्म में अभिनय किया। संगीतकार रोशन की ये पहली फिल्म

दौर था जब मुकेश कुंदन लाल सहगल की छाया में थे, उनके प्रभाव में थे और उनके जैसा गाया करते थे। सन 1948 में नौशाद ने दिलीप कुमार की फिल्म मेला के लिए मुकेश को गाने का मौका दिया और नौशाद के जरिए कुंदन लाल सहगल की छाया से बाहर आया उस जमाने का युवा पार्श्व गायक मुकेश।

1948-49 का दौर भारत में फिल्म संगीत के बदल जाने का दौर था। कैसे, आपको बताते हैं। लगातार नई प्रतिभाएं आती चली जा रही थीं और इन नई प्रतिभाओं में शामिल थे युवा संगीतकार शंकर जयकिशन। शंकर सिंह रघुवंशी और जयकिशन पांचाल किस तरह से मिले, ये तो एक इतिहास है। राज कपूर ने उन्हें अपनी फिल्म बरसात में संगीत देने का मौका दिया और इस युवा संगीतकार जोड़ी ने कई युवा कलाकारों से गाने गवाए, जिनमें से एक मुकेश भी थे। फिल्म बरसात में मुकेश ने दो गाने गाए थे, एक गाना था ये।

0: घर है।
1: और इसके बाद राज कपूर, शंकर जयकिशन और मुकेश की इस तरह से टोली बनी कि एक के बाद एक इनकी फिल्में आती चली गईं और इन तमाम फिल्मों में मुकेश के गाने आते चले गए। यहां तक कि मुकेश का आखिरी गीत भी राज कपूर की ही फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया गया था। ये कहानी बाद में, पहले आपको एक दिलचस्प आंकड़ा बताते हैं। जरा सोचिए कि मुकेश ने किस संगीतकार के लिए सबसे ज्यादा गाया होगा। आपने सही सोचा है, शंकर जयकिशन के लिए मुकेश ने कुल 133 फिल्मों में पार्श्व गायन किया, जबकि कल्याण जी आनंद जी के लिए 99 फिल्मों में। जाहिर है कि कल्याण जी आनंद जी भी मुकेश के कम फैन नहीं थे।

चलिए फिर से पीछे चलते हैं, समय के चक्र को घुमाते हैं और पहुंच जाते हैं सन 1948 में। आप सोच रहे होंगे कि यहां हम क्यों आए हैं। दरअसल यहां हम आपको ये बताने के लिए आए हैं कि बरसात वो पहली फिल्म नहीं थी जिसमें मुकेश ने राज कपूर के प्रोडक्शन के लिए गाया था। राम गांगुली के निर्देशन में आग में वो ये गाना गा चुके थे।

0: नहीं।
1: अब राज कपूर के साथ मुकेश ने किन किन फिल्मों के लिए गाया, एक के बाद एक लड़ी में फिल्में और गाने पिरोते हुए आज के फनकार कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आप हमारे साथ साथ आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए जरा अपने पैंट को थोड़ा सा ऊपर मोड़ लीजिए, सिर पर एक टोपी पहन लीजिए और सन 1951 में चलकर उछलते हुए मेरे साथ

1964 में राज कपूर ने अपनी बहुत ही महत्वाकांक्षी फिल्म बनाई, जो राज कपूर की पहली कलर फिल्म थी, फिल्म संगम। इस फिल्म में मुकेश ने ये मार्मिक गाना गाया था।

सन 1966 तक हम आ पहुंचे हैं और यहाँ हमारे हाथों में है फणीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक मारे गए गुलफाम। हमें याद शैलेंद्र की आ रही है जिन्होंने इस पुस्तक पर तीसरी कसम फिल्म बनाई और इस फिल्म में मुकेश ने बड़े मन से गाया।

और फिर सन 1978 मुकेश को अमेरिका की यात्रा पर जाना था और जाने से पहले जो आखिरी गीत उन्होंने संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए रिकॉर्ड करवाया वो सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के लिए था।

भी लंबी उड़ान, वो इस फानी दुनिया को अलविदा कह के चले गए। ये बातें हुई राज कपूर और मुकेश के साथ वाले गानों की, लेकिन ऐसा नहीं था कि राज कपूर के लिए सिर्फ उनके प्रोडक्शन में मुकेश ने गाया हो। जरा 1950 में केदार शर्मा की बनाई फिल्म बावरे नैन का ये गाना सुनिए और याद कीजिए नीली आंखों वाले राज कपूर को।

अब आप सोच रहे होंगे ये भी कोई बात हुई कि पूरे आज के फनकार कार्यक्रम में केवल राज कपूर की बातें। अरे नहीं नहीं, ये नाइंसाफी हम नहीं होने देंगे। दिलीप कुमार के लिए जो प्लेबैक मुकेश ने किया वो तो लाजवाब था। फिल्म यहूदी का ये गाना सुनिए, शैलेंद्र के बोल हैं।

लेकिन ऐसा नहीं है कि दिलीप कुमार या मनोज कुमार के लिए ही मुकेश ने प्लेबैक किया हो। याद कीजिए काका राजेश खन्ना को फिल्म मर्यादा में।

जाहिर है कि फिल्मी दुनिया के न जाने कितने नायकों ने पर्दे पर होंठ हिलाए, लेकिन आवाज तो मुकेश की थी, यानी उन्होंने मुकेश के गीत गुनगुनाए। मुकेश को भले ही एक दर्द भरी आवाज कहा जाता हो और रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड के बुक स्टॉल्स पर जो गानों की किताबें मिलती हैं उनके शीर्षक हों मुकेश के दर्द भरे नगमे, लेकिन मुकेश केवल दर्द भरे नगमों के गायक नहीं थे। जब भीगा भीगा मौसम आता है तो भला कौन सा ऐसा मनमौजी व्यक्ति हो जो ये गाना ना गुनगुनाए।

यानी हम ये कहना चाहते हैं कि मुकेश ने तरह तरह के गाने गाए। वो केवल एक दर्द भरी आवाज नहीं थे, वो एक जिंदा दिल आवाज थे। मुकेश एक बेमिसाल शख्सियत जिन्होंने हर समय लोगों का भला किया। 27 अगस्त 1976, डेट्रॉइट मिशिगन, एक कॉन्सर्ट चल रहा है और मुकेश गाना गा रहे हैं। पर्दे के पीछे जाते हैं, दिल का दौरा पड़ता है और वो इस अनजान दुनिया को अलविदा कहकर चले जाते हैं। कॉन्सर्ट जारी रहता है, उनकी आवाज को आगे बढ़ाते हैं उनके बेटे नितिन मुकेश। उसके कुछ दिन बाद मुंबई के एयरपोर्ट पर एक ताबूत उतरता है। एयरपोर्ट पर बेसब्री से इंतजार में हैं अभिनेता राज कपूर और अभिनेता मनोज कुमार। इसके अलावा फिल्मी दुनिया की कई जानी मानी शख्सियतें। मुकेश के ताबूत को देखकर राज कपूर रो पड़ते हैं और कहते हैं, मेरी तो आवाज ही चली गई। मुकेश के जाने से एक खला आ गई और ये खला कभी मिट नहीं सकती। मुकेश हम सब की आवाज हैं, हम सब थोड़े थोड़े मुकेश हैं।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक मुकेश पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

छाया गीत के सभी सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। भीगे मौसम के शरारे, भीगी भीगी सी हवाएं, वो रात का पुनूर मंजर, वो पत्तों से शबनम का बरसना, रंग चढ़ता है मोहब्बत का उजालों की तरह, एक हलचल सी मचती है ख्यालों की तरह, सबा ने बादलों का घूंघट उठाया, कलियां चटकी, मौसमी गुल ने ली अंगड़ाई, दिल धड़का किया कि फिजाएं कर चली इकरार मोहब्बत, कि तुम्हारी याद सरे शाम जब भी आती है, मेरे सुकून मेरी तन्हाई।

शम मसरे शाम साहिल पे कोई जला जाता है, अब कहाँ रोके से रुकता है ये दिल। ये तो सच है कि जमाने बाद इन राहों से गुजरे हैं हम, बात ये भी सच है कि मोहब्बत की गली में पांव रखने की इजाजत नहीं, और ये भी है कि इस बात का चर्चा न किया जाए। न गवार गुजरेगी इश्क मोहब्बत की दास्तान जमाने को, और ये भी मुमकिन है कि ये फसाना मशहूर हो जाए।

बारिशों में भीगती फिजाएं, ये बादलों में बूंदों की तड़प, ऐसा लगता है कि शोलों से उठती हैं चिंगारियां, मदहोशियों के साए, मोहब्बत का जुनून और बस एक निगाह उनको देखने की तड़प। क्या कहूं, न दिल ही कसूरवार है न रातों की अंगड़ाइयां, ये इश्क की सदाएं हैं, बादलों से मोहब्बत बन के बरस जाती हैं।

0: स्मृति से आप सुन रहे हैं छाया गीत। किसी रात आ जाएं वो, ये दिल की तड़प कहती है, अब भी आंखों को रहता है इंतजार उनका। वो एक झलक उनकी कोई भूला सा ख्वाब लगती है, थिमट के भी न मिटने की वो शाम, के रह रहे के साहिल से टकराती थी मौजें। खामोशी से मुसीबत और भी संगीन होती है, तड़प ए दिल तड़पने से जरा तस्कीन होती है।
1: तड़प ए दिन रात थी कसत।

रुक रुक के कदम उनकी जानिब ही बढ़ चली। धीरे धीरे से एहसास से मोहब्बत भी हो चला। शर्मो हया के दामन में रुकती सांसें, कुछ कहना चाहें भी तो कह ना पाए। बात होठों तक आके रुक गई फासले दरमिया, और वो मुश्किलों का समा। उलझने इधर भी कुछ उधर भी, आंखें झुकी होठों पे वो हल्का सतबस्सुम छाया, और दिल ने किया इकरार-ए-वफा।

0: अभी हम रिले कर रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। समाचारों को हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
2: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें की 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली 1 जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष से +9111230888718 और +9111230888719 पर संपर्क किया जा सकता है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए +9779851316807 और +9779816317 नंबर जारी किए हैं। इस बीच नेपाल में कल आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार आज 93 और शव बरामद किए गए। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों के अनुसार 30 देशों के 1300 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक प्रभावित क्षेत्रों से 800 से अधिक लोगों को बचाया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज का सर्वेक्षण किया।

द्वारा हमारी संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने नेपाल में आई बाढ़ के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नेपाल में फंसे उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित निकालने और तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। नेपाल के सांसद और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता विदुषी राणा ने आपदा के समय नेपाल के साथ खड़े रहने और हर संभव मदद का भरोसा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बड़ी मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 20 लाख अमरीकी डॉलर की शुरुआती सहायता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए हो गया है और रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। मौसम विभाग ने कल उड़ीसा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।